मीडियम वेव 305.8 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन सकते हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 13 जून सन 2026, 5:57 होने वाले हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमारस्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि DRDO की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, शुभारंभ मातृ वंदना से।

समूह स्वर में ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं आशिक अली खां की आवाज में बाली आसी की ये नात।

आशिक अली खां के स्वर में ये थी बाली आसी की नात। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। लीजिए अब सुनिए पुरुषोत्तम दास जलूटा के स्वर में संत तुलसीदास का ये भक्ति पद।

पुरुषोत्तम दास जलोटा के स्वर में ये था संत तुलसीदास का भक्ति पद। आइए अब सुनते हैं जगजीत सिंह के स्वर में संत कबीरदास का ये भक्ति पद।

जगजीत सिंह के स्वर में ये था संत कबीरदास का भक्ति पद। आइए अब सुनते हैं गिरिजा देवी के स्वर में संत सूरदास का ये भक्ति पद।

0: गिरिजा देवी के स्वर में ये था संत सूरदास का भक्तिपद। इसके साथ ही अब आज की वंदना संपन्न होती है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए चिंतन, आलेख डॉक्टर शोभा कांत झा का है।
1: भाग्य शब्द बड़ा अर्थवान है, वो छोटा परंतु बहुअर्थी बनकर बड़ा भाग्यवान भी बन गया है। भगवान के आगे उपसर्गवत जुड़ गया है। ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, छह तत्वों की संज्ञा भाग्य है। इन भगवत तत्वों से युक्त होने के कारण ईश्वर भगवान कहलाते हैं। भग भाग्य बोधक भी है। भग उस स्थान को भी कहते हैं जहाँ से भव अर्थात संसार प्रकट होता है। भग शब्द की व्याख्या शब्द शास्त्र के अनुसार और भी तरह से कर सकते हैं। यहाँ विचारणीय वेद का ये मंत्र है कि बैठे हुए का भाग्य बैठ जाता है और उठे हुए का भाग्य ऊंचा उठता जाता है और सोए हुए का भाग्य

0: सोया रहता है और चलते हुए व्यक्ति का भाग्य निरंतर गतिमान रहता है। जो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा, काम धाम कुछ नहीं करेगा, तो उसके घर सुख समृद्धि आने से रही, वो जहां के तहां रह जाएगा। कहते हैं ईश्वर भी उसी की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करता है। कर्म का ही दूसरा नाम भाग्य है। कर्म से ही भाग्य बनता है। जो जैसा काम करता है उसे वैसा ही फल चखने को मिलता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। इसके विपरीत जो आदमी ऊंचा उठने का प्रयास करता है, कुछ कर गुजरने के लिए सदा तैयार रहता है, कमर कसे रहता है, उसका भाग्य बनता जाता है। उसके दरवाजे पर सुख समृद्धि होती है, उसके घर लक्ष्मी विराजती हैं। आए दिन अखबारों में खबर छपा करती है कि अमुक व्यक्ति ने चाय बेच बेच कर, अमुक किसान ने जैसे तैसे दुख सहकर अपने बेटे बेटियों को इंजीनियर डॉक्टर बना दिया, और अमुक गांव वालों ने सरकार की सहायता के बिना ही स्कूल सड़क आदि बना डाले। ये सारे व्यक्तिगत और सामाजिक विकास और निर्माण यही तो सिद्ध करते हैं कि जो आदमी और जो समाज सदा कुछ न कुछ निर्माण के लिए तत्पर रहेगा, उसका विकास होकर रहेगा, उसका भाग्य जागता रहेगा। इसकी उलट सोए हुए आदमी समाज और राष्ट्र का भाग्य भी सोया रहता है। जो किसान बोएगा ही नहीं, वो अगहन में क्या काटेगा? जो विद्यार्थी पढ़ेगा ही नहीं, वो परीक्षा में पास कैसे हो सकता है? जो चलेगा ही नहीं, वो मंजिल पर कैसे पहुंच सकता है? जो कुछ बनने के लिए प्रयास ही नहीं करेगा, वो कैसे कुछ बन सकता है? पशु पक्षी चींटी भी कुछ पाने के लिए रात दिन कोशिश करते रहते हैं। जागे का दुख भागे और सोए का सुख भागे। हम अपने इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें, जो भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, वो दरिद्र कैसे बन गया? जिस भारत का शासन अन्य दूर दूर के देशों पर था, वो गुलाम कैसे बन गया? अखंड भारत खंड खंड कैसे हो गया? इन सबके पीछे हमारी कर्महीनता थी, आलस्य था, आपसी कलह था। इन सबों ने मिलकर भारत के भाग्य को सुला दिया, उठने के बदले बैठा दिया, पतन के गड्ढे में गिरा दिया, सोने के भारत को कंगाल बना दिया। वेद मंत्र साफ भाषा में कहता है कि निरंतर चलते रहो, कर्मशील बने रहो, तुम्हारी तकदीर बुलंदी की ओर बढ़ेगी। क्षणिक असफलताओं से हार मानकर बैठो मत, पछताओ मत, अपने दोनों हाथों से अपनी बिगड़ी तकदीर को बदल डालो। दुनिया की एक से एक अच्छी और बुरी घटनाएं सबक सिखाती हैं। सही दिशा और सही पथ पर चलते रहो। कल की पुरानी बातों को छोड़ो और नए युग की नई कहानी लिखो। कहा जाता है कि लखनऊ के किले पर जब विदेशियों का आक्रमण हुआ, तो बादशाह राग रंग में इतना डूबा हुआ था कि लड़ना तो दूर, उसने अपनी जूती दूसरे से पहनाने के लिए कहा ताकि वो भाग सके। ऐसे में बादशाहियत कैसे बचती? निकम्मा तो नष्ट होगा ही, आक्रमणकारी दया नहीं जानता।
1: ये था चिंतन, आलेख डॉक्टर शोभा कांत झा का था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए रामचरित मानस गान, मुख्य स्वर श्रीकांत पारगांवकर का है। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निदेशक हैं सतीश भाटिया।
2: एपिसोड नंबर 199 199

दल बल समेत भरत प्रयाग पहुंचने को हैं। गंतव्य का बड़ा भाग पार किया जा चुका है, किंतु उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। उन कष्टों की कल्पना से उनकी

पानी और क्षोभ बढ़ता जाता है, जो श्रीराम, लक्ष्मण और सीता न जाने किस वन में भुगत रहे होंगे। प्रयाग पहुंचकर सबने विधिपूर्वक त्रिवेणी में स्नान किया और तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम कर भरत ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की।

0: अभी आप रामचरित मानस गान सुन रहे थे। मुख्य स्वर श्रीकांत पारगांवकर का था। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निदेशक हैं सतीश भाटिया। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कृषि चर्चा जानकारी का विषय है, बरसात से पहले मुर्गियों की देखभाल, जानकारी देते हुए डॉक्टर तरुण साहू।
1: मैं डॉक्टर तरुण साहू, पशु चिकित्सा सहायक संलग्न पशु चिकित्सालय कुरुस से आप सभी किसान भाई मन ला जय जोहार जय राम। आज हमन बात करबो बरसात के पहली मुर्गी मन के देखभाल और प्रबंधन के बारे में। बरसात के मौसम में नमी, गंदगी और मौसम बदलाई के कारण मुर्गी मन में कई प्रकार के बीमारी फैलते। अगर समय रहते सही देखभाल नहीं करन तब मुर्गी मन के स्वास्थ्य नुकसान हुई एवं किसान मन ला आर्थिक नुकसान हुई। पहला, पोल्ट्री सेट के हमन कैसे साफ सफाई करन एवं दवा छिड़काव कैसे करन। बरसात शुरू होए के पहली हमन ला पूरा पोल्ट्री सेट ला अच्छा से साफ सफाई करवाना चाहिए। साथ में जे भी पुराना ओकर बिछावन है तेना निकाल देना चाहिए और चूना और कीटाणुनाशक के दवाई के छिड़काव करवाना चाहिए। जो भी हमर मन के पानी दे के पात्र है, जो भी खाना दे के पात्र है तेला हमन ला साफ सफाई हमेशा करवाते रहना चाहिए। साथ ही हमन पोल्ट्री फार्म के जो शुद्धिकरण है तेला कैसे करन, ओकर पर हमन ला फॉर्मलिन लेना है लगभग 500 ml और साथ ही हमन ला केमिनोफोर करके एक केमिकल होते तेला लेना है, ओला हमन ला मिश्रण करके पूरा फ्यूमिगेशन करना रहते हमारे सेट में। साथ ही लीटर के हमला रख रखाव कैसे करन, बरसात में लीटर है गीला हो जाते जेकर से अमोनिया गैस बनते और सांस के बीमारी है बढ़ते, जैसे एस्परजिलोसिस हो गए, साथ में एक CRD हो गए, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, ये सब बीमारी मन है बढ़ते। एकर से थी हमेशा सूखा भूसा या लकड़ी के बुरादा ला हमेशा उपयोग करो और साथ में गीला हिस्सा ला तुरंत बदलो और समय समय पर हमें चूना पानी के छिड़काव भी करवाते रहना चाहिए। किसान भाइयों, हवा और पानी की निकासी के व्यवस्था हमेशा बने रहना चाहिए। शेड में हवा के सही आवागमन बहुत जरूरी है। बरसात के पानी में शेड के आसपास जमा नहीं होना चाहिए, पानी भरई से मच्छर, मक्खी और बीमारी के कीटाणु बढ़ जाते। मुर्गी मन ला साफ और ताज़ा पानी हमेशा देवत रहना चाहिए। दाना ला सूखा जगह में रखना चाहिए ताकि उन्हें फफूंदी नहीं लगे। खराब दाना खवाए से मुर्गी बीमार पड़ सकते हैं, वजन हाँ कम हो सकते। किसान भाइयों हमेशा बाहरी आदमी जे भी रही ते मल्ला फार्म के अंदर में ज़्यादा प्रवेश नहीं देना चाहिए। जूता और वाहन के साफ सफाई रखना चाहिए। चूहा मक्खी और जंगली चिड़ई मल्ला तको फार्म से दूर रखना चाहिए। मरे हुए मुर्गी मल्ला सही निपटारण करना चाहिए। अगर कोई मुर्गी मन मर जाते तो ओला खुला में कभी भी नहीं फेंकना चाहिए। गड्ढा खोद के चूना डाल के दबाना चाहिए ताकि ओकर से हमर दूसरा मुर्गी मल्ला बीमारी नहीं फैले। साथ ही हमें अपन फार्म के नमी ला हमेशा दूर करना चाहिए। बरसात में रानी खेत, कॉक्सीडियोसिस, CRD, फाउल पॉक्स, इन्फेक्शियस कोराइजा ऐसा ऐसा प्रकार की बीमारी मन फैलते। समय समय में किसान भाइयों टीकाकरण कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर मुर्गी मन स्वस्थ दिखत है, दाना कम खात है, छीकत है या पतला बीट करत है तो मुर्गी मन हमला तुरंत अलग करना चाहिए और जो भी निकट में जो भी पशु चिकित्सक है ओकर से जरूर सलाह लेकर के हमेशा उपचार करवाना चाहिए। बरसात के पूर्व टीकाकरण करवाना मुर्गी मन में बहुत जरूरी है। हमला पहला दिन का टीका लगाना चाहिए। पहला दिन में हमला मरेक डिजीज किसान भाइयों हमला लगवाना चाहिए मुर्गी मल्ला। दूसरा, 5 से 7 दिन के भीतर में हमला इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस और साथ में रानीखेत डिजीज के हमला टीकाकरण करवाना चाहिए। लगभग 10 से 14 दिन में हमला गंबरो डिजीज के पहला टीका हमला जरूर लगवाना चाहिए। साथ ही 18 से 21 दिन के बीच में हमला गंबरो के बूस्टर डोज लगवाना चाहिए किसान भाइयों एवं ओकर बाद हमला 21 से 24 दिन के बीच में रानी खेत के हमला बूस्टर डोज किसान भाइयों लगवाना चाहिए। एकर बाद के अंडा उत्पादन करने वाला जो मुर्गी है ते मल्ला पहला दिन में हमला मरेक डिजीज के टीका लगवाना चाहिए। 5वां से 7वां दिन में इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस और साथ में रानीखेत डिजीज के हमला टीका लगवाना चाहिए। 10 से 14 दिन में किसान भाइयों हमला गंबरो डिजीज के पहला टीका लगवाना चाहिए। 18 से 21 दिन में हमला दूसरा टीका लगवाना चाहिए गंबरो डिजीज के एवं 4वां सप्ताह में हमला रानी खेत के बूस्टर लगवाना चाहिए किसान भाइयों। एकर बाद छठवां से आठवां सप्ताह में हमला रानी खेत के जो R2B स्ट्रेन रहते तेला किसान भाइयों हमला अंतः त्वचा या मांस में हमला लगवाना चाहिए किसान भाइयों। आठवां से दसवां सप्ताह में किसान भाइयों हमला फाउल पॉक्स के टीकाकरण करवाना चाहिए किसान भाइयों। दसवां से बारहवां सप्ताह में हमला इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस के बूस्टर लगवाना चाहिए किसान भाइयों। एवं 14 से 16 सप्ताह में किसान भाइयों हमला किल्ड वैक्सीन के हमारा टीका लगवाना चाहिए किसान भाइयों। 16 से 18 सप्ताह में किसान भाइयों हमला लासोटा के हमन वैक्सीन लगवा सकते हैं किसान भाइयों। इस सब के हमारा किसान भाइयों ध्यान रखना है। अंत में किसान भाई मन अगर बरसात शुरू होए के पहली साफ सफाई टीकाकरण सूखा लीटर साफ पानी और जैव सुरक्षा के सही पालन अगर करे जही तब मुर्गी मन स्वस्थ रही और किसान भाई मन ला ज्यादा उत्पादन और लाभ मिली। धन्यवाद किसान भाई।
0: बरसात से पहले मुर्गियों की देखभाल कृषि चर्चा में जानकारी दी डॉक्टर तरुण साहू ने। मीडियम वेव और FM बैंड पर

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। स्पोर्ट्स स्क्रीन कार्यक्रम रात 8:30 पर और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10:00। इसमें आज आप सुनेंगे यूएस प्रसाद का कर्नाटक सैक्सोफोन वादन। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत आज रात 9:25 पर सुनिएगा अष्टलक्ष्मी पूर्वोत्तर राज्य। नमस्कार रायपुर, ये सूचनात्मक कार्यक्रम सुनेंगे सुबह 7:05 पर। आज आप सुनेंगे शाला प्रवेशोत्सव 2026 और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए खास तैयारी पर समग्र शिक्षा के अंतर्गत विशेष शिक्षिका और बाल मनोवैज्ञानिक डॉक्टर गार्गी पांडे से विशेष संवाद। स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेला 2026 के विषय में पीएम स्वनिधि राज्य नोडल अधिकारी श्री सुनील अग्रहरी से खास बातचीत। आधुनिक खेती की दिशा में नैनो उर्वरक की उपयोगिता और बेहतर उत्पादन पर पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर श्रावणी सान्याल से विशेष चर्चा। प्रस्तुति श्रेया श्रीवास्तव की होगी। सुबह 8:30 पर समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह। इसमें आज आप सुनेंगे एल्बिनिज्म रोग के कारण लक्षण और उपचार। इस विषय पर त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता होंगे रमाशंकर। बातों बातों में सुबह 9:00, इसमें आज आप सुनेंगे मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर छत्तीसगढ़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा से ली गई भेंटवार्ता। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ला की होगी। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:40 और रात 8:15 पर कलाकार होंगे सफरी मरकाम और साथी। इसी कार्यक्रम में शाम 6:30 पर सुनिएगा गोरेलाल बर्मन और साथियों को। नई फिल्मों से सुबह 10:00, सदाबहार नगमे सुबह 11:05 पर। सुबह 11:40 पर उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा बागेश्वरी देवी का गाया राग भैरवी में दादरा। गाथा झरोखों से इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज दोपहर 12:00 सुनिएगा फुलकुंवर की लोक गाथा का तीसरा भाग। लेखक श्री जीवन यदू और प्रस्तुति मोहन सीरामानी की। आपके मीत ए गीत फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम दोपहर 12:30 पर। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया दोपहर क्षमा कीजिए घर आंगन दोपहर 1:30 पर। आज आप सुनेंगे आज के गोठ रक्तदान महादान। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार, पहले संस्कृत में और उसके बाद हिंदी में।
1: ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वः स्लोवाक गणराज्यं प्रति प्रस्थास्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्याम यात्रायाम स्लोवाक देशस्य प्रधानमंत्रिणा फिको इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति तथा च सहकारस्य नूतनान् मार्गान् अन्वेषयिष्यति। प्रवासावधौ प्रधानमंत्री राष्ट्रपतिना पेलेग्रिनी इत्यनेन सहापि मेलनं करिष्यति। द्वैपाक्षिक व्यापारे निरन्तर वृद्धेः दृष्ट्या प्रधानमंत्रिणः यात्रायाः महत्त्वं वर्धते। यच्चतुर्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमे वर्षे 1 बिलियन US डॉलर परिमितम् अतिक्रम्य गतवर्षे 8.1 बिलियन US डॉलर परिमितम् आसीत्। अनया यात्रया यूरोपीयसङ्घस्य सदस्यराष्ट्रैः सह सहकारं सुदृढं कर्तुं भारतस्य प्रतिबद्धताम् अपि सुदृढं भविष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य देहरादूननगरस्य भारतीय सैन्य अकादम्यां पासिंग आउट परेड इत्यस्य समीक्षां करिष्यति। अस्मिन् वर्षे पासिंग आउट परेड इतीदम् ऐतिहासिकं भविष्यति यस्मिन् प्रथमवारं महिलाः पुरुषैः सह पथसञ्चलनं करिष्यन्ति। अस्मिन् भव्यसमारोहे 500+ पुरुषाः महिलाः च अन्तिमं पदं स्वीकृत्य भारतीयसेनायाम् अधिकारित्वेन नियुक्ताः भविष्यन्ति। भारतीय सैन्य अकादम्याः पासिंग आउट परेड न केवलं सैन्य परंपरा अस्ति अपितु

0: राष्ट्रसेवायां समर्पितानां युवाधिकारिणां कृते नूतनयात्रायाः आरम्भोऽपि अस्ति। केन्द्रीय गुरु उद्योग इस्पात मन्त्रिणा एचडी कुमारस्वामिना उक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना विनिर्माण आधारित वृद्धेः वृत्त्यावसर निर्माणस्य च विषये अभूतपूर्वं महत्त्वं प्रदत्तम्, येन औद्योगिक वृद्धिः त्वरिता अभवत्, बृहद् वृत्त्यावसराश्च कल्पिताः। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण अमेरिकादेशस्य विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन सह वार्तालापं कृत्वा गल्फ प्रदेशे यूएस नौसेनया कृताक्रमणस्य विषये प्रबलं विरोधं प्रकटितं, यस्मिन् त्रयः भारतीयाः नाविकाः मृताः। सामाजिकान्तर्जालीये पटले एकस्मिन् लेखे डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् वाणिज्यिक नौवहनं विरुद्धं एतादृशानि प्राणघातक आक्रमणानि न्यायोचितानि न सन्ति इति। ओमान तटस्य तटे पलाव ध्वजयुक्तस्य एमटी सेटेबेलो जलयानस्य उपरि अमेरिकादेशस्य आक्रमणे भारतीयदलस्य त्रयः सदस्याः मृताः, येन नवदिल्ल्या तीक्ष्ण प्रतिक्रिया प्रदत्ता। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः दृढतया उक्तवान् यत् ऑपरेशन सिन्दूर अभियानस्य समये स्वदेशीय प्रक्षेपास्त्राणाम् असाधारणं प्रदर्शनं भारतस्य रक्षाशोधस्य विकासपर्यावरणव्यवस्थायाः वर्धमानशक्तेः प्रमाणम् अस्ति। रक्षा अनुसंधान विकास संघटनस्य रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशालायाम् उन्नतास्त्र प्रणाली परिसरस्य उद्घाटनावधौ रक्षामन्त्रिणा उक्तं यत् शक्त्यै शान्तेः आवश्यकता अस्ति तथा च तस्याः शक्तेः सर्वाधिकः विश्वसनीयाधारः आत्मनिर्भरता एव अस्ति। दिल्ली एनसीआर क्षेत्रे गतरात्रौ निरन्तरं द्वितीयरात्रौ प्रचण्ड वृष्टिः अभवत्। वृष्ट्या सह मेघगर्जनं तीव्रवायुः विद्युद्योतनं चाभवत्। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन दिल्ल्याः तथा समीपस्थानां क्षेत्राणां कृते रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। आईएमडी इत्यनेन सावधानं कृतं यत् आर्द्रकालः अनुवर्तयितुं शक्यते। अग्रिमेषु कतिपयेषु दिनेषु मेघवृष्टिः निरन्तरं भवितुमर्हति। क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य हिमाचल प्रदेशस्य धर्मशालायां तिसृणाम् ओडीआई क्रीडायां श्रृंखलायाः प्रथमायां क्रीडायां भारतम् अफगानिस्तान दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडा सार्धैकवादने आरभ्यते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिफ्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि भारत को यूरेशिया के ऐतिहासिक और सभ्यतागत साझेदारों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के ढांचे से प्रेरित है। कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इन बैठकों का उद्देश्य नीट पुनर्परीक्षा के लिए प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना, तैयारियों को मजबूत करना और परीक्षा की निष्पक्षता तथा विश्वसनीयता बनाए रखना है। परीक्षा 21 जून को होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में श्री वैष्णव ने अधिक पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित कराने की दिशा में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। देश की खुदरा मुद्रास्फीति दर इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। नई मुद्रास्फीति श्रृंखला के अंतर्गत लगातार 5वें महीने में महंगाई में वृद्धि दर्ज की गई है। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। प्रस्तुति श्रेया श्रीवास्तव की है।

नमस्कार श्रोताओं, सुप्रभात। हर सुबह सिर्फ सूर्योदय नहीं होता, बल्कि उदित होता है एक नया जीवन, जो अपने साथ नई ऊर्जा, नई उम्मीद, नए विश्वास और नए सपनों की सौगात लेकर आता है। जब रात के अंधकार को चीरकर सुबह सूरज खुले आसमान में अपनी लालिमा बिखेरता है, तो हमारे अंदर वो आत्मविश्वास पैदा करता है कि आज का ये दिन हमारा है। हम अपनी मेहनत और लगन से जिस दिशा में चाहें, उस दिशा में इसे मोड़ सकते हैं। तो आइए साथ मिलकर अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाएं, हौसलों के पंख फैलाएं और सपनों के आसमान में उड़ जाएं। न जाने कौन सा कदम हमारे जीवन की

इच्छा बदल दे और सारे सपने सच हो जाएं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रायपुर, मैं हूं आपकी रेडियो साथी श्रेया श्रीवास्तव और पूरे दिल से स्वागत करती हूं आप सभी प्यारे श्रोताओं का आपके अपने कार्यक्रम में, ये कहते हुए कि नमस्कार रायपुर।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
0: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
0: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
2: बिना कष्ट के ये जीवन एक बिना नाविक की नाव जैसा है, जिसमें खुद का कोई विवेक नहीं और वो हल्के हवा के झोंके से किसी भी दिशा में जा सकती है। श्रोताओं, ये प्रेरणादायक सुविचार है भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, दार्शनिक और समाज सुधारक श्री ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय का, जिन्हें संस्कृत भाषा और दर्शन में अगाध पांडित्य के कारण विद्यार्थी जीवन में ही संस्कृत कॉलेज द्वारा विद्यासागर की उपाधि दी गई और वे भारतवर्ष में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से जाने गए। अपने सुविचार के माध्यम से वो हमें जीवन निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियों के महत्व और स्वविवेक की भूमिका के बारे में समझा रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह बिना नाविक की नाव का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता और वो हल्के से हवा के झोंके से किसी भी दिशा में जा सकती है, ठीक उसी प्रकार जिस मनुष्य में स्वविवेक नहीं होता, वो भी जीवन में विषम परिस्थिति आने पर डगमगा जाता है और दिशाहीन होकर सही रास्ते से भटक जाता है। संघर्ष जीवन का एक अहम हिस्सा है और बिना किसी कष्ट के तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। विपरीत परिस्थितियों को आने से रोकना हमारे बस में नहीं है, पर उन परिस्थितियों में स्वविवेक, सकारात्मक विचार और निर्णयात्मक बुद्धि के जरिए हम सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं। और इससे पहले कि ये परिस्थितियां हमारी जिंदगी की दिशा को बदले, हम इन परिस्थितियों को बदलने की क्षमता भी रखते हैं। सच्चे कर्म, अच्छी नीयत, संयम, स्वविवेक और कड़ी मेहनत से जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता को हासिल किया जा सकता है। पर हाँ, ये कटु सत्य है कि कामयाबी की रोशनी में खुद को सजाने से पहले मेहनत और संघर्ष की आग में खुद को जलाना पड़ता है, क्योंकि यही इस जीवन का रंग है और यही इसका रूप भी है।

0: श्रोताओं, देश भर सहित हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में बीते डेढ़ दो महीनों से चल रही गर्मी की छुट्टियां अब खत्म होने जा रही हैं और प्रदेश भर के सरकारी व निजी स्कूल 16 जून 2026 से फिर से गुलजार नजर आएंगे। लोक शिक्षण संचालनालय के नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बीते कई दिनों से बंद पड़े स्कूलों में साफ सफाई, रंग रोगन और जरूरी मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। हर साल स्कूल खुलने से पहले और शुरुआती कुछ दिनों में शाला प्रवेशोत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। स्कूल खुलने पर बच्चों के स्वागत के लिए विशेष कार्यक्रम भी इसमें शामिल होते हैं, ताकि नए सत्र की शुरुआत उत्साह और सकारात्मक माहौल के साथ हो सके। इस साल सत्र में सरकार द्वारा बहुत सी नई और अनूठी पहल की जा रही है और सामान्य बच्चों के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी खास तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में शाला प्रवेशोत्सव 2026 और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए हो रही खास तैयारियां और इस नए सत्र में उन्हें मिलने वाली विशेष सुविधाओं पर हमने बात की रायपुर समग्र शिक्षा के अंतर्गत विशेष शिक्षिका बाल मनोवैज्ञानिक डॉक्टर गार्गी पांडे से। तो आइए आपको सुनवाएं इस विषय पर डॉक्टर पांडे से विशेष संवाद।
1: नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
2: नमस्कार श्रेया।
1: मैम, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस नए सत्र 2026 में शाला प्रवेशोत्सव की किस तरह की तैयारियां हो रही हैं और ये किस तरह से मनाया जाना है।
2: हर साल की तरह इस बार भी हमने अपग्रेड किया है शाला प्रवेश उत्सव को, ताकि बहुत ज्यादा संख्या में हम बच्चों को स्कूलों में जोड़ सकें या जो ड्रॉप आउट बच्चे हो चुके हैं उनको वापस ले आएं। और इस बार का जो हमारा जो शाला प्रवेश उत्सव है वो इसलिए भी खास है कि हमने इंक्लूसिव सेटअप में स्पेशल बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए अपनी मुहिम तेज कर दी है।
1: मैम, इस बार के आयोजन में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्या कुछ खास तैयारियां की जा रही हैं?
2: इस साल के शाला प्रवेश उत्सव में हमने CWSN बच्चे, जो स्पेशल आवश्यकता वाले बच्चे जिन्हें कहा जाता है, उनका चिन्हांकन हमने पूरा कर लिया है और साथ में ही प्रवेश के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं और जो उपकरण है चाहे रैंप है बच्चों के अकॉर्डिंग जो भी करना है हमको स्कूलों में वो कार्य शुरू कर दिया गया है, ताकि बच्चों को आसानी हो स्कूल आने में।
1: मैम, कई बार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य शाला से जोड़ना एक बड़ी चुनौती बन जाती है, इस विषय पर आप क्या कहेंगी?
2: देखिए, चुनौती हर क्षेत्र में होती है, पर खास करके जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है सामान्य बच्चों के साथ में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जोड़ना, क्योंकि कई बार होता है कि हम अवेयर नहीं होते उस चीज के लिए या पेरेंट्स अवेयर नहीं है या करके ही दिक्कत आ रही है बच्चों को स्कूल आने में, स्कूल भेजते हैं जो पेरेंट्स ना, तो दिक्कत आती है उनको।
1: मैम, ऐसे में इन चुनौतियों का सामना करने के लिए आप अभिभावकों को, शिक्षकों को और आपके स्तर पर जिस तरह से कार्य हो रहे हैं उसके बारे में क्या बताएंगी?
2: मैं अभिभावकों, शिक्षकों को यही एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा दिख रहा है जो विशेष आवश्यकता वाला है और वो उसे स्कूल लेकर हमको आना है, तो प्लीज उस बच्चे का चिन्हांकन पहले कीजिए, उस बच्चे की आवश्यकता को समझिए और उन बच्चों को अपने निकट स्कूलों में एडमिशन बिल्कुल कराने में सहयोग करें और ये बच्चों को भी शिक्षा का पूर्ण अधिकार मिला हो।

0: हुआ है, तो बच्चों के लिए जरूरी है कि माता पिता भी जागरूक हों कि उनके बच्चों को स्कूलों में एडमिशन दिया जाए, और शिक्षकों के लिए भी ये सुनिश्चित करना होगा कि इन बच्चों को स्कूलों में एडमिशन देने का जो प्रोसेस है उसमें थोड़ी सी दयालुता का उपयोग करें।
1: मैम, इस शैक्षणिक सत्र में समग्र शिक्षा के अंतर्गत रोड मैप की अगर बात करें तो इस बार कार्य प्रणाली किस प्रकार होगी?
0: देखिए, समग्र शिक्षा के अंतर्गत हम रोड मैप की बात अगर करते हैं तो मैंने फिर वही बात कही कि चिन्हांकन जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको चिन्हित करना, उनका जो जरूरी असेसमेंट करवाना और फिर उसके बाद स्कूलों में एडमिशन करवाना, तो एक प्रक्रिया के तहत इसको ये रोड मैप एक हमने तैयार किया है इन बच्चों के एजुकेशन को पूर्ण करने के लिए।
1: मैम, अगर इस सत्र की बात की जाए, इस नए सत्र में पिछले सालों की तुलना में ऐसा क्या अलग होगा? किस तरह की विशेष सुविधाएं शाला में देखी जा सकती हैं?
0: पिछले सत्र की तुलना में इस साल जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए प्रॉपर रैंप की व्यवस्था की जा रही है, जो उनके अकॉर्डिंग डिजाइन की गई है। कक्षा कक्ष में उन बच्चों को बैठाने की व्यवस्था है और विशेष शिक्षकों की नियुक्ति जो इस बार हुई है, जहाँ बच्चों की संख्या ज्यादा है उन स्कूलों में, तो बच्चे के आवश्यकता के अनुरूप वहाँ पे विशेष शिक्षक है जो बच्चों को उनके अनुरूप शिक्षा देंगे।
1: मैम, जाते जाते आप हमारे सभी श्रोताओं से और खास तौर पर बच्चों से और उनके अभिभावकों से जो विशेष परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, उनसे इस शाला प्रवेशोत्सव के अवसर पर क्या कुछ खास कहना चाहेंगी?
0: मैं सभी पेरेंट्स, जो खास करके विशेष आवश्यकता वाले माता पिता हैं, उनसे यही कहना चाहूंगी कि आपके बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिला है, आप उनके अधिकारों के प्रति जागरूक होइए, उन्हें स्कूलों में एडमिशन करवाइए। शाला प्रवेश उत्सव एक त्योहार है जिसमें खुशी खुशी आप अपने बच्चों को शामिल कीजिए, और सभी बच्चों से अनुरोध है, सामान्य बच्चों से, कि आपके पास जब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आपके मित्र बन के आते हैं तो उनको पूर्ण सहयोग दें, और एक पीयर सपोर्ट स्कूलों में इन बच्चों को देना बहुत जरूरी है, तो जो टीचर, पेरेंट्स और बच्चे सभी के लिए जरूरी है।
1: मैम, आज हमें अपना समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और ये सारी बातें हमारे श्रोताओं से साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, भारत सरकार द्वारा सशक्त और विकसित भारत के सपने को साकार करने बहुत सी महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं, और इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। जब कोरोना महामारी के दौरान स्ट्रीट वेंडर्स, ठेले वाले, रेहड़ी वाले और छोटे दुकानदारों की आजीविका प्रभावित हुई, तब उन्हें आर्थिक सहायता देने और फिर से अपना कारोबार शुरू करने भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना यानी पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को की गई, और इस साल 2026 में इसके सफल 6 साल पूरे होने पर 1 जून से 30 जून 2026 तक सभी नगरीय निकायों में लोक कल्याण मेलों का और जिला मुख्यालय वाले सभी नगरीय निकायों में जिला स्तरीय स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से ऐसे व्यापारियों को व्यवसाय मजबूत करने, सुगमता से ऋण लेने और सम्मान, सुरक्षा तथा आत्मनिर्भरता की सौगात दी जा रही है। इस अवसर पर स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेला 2026 से जुड़ी सटीक और अधिकृत जानकारी आप सभी तक पहुंचाने हमने बात की पीएम स्वनिधि राज्य नोडल अधिकारी श्री सुनील अग्रहरी से। तो आइए आपको सुनवाते हैं इस विषय पर श्री सुनील अग्रहरी से खास बातचीत।
1: नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
2: नमस्कार सर।
1: सर, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेला 2026 के बारे में बताएं कि ये क्या है।
2: देखिए, ये जो स्वनिधि महोत्सव और जो लोक कल्याण मेला है 2026, ये भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित और नगरीय निकायों के सहयोग से नगर प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित एक विशेष अभियान है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन है, छोटे दुकानदार है, ठेले वाले हैं, उनको एक ही जगह पर सरकारी योजनाओं का लाभ और जानकारी प्रदान करना इसका मकसद है। ये मेला नहीं है बल्कि एक सेवा का महोत्सव है। इसमें वेंडर को नया लोन, QR कोड, डिजिटल ट्रेनिंग, साइबर सुरक्षा और निःशुल्क प्रशिक्षण, स्वास्थ्य जांच सब एक स्थान पर मिलेगा। 2026 में हमारा फोकस है कि कोई भी पात्र वेंडर छूटे नहीं और दूसरा तीसरा लोन लेकर अपना काम बड़ा करे।
1: सर, इस तरह के विशेष अभियानों का मुख्य उद्देश्य क्या है?
2: इसके क्या 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला हमारा उद्देश्य होता है सैचुरेशन, यानी हर पात्र वेंडर तक पहुँचना। 2020 के जो सर्वे में छूट गए हैं उनको LOR दे के जोड़ना। दूसरा हमारा उद्देश्य होता है कि ऐसी सुविधा जो वेंडर को दफ्तरों के चक्कर न कराना पड़े। और तीसरा जो हमारा मेन मोटो है वो है सशक्तिकरण। सिर्फ 15,000 का लोन नहीं बल्कि डिजिटल पेमेंट सिखाकर दूसरा लोन 25,000 और तीसरा लोन 50,000 दिलाकर आर्थिक रूप से संबल बनाना। अगर मैं सीधे शब्दों में इसको कहूं तो सेवा आपके द्वार, यही इसका मंत्र है।
1: सर, इस स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेला के माध्यम से हितग्राही किस तरह की सुविधाओं और सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं?
2: देखिए, ये जो मेला आयोजित हो रहा है इसमें हम बहुत सारी सुविधाओं को देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैं अगर बोलूं पीएम स्वनिधि लोन, तो इसमें 15,000, 25,000, 50,000 का लोन का तुरंत आवेदन होगा। LOR मौके पर दिया जाएगा, निकाय वेंडर का स्थल सत्यापन करके LOR जारी कर देगा। डिजिटल किट मिलेगी।

0: जिसमें फ्री कोड और यूपीआई की ट्रेनिंग रहेगी, रजिस्ट्रेशन रहेगा जिसमें फूड वेंडर के लिए फ्री में लाइसेंस और मार्गदर्शन रहेगा, और जो अन्य योजनाएं हमारी हैं जैसे मुद्रा लोन है, पीएम सुरक्षा बीमा है, सुरक्षा बीमा है, और अन्य योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। और इसमें इनके अलावा शिकायत समाधान रहेगा, जैसे जो लोन आवेदन वापस हुआ है तो बैंक वाले वहीं बैठकर कारण बताएंगे और समस्या का निराकरण करेंगे। इसका मतलब ओवरऑल यह है कि वेंडर खाली हाथ आएगा और खुशियां लेकर जाएगा।
1: सर, इन सुविधाओं का लाभ लेने हितग्राहियों को क्या करना होगा? क्या किसी तरह की विशेष प्रक्रिया इसमें शामिल है?
0: नहीं, बहुत अच्छी चीज आपने इन जानकारी के लिए पूछा। इसमें सिर्फ तीन चीजें वेंडर को लेके आनी है, एक आधार कार्ड, एक बैंक पासबुक जिसमें आधार लिंक हो, और तीसरा मोबाइल नंबर जो चालू हो। उसको करना यह है कि नगरीय निकाय में अपने मेले की तारीख पता कर ले, मेले में काउंटर पर जाए, अगर नया वेंडर है तो निकाय एलओआर जारी कर देगा, सीएससी वाले को शुल्क लेकर फॉर्म भरकर अपलोड कर देंगे। ये बात पूरी तरीके से याद रखें कि यह पूरी तरह निःशुल्क है, कोई पैसा मांगे तो संबंधित नगरीय निकाय में संबंधित शिकायत करें।
1: सर, जाते जाते आप हमारे सभी श्रोताओं को इस विषय पर और क्या कुछ खास जानकारी देना चाहेंगे या उनसे क्या कुछ खास कहना चाहेंगे?
0: मैं इस आकाशवाणी के माध्यम से आप सभी श्रोताओं से, खासकर वेंडर भाई बहनों से तीन बातें कहूंगा। पहली, 15,000 का लोन लेकर समय पर चुकाएं, इससे 7% ब्याज सब्सिडी मिलती है और 25,000 का दूसरा लोन तुरंत मिलता है, ये आपकी तरक्की की सीढ़ी है। दूसरा, डिजिटल लेन देन जरूर करें, क्योंकि इसमें महीने में 200 यूपीआई पेमेंट पर 1400 रुपए साल का कैशबैक भारत सरकार देती है, जो की आपकी कमाई का हिसाब भी बराबर रहेगा। तीसरा महत्वपूर्ण, अफवाहों से बचे, स्वनिधि का लोन कभी माफ नहीं होता, लेकिन समय पर चुकाने पर ब्याज में छूट जरूर मिलती है। अंत में मैं बस यही कहूंगा, ये महोत्सव आपके लिए है, अपने परिवार, अपने ठेले वाले साथियों को भी लेकर आए, सरकार आपके द्वारा आ रही है, इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से न जाने दें।
1: सर, आज हमें अपना समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे श्रोताओं तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, भारतीय कृषि क्षेत्र लंबे समय से संसाधनों में कुशल उपयोग और उत्पादकता बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस परिदृश्य में नैनो उर्वरक या नैनो फर्टिलाइजर्स एक आशाजनक तकनीक के रूप में उभरे हैं, जो आधुनिक वैज्ञानिक खेती और टिकाऊ खेती या कृषि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, फसल उपज बढ़ाने और किसानों की आय में सुधार लाने की क्षमता है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार भी नैनो उर्वरक का इस्तेमाल कर आधुनिक खेती को बढ़ाने पर जोर दे रही है। ऐसे में आधुनिक खेती की दिशा में नैनो उर्वरक की उपयोगिता और बेहतर उत्पादन में इसके महत्व के बारे में ज्यादा से ज्यादा और सही जानकारी आप सभी तक पहुँचाने, हमने बात की राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान रायपुर में कार्यरत पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर श्रावणी सान्याल से। तो कृषि के इस अत्यंत महत्वपूर्ण और समसामयिक विषय पर आइए आपको सुनवाएं डॉक्टर सान्याल से विशेष चर्चा।
1: नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
2: नमस्कार आकाशवाणी रायपुर के सभी प्रिय श्रोताओं।
1: मैम, आधुनिक खेती को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़ सरकार नैनो उर्वरक पर जोर दे रही है, तो ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि असल में नैनो उर्वरक क्या है।
2: सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि नैनो शब्द छोटे आकार को दर्शाता है। एक नैनोमीटर एक मीटर का एक अरबवां भाग होता है। जब पोषक तत्वों को अत्यंत सूक्ष्म कणों के रूप में विकसित किया जाता है और उन्हें पौधों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए तैयार किया जाता है, तो उसे नैनो उर्वरक या अंग्रेजी में नैनो फर्टिलाइजर कहा जाता है। पारंपरिक उर्वरकों जैसे यूरिया डीएपी आदि का एक बड़ा भाग मिट्टी में नष्ट हो जाता है या पानी के साथ बह जाता है, जिसे पौधों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसके विपरीत नैनो उर्वरकों के सूक्ष्म कण पौधों द्वारा अधिक कुशलता से अवशोषित किए जाते हैं। वर्तमान में भारत में विशेष रूप से नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का उपयोग बढ़ रहा है। नैनो उर्वरकों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कम मात्रा में भी ये पौधों को आवश्यक पोषण उपलब्ध करा सकते हैं। इसे पोषक तत्वों की उपयोग दक्षता बढ़ती है और उर्वरकों की बर्बादी कम होती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो नैनो उर्वरक कृषि क्षेत्र में एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जो कम मात्रा में अधिक प्रभावी पोषण प्रदान कर खेती को अधिक लाभकारी और पर्यावरण के अनुकूल बनाने का प्रयास करती है।
1: मैम, अब हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को नैनो उर्वरक की उपयोगिता और बेहतर उत्पादन में इसके महत्व के बारे में बताएं।
2: निश्चित रूप से आज कृषि के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहला, हमें उत्पादन को भी बढ़ाना है, दूसरा हमें लागत कम करना है। नैनो उर्वरक इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। पहले तो मैं नैनो उर्वरकों के प्रमुख लाभों के बारे में बताना चाहूंगी। ये पोषक तत्वों की अधिक उपयोग दक्षता को बढ़ाता है। दूसरा, उत्पादन में सुधार करना भी संभव है। संतुलित पोषण मिलने से पौधों की वृद्धि बेहतर होती है, पत्तियों का विकास अच्छा होता है तथा दाने भराव और उपज में सुधार देखने को मिलता है। उर्वरक लागत में कमी मिलती है। किसानों को बार बार अधिक मात्रा में उर्वरक देने की आवश्यकता कम हो सकती है, जिससे उत्पादन लागत घटती है। नैनो उर्वरकों के उपयोग से पोषक तत्वों का रिसाव और वाष्पीकरण कम होता है और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार भी होती है। जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियों में भी सहायक है, जिसमें नैनो उर्वरक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। और अगर हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो छत्तीसगढ़ एक धान प्रधान राज्य है। धान, मक्का, दलहन, तिलहन एवं सब्जियों जैसी फसलों में संतुलित पोषण प्रबंधन के नैनो उर्वरकों का उपयोग किसानों की आय बढ़ाने में सहायक हो सका है। हालांकि मैं अवश्य कहना चाहूंगी कि नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरकों का पूर्ण विकल्प नहीं है, बल्कि इन्हें एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन जिसे

0: अंग्रेजी में इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी कहते हैं, के अंतर्गत वैज्ञानिक सलाह के अनुसार उपयोग करना चाहिए।
1: मैम, अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य में खेती की बात करें तो ऐसे में नैनो उर्वरक के इस्तेमाल में किस तरह की सावधानियां रखना अनिवार्य है?
0: यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि किसी भी नई तकनीक का सही लाभ तभी मिलता है जब उसका उपयोग वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। किसानों को सावधानियां अवश्य रखनी चाहिए। पहला, अनुशंसित मात्रा का ही उपयोग करें। अधिक मात्रा में उपयोग करने से लाभ बढ़ेगा, यह धारणा गलत है। हमेशा कंपनी एवं कृषि विशेषज्ञों द्वारा सुझाई गई मात्रा का ही पालन करें। दूसरा, सही समय पर छिड़काव बहुत आवश्यक होता है। सुबह या शाम के समय हमें इसका छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि तेज धूप एवं अत्यधिक तापमान के समय छिड़काव नहीं करना चाहिए। वर्षा की संभावना होने पर छिड़काव नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वर्षा के बाद हम तुरंत छिड़काव करेंगे तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। और हमें अवश्य कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेनी चाहिए। फसल, मिट्टी और क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुसार उपयोग संबंधी सलाह लेना आवश्यक है। नकली उत्पादों से बचें। केवल प्रमाणित एवं अधिकृत संस्थाओं या विक्रेताओं से ही नैनो उर्वरक खरीदें। संतुलित पोषण बनाए रखें। नैनो उर्वरक के उपयोग के साथ जैविक खाद, गोबर खाद, कंपोस्ट तथा आवश्यक रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग भी जारी रखना चाहिए। सुरक्षा उपाय अपनाएं। छिड़काव के दौरान दस्ताने, मास्क तथा अन्य सुरक्षा उपायों का पालन करना सही रहेगा।
1: मैम, इस तरह के उपयोगी नैनो उर्वरकों को हितग्राही कहां से प्राप्त कर सकते हैं?
0: आज नैनो उर्वरक किसानों के लिए काफी आसानी से उपलब्ध है। किसान भाई बहन इन्हें निम्न स्थानों से प्राप्त कर सकते हैं। पहला, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, कृषि विभाग के अधिकृत विक्रय केंद्र, कृषि सेवा केंद्र एवं उर्वरक विक्रेता, किसान सेवा केंद्र इको तथा अन्य अधिकृत कंपनियों के विक्रय केंद्र, किसान उत्पादक संगठन, कृषि विज्ञान केंद्रों एवं कृषि विभाग के अधिकारियों से किसान सही उपयोग संबंधी तकनीकी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं किसानों से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो खरीदते समय अवश्य ही लेबल नंबर, बैच नंबर, तिथि एवं उपयोग निर्देश देख ही उर्वरक खरीदें।
1: मैम, अंत में आप हमारे सभी श्रोताओं से और खास तौर पर किसान साथियों से इस विषय पर और क्या कुछ खास कहना चाहेंगी?
0: सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी रायपुर का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने कृषि के इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा का अवसर प्रदान किया। मैं अपने किसान भाइयों और बहनों से कहना चाहूंगी कि कृषि आज तेजी से बदल रही है। नई तकनीकों को अपनाना समय की आवश्यकता है, लेकिन किसी भी तकनीक को समझकर और वैज्ञानिक सलाह के आधार पर ही अपनाना और भी अधिक महत्वपूर्ण है। नैनो उर्वरक एक उभरती हुई तकनीक है जो पोषक तत्वों की दक्षता बढ़ाने, लागत कम करने तथा पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना है कि संतुलित पोषण, स्वस्थ मिट्टी और वैज्ञानिक प्रबंधन ही सफल खेती की कुंजी है। मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि नई तकनीक अपनाएं, लेकिन समझदारी के साथ अपनाएं। वैज्ञानिक खेती करें, लागत घटाएं, उत्पादन बढ़ाएं और पर्यावरण की रक्षा करते हुए समृद्ध किसान बने। स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ फसल और समृद्ध किसान ही आत्मनिर्भर कृषि की आधारशिला है।
1: मैम, आज हमें अपना समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और ये सारी उपयोगी जानकारियाँ हमारे श्रोताओं तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आँखी के जम्मो प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चन ले सवलग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: श्रोताओं, आइए अब आपको रायपुर जिले में कुष्ठ रोग की शीघ्र पहचान और समयबद्ध उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित सघन कुष्ठ खोज अभियान 2026 के विषय में आवश्यक जानकारी दें। रायपुर जिले में कुष्ठ रोग की शीघ्र पहचान और समयबद्ध उपचार सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से आगामी 15 जून से 15 जुलाई 2026 तक सघन कुष्ठ खोज अभियान LCDC चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत घर घर जाकर लोगों की जांच की जाएगी और संदिग्ध मरीजों की पहचान कर उन्हें निशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रायपुर जिले की जनसंख्या 28,57,744 है। वर्ष 2026 में अब तक 124 नए कुष्ठ रोगी पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें 22 PB और 102 MB श्रेणी के मरीज शामिल हैं। वर्तमान में जिले में लगभग 585 मरीज उपचाररत हैं और व्यापकता दर 2.05 दर्ज की गई है। इस अभियान के लिए एक महिला और एक पुरुष सदस्य वाली 2 सदस्यीय सर्वेक्षण टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें घर घर पहुंचकर कुष्ठ रोग के संभावित लक्षणों की जांच करेंगी। चमड़ी की सुन्न, दाग धब्बे, त्वचा या अंगों के सुन्नपन, हथेली, पंजों में झुनझुनी और उंगलियों, पलकों या चेहरों की मांसपेशियों में कमजोरी जैसे लक्षण मिलने पर संबंधित व्यक्ति को स्वास्थ्य केंद्र भेजा जाएगा। जांच में रोग की पुष्टि होने पर मरीजों को निशुल्क मल्टी ड्रग थेरेपी उपचार उपलब्ध कराया जाएगा, जो कुष्ठ रोग के पूर्ण उपचार में प्रभावी माना जाता है। जिला स्वास्थ्य समिति ने नागरिकों से सर्वेक्षण टीमों का सहयोग करने और किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल जांच कराने की अपील की है।

श्रोताओं, टिक टिक करती घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब आपसे विदा लेने का समय हो चला है। आपका और आकाशवाणी रायपुर का एक बहुत ही प्यारा और अनोखा रिश्ता है। इस रिश्ते को यूं ही बनाए रखें और हमें अपना प्यार देते रहें। साथियों, आज के लिए नमस्कार रायपुर कार्यक्रम में बस इतना ही। ये सुहाना सफर आज यहीं पूरा होता है। हमें उम्मीद है कि आज का हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपको हमारी प्रस्तुतियाँ कैसी लग रही हैं, हमें पत्रों के माध्यम से ज़रूर लिख भेजें। हमें आपके पत्रों का इंतज़ार रहेगा। बहुत जल्द नए अंदाज में, नई बातों, नई गीतों और नई रोचक जानकारियों के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। इन्हीं ढेर सारी मंगल कामनाओं के साथ आज के लिए अपनी रेडियो साथी श्रेया श्रीवास्तव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

नमस्कार रायपुर, ये सूचनात्मक कार्यक्रम अभी आपने सुना। प्रस्तुति श्रेया श्रीवास्तव की थी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजने वाले हैं, समाचार प्रभात हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगी। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $16 अरब हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
4: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
6: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में $1 अरब से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर $1.80 अरब तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
4: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
7: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत है।
4: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
8: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख हबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
9: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
8: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
10: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ. जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
11: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में तीन भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे, इनमें से किस सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
4: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं, बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमरीका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
12: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमेरिकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज के अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमेरिका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमेरिकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है, शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा, भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
4: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to embark on six-day visit to France and Slovakia this morning. DRDO successfully conducts three consecutive flight tests to demonstrate multi-layered ballistic missile defense capability. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lodges strong protest with U.S. Secretary of State Marco Rubio over U.S. strikes on oil ship that killed three Indian sailors. India and Bangladesh reaffirm their commitment to maintain peace and tranquility along the border. United States says it opened to civil nuclear program of Iran under proposed peace deal. In badminton, PV Sindhu to face world champion Akane Yamaguchi of Japan in women's singles semi-finals of Australia Open today. And in FIFA World Cup, United States takes 3-1 lead in ongoing match against Paraguay in Group D at Los Angeles. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be arriving in Nice, France this evening, embarking on a two-nation European tour spanning France and Slovakia. This is the Prime Minister's seventh official visit to France since 2014 and carries special diplomatic weight. Prime Minister Modi and French President Emmanuel Macron are set to hold their first bilateral summit since the elevation of India-France ties to a special global strategic partnership earlier this year. The Prime Minister will also participate in the G7 summit in Ivan, reaffirming India's standing as an indispensable voice of the Global South on the world stage. Our correspondent joins us now from Nice, France.
13: On arrival this evening, Prime Minister Modi will proceed to his hotel, where he will attend a community reception bringing together members of the Indian diaspora from across the south of France. The engagements on 14th of June opened on a note of innovation and ambition. Prime Minister Modi, alongside President Macron, will inaugurate Bharat Innovates, India's flagship innovation showcase at the Palais des Expositions de Nice. More than 120 Indian startups and companies will come together with leading investors and business leaders from France and across the world, spotlighting India as a global destination for deep tech, artificial intelligence and entrepreneurship. Thereafter, the two leaders will proceed to the historic Villa Kerglos for their bilateral

0: श्रोताओं नमस्कार। डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में मैं प्रवीणा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हम स्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी, चाहे वो पोषक तत्वों की हो या आनुवांशिक कमी हो, हमारी शारीरिक संरचना पर गलत प्रभाव डालती है, तो उसका असर हमारे मन पर भी पड़ता है। ऐसी ही एक त्वचा की बीमारी है एल्बिनिज्म। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस हम मना रहे हैं। ये क्या है, किस तरह की परेशानी है, इसी विषय पर बात करने के लिए हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा को। डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार प्रवीणा जी,
0: आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, एल्बिनिज्म क्या है और क्या ये एक आनुवांशिक शारीरिक समस्या है या कोई स्किन डिजीज है?
1: देखिए, एल्बिनिज्म का मतलब है कि आपके शरीर में, त्वचा में खास के कहीं पे भी पिगमेंट्स नहीं बन रहे, मतलब आपके मेलानिन नहीं बन रहे, जिसके कारण आपकी जो त्वचा का भूरा रंग है वो नहीं बन पा रहा। तो आपकी त्वचा का रंग सफ़ेद या क्रीमिश कलर का होता है। इवन आपके बाल भी सफ़ेद या क्रीम कलर के होते हैं, और कभी कभी आपकी आंखों की पुतलियां भी बहुत लाइट कलर की होती हैं, जो कि ओकुलोक्यूटेनस एल्बिनिज्म में होता है। ये एक तरह का जेनेटिक कंडीशन है, जहाँ पे पैदाइशी ही रंग बनना बंद रहता है। अच्छा। तो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ऐसा होता है। सो ये त्वचा की बीमारी तो नहीं कहेंगे, बट एक आनुवांशिक स्थिति है जहाँ पे शुरू से ही एम्ब्रियो में ही आपके रंग नहीं बन रहे हैं, तो आप पैदा ही बिना रंग के होते हो।
0: अच्छा, तो तब क्या रीज़न है, क्या कारण है कि इस तरह का जो एल्बिनिज्म है उसको लेकर कोई बच्चा पैदा होता है?
1: देखिए, ये ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है, जहाँ पे म्यूटेशन कुछ जीन्स होते हैं जो मेलानिन को रिप्रेजेंट करते हैं आपकी बॉडी में। लाइक हमारे डीएनए में कुछ

0: कोड्स होते हैं जो बताते हैं कि ये वाला कोड ये कलर देगा या फिर ये वाला कोड ये शारीरिक संरचना देगा, उसी के किसी कोड में अगर डिलीशन हो जाए या म्यूटेशन हो जाए, मतलब बदल जाए, कोडिंग चेंज हो जाए, तो उसको म्यूटेशन बोलते हैं। अगर ये म्यूटेशन माता और पिता दोनों में है तो बच्चों में अनुवांशिक रूप से एल्बिनिज्म हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि माता और पिता को एल्बिनो होना पड़ेगा।
1: अच्छा,
0: उनमें ये नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव है, मतलब आपको दोनों जीन चाहिए। दो जीन एक जैसे होंगे तब जाके आपका रंग बनना बंद होगा। यदि आपके किसी भी पेरेंट से एक तरफ से ही म्यूटेटेड जीन आया तो आप सिर्फ कैरियर होंगे, तब आपको वो नहीं होगा। अच्छा। लेकिन हो सकता है कि आपके बच्चों को हो।
1: अच्छा।
0: तो जब दोनों ही पेरेंट्स में जेनेटिक म्यूटेशन होता है तो 25% चांस है कि आपका वो दोनों जीन मम्मी पापा से आपको मिल गया, तो अब आपको एल्बिनिज्म होगा। 50% चांस है कि आपको एक से ही जीन मिला है, अब वो प्रेजेंट नहीं करेगा क्योंकि उसको दोनों जोड़े में चाहिए वो जीन, तो सिंगल रहने से वो प्रेजेंट नहीं करता, बट आप कैरियर हो जाते हो। और 25% फिर से चांस होता है कि आपने वो म्यूटेटेड जीन दोनों ही पेरेंट्स से नहीं लिया
1: जी,
0: तो आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हो सकते हो। तो ये बहुत बारी हो सकता है कि फैमिली में रन कर रहा हो बट कभी भी आपके दोनों पेरेंट मतलब माता और पिता से जीन कभी मिला ही नहीं, तो कभी प्रेजेंट नहीं किया, बट संयोगवश किसी बच्चे में माता और पिता दोनों में वो जीन है और वो प्रेजेंट करता है, तब जाके वो बच्चे को एल्बिनिज्म होता है, जहाँ पे फिर सारे पिगमेंट्स नहीं होते बचपन से या बहुत हल्के होते हैं
1: जी। तो ये छूने से या साथ रहने से या साथ में खाना खाने से इस तरह से भी हो सकता है या केवल माता पिता के द्वारा ही ये कैरियर है इसका?
0: जी, पहले तो एल्बिनिज्म कोई ऐसा विकार नहीं है, जेनेटिक प्रेजेंटेशन हम बोलते हैं कि जीन्स में थोड़ा चेंज हो गया, तो जैसे नाक कभी लंबी हो जाएगी कभी छोटी हो जाएगी, बट हाँ कुछ चीज़ें जैसे बेसिक हैं। अब मेलेनिन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और वो नहीं बन रहा, तो ऑफकोर्स हम इसको थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं, आम जनता देखती है, डॉक्टर्स नहीं देखते
1: जी।
0: तो ये कोई बीमारी नहीं है, एक कंडीशन कहेंगे कि एक स्थिति है जहाँ पे हमको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है।
1: अच्छा,
0: ये छूने से नहीं फैलता, साथ बैठने से नहीं फैलता, कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई बहन को भी होगा ही। सो बीमारी तो नहीं है बट एक कंडीशन है, एक अवस्था है, एक स्थिति है जहाँ पे आपके मेलानिन नहीं बन रहा। अब क्योंकि मेलानिन एज अ प्रोटेक्टिंग मॉलिक्यूल बहुत इम्पॉर्टेंट है, या आपके आंतरिक जो भी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनको धूप की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ऑफकोर्स ये कुछ कुछ परेशानियां डेवलप कराता है। ये आपके विजन में भी डिफ़िकल्टी दे सकता है एल्बिनिज्म, जब आपके रेटिना में भी मेलानिन नहीं है। यूजुअली हमारे पिगमेंट्री जितने भी पिगमेंट्स होते हैं वो स्किन में तो होते ही हैं, बाल में होते हैं, हमारे आईज में भी होते हैं, तभी हमारा विजन होता है। कभी कभी हमारे आयरस में भी पिगमेंट्स की कमी होती है तो अलग अलग रंग के हमको पुतलियाँ दिखती हैं, इसमें भी बहुत हल्की पुतलियाँ होती हैं
1: जी।
0: तो विजन इम्पेयर्ड हो सकता है और इसका इफ़ेक्ट आपके डे टू डे लाइफ में पड़ता है, ऑफ कोर्स बच्चों को या जो बड़े हो गए हैं। बट उनके छूने बोलने बैठने खाने पीने से नहीं होता, लेकिन इसको आप छू के या साथ में रह के नहीं फैला सकते।
1: तो जिन्हें एल्बिनिज्म की समस्या है उनको किस किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए, धूप में ना निकलें या क्या करें वो?
0: जी, क्योंकि मेलानिन हमारा फोटो प्रोटेक्टिव एजेंट है, ये हमको धूप के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के डैमेज से बचाता है, ये हमको फोटो बर्न से भी बचाता है, तो हमारी चमड़ी धूप में जलती नहीं है
1: जी।
0: हम यूजुअली कहते हैं धूप में गए तो टैन हो गए, तो टैन हो गए मतलब हमारे मेलानोसोम ने और थिक लेयर बनाया और हमारे इंटरनल स्किन को बचा लिया जलने से
1: जी,
0: बट मेलानिन गाढ़ा हो गया, तो टैनिंग ऐसे प्रिवेंट करती है। अब क्योंकि यहाँ पे मेलानिन है नहीं तो वो प्रिवेंशन वाला पार्ट नहीं होता, तो धूप में स्किन जल्दी जल जा सकती है, जल्दी लाल हो जा सकती है, आपको बहुत ज़्यादा जलन महसूस होगी, और इवन धूप में आंखों में क्योंकि पुतलियों में भी रंग नहीं होता तो आपको धूप में बहुत ग्लेयरिंग होगी, मतलब आँखें चौंधिया जाएंगी।
1: अच्छा।
0: इवन विजन भी इसमें कम होता है तो आपको हो सकता है कि बहुत अच्छा नहीं दिखता हो, आपको नज़दीक की दिखने की समस्या हो सकती है, दूर की दिखने की समस्या हो सकती है, कभी कभी किसी किसी केस में आंखें स्ट्रैबिस्मस होता है, इवन आंखें घूमती रह सकती हैं या बैलेंस नहीं रहती, मतलब फोकस नहीं कर पाती
1: जी,
0: तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे अल्बिनिज्म में आंखें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं। तो धूप में उसमें भी उनको बहुत दिक्कत होता है
1: जी।
0: तो उनको सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि कोशिश करनी चाहिए कि कवर्ड कपड़े पहनने होते हैं। धूप में हमेशा सनस्क्रीन लगा के निकलना होता है, जो भी एक्सपोज्ड पार्ट है। छाता और धूप के बड़े चश्मों का जरूर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा रोशनी शरीर पे पड़ेगी वो उतनी ज्यादा लॉन्ग टर्म में उनको परेशानी देगी।
1: अच्छा।
0: और हाँ, क्योंकि आप जितना फोटो प्रोटेक्शन अगर आप मेलानिन से नहीं कर सकते हो तो आपको फिजिकल प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी।
1: जी जी डॉक्टर साहब, हमारी बातें चल रही हैं एल्बिनिज्म के ऊपर, और ये कार्यक्रम में हमें और भी ज़्यादा जानकारी आपसे जाननी है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि क्या आप गीत संगीत में भी रुचि रखती हैं?
0: जी।
1: तो बताइए कि आपकी पसंद का कोई गाना जो आप सुनना चाहती हैं।
0: जी, मुझे वो गाना बहुत पसंद है, मेरा गोरा रंग ले ले मोहे शाम रंग दे दे, छिप जाऊंगी रात में ही मुझे पी का संग दे दे।
1: जी, तो ज़रूर आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के बारे में, और हमारे साथ हैं डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा जी। एल्बिनिज्म वाले जो लोग हैं, भोजन में वो किस तरह का चीज़ें लें कि जिससे उनके शरीर को ज़्यादा तकलीफ ना हो?
1: भोजन में एल्बिनिज्म वाले लोग कोशिश कर सकते हैं कि जितनी ज़्यादा विटामिन ए, बीटा कैरोटीन वाली चीज़ें लेंगे वो उतना धूप से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है। बट ऑफ कोर्स क्योंकि मेलानिन मिसिंग है तो ये उस तरीके से नहीं काम करेगा जैसे नॉर्मल करता है। तो कुछ फल सब्जियां, जैसे कि हरी सब्जियां जितनी भी हो गई वो बीटा कैरोटीन रिच होती हैं। गाजर, पपीता, आम, ये सब बीटा कैरोटीन रिच होते हैं, विटामिन ए रिच होते हैं। इवन अगर जो नॉनवेज खाते हैं वो अंडे खा सकते हैं, खास के येलो वाला पार्ट जो विटामिन ए रिच होता है। इस तरीके से आप विटामिन ए, बीटा कैरोटीन आप बढ़ा सकते हो अपने बॉडी में जी। और विटामिन सी भी आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के साथ होता है। आप जितना हो सके फल सब्जियों का उपयोग करना, बिकॉज यहाँ पे हमारा फ्री रेडिकल इंजरी बहुत चलेगा स्किन में जी। तो उसको स्कैवेंज करने के लिए या उसको शरीर से हटाने के लिए हमारे शरीर को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। हमारे सेल्स हमेशा काम करते रहते हैं बॉडी के डैमेजेस को कम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर मिसिंग है तो ऑफकोर्स हमारे सेल्स को थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा सपोर्ट की। तो न्यूट्रिशन एक बहुत ही मेजर फैक्टर होगा। बॉडी को ल्यूब्रिकेट करके भी रखना चाहिए, बिकॉज आप जितना ज़्यादा अच्छे से हाइड्रेट, ल्यूब्रिकेट और ऑयलिंग करके रखोगे, सूरज की जो भी रोशनी होती है वो स्किन पे परावर्तित हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो बहुत हद तक अंदर नहीं जाएगी। बट ऑफकोर्स सनस्क्रीन या फिजिकल प्रोटेक्शन ज़्यादा हद तक आपको हेल्प करेगा
0: जी। आपने बताया कि सनस्क्रीन लगा सकते हैं शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, त्वचा को। घरेलू कोई उपाय हैं जिनको हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो हमारे श्रोता हैं वो उसको उपयोग कर सकें?
1: देखिए, घरेलू तो बहुत ज़्यादा फोटो प्रोटेक्शन नहीं होता। जैसा मैंने कहा, आप थिक लेयर तेल जब लगाते हो तो वो आपकी चमड़ी को इतना ज़्यादा चमकदार करता है कि सूरज की जो भी किरणें शरीर पर आती हैं वो अंदर नहीं घुसती, बहुत हद तक परावर्तित या रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो अब क्या है कि आप ये जो तेल है ये आपके रिफ्लेक्शन में बहुत हेल्प करता है। आपने देखा होगा गांव के लोग सरसों तेल लगा के ही गांव काम पे निकलते हैं, नहा के वो जरूर लगाते हैं सरसों तेल, और वो खेतों में आराम से काम कर पाते हैं। एक तो उनका शरीर का रंग भी उनको हेल्प करता है, क्योंकि वो गाढ़े ब्राउन कलर की स्किन हो जाती है खेतों में काम करने से। बट ऑफकोर्स सिर्फ हम इस बातों पे नहीं ध्यान दे सकते कि सिर्फ तेल लगा के बाहर निकल जाए तो हम बच जाएंगे। आप कवर्ड कपड़े पहनिए, बड़ा हैट पहनिए, छाता अगर उपयोग कर सकते हैं करिए, बड़े चश्मे काले पहनिए जो आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचा सके जी। ऐसा ज़रूर करिए।
0: अच्छा, हम जानना चाहते हैं कि एल्बिनिज्म वाले जो बच्चे हैं उनको नॉर्मल स्कूल में या स्पोर्ट्स में या जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, रोज़ाना के जो रोज़मर्रा के शारीरिक व्यायाम हैं या खेल हैं, क्या वो कर सकते हैं? उसमें कोई समस्या तो नहीं आती?
1: नहीं, फिजिकली दे आर परफेक्ट। फिजिकली देखिए, उनको कोई भी शारीरिक समस्या ऐसी नहीं होती। विजन का दिक्कत तो ज़रूर होता है पर शरीर में कमजोरी नहीं होती। वो सभी तरीके के खेल कूद कर सकते हैं, बट हाँ, बशर्ते उनको आउटडोर खेल से परहेज करना चाहिए। वो इंडोर खेल करे तो ज्यादा बेहतर है, बिकॉज आउटडोर में आपका सन एक्सपोजर होगा।
0: तो वो कैसे जाने कि मतलब उनको उनके शरीर में जैसे रेडनेस है तो वो कैसे जाने कि ये किस तरह की परेशानी है या किस कंडीशन में उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
1: जिनको भी एल्बिनिज्म है यानी रंग नहीं बन रहा, अगर उनको धूप में जाने के बाद स्किन रेड रहती है और बहुत देर तक रेड रहती है या जल रही होती है, तो उनको तुरंत डॉक्टर को मिलना चाहिए, स्किन वाले डॉक्टर को मिलना चाहिए जो चमड़ी के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स,
0: त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं जो
1: जी। और शरीर पे यदि कहीं पे भी नया पिगमेंटेशन या कोई नया घाव बन रहा है जो भर नहीं रहा या कोई तिल आना शुरू होता है तो भी, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मेरे कुछ पेशेंट्स में मैंने देखा है कि एल्बिनिज्म में 17-18 साल के बाद भी कभी जब कभी भी रंग नहीं बना और सडन गालों पे रंग बनना नॉर्मल शुरू हो जाता है
0: जी।
1: तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका कहीं पर रंग भी बनना शुरू हो जाता है।
0: अच्छा, मतलब शरीर में कुछ भागों में कलर आना जो डार्कनेस है वो शुरू हो जाती
1: है? बहुत रेयर है, बट मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें रंग बनना वापस शुरू हुआ है, जो कि नॉर्मल पिगमेंटेशन शुरू होती है, बट उनके लिए फिर परेशानी की सबब वो पिगमेंट है।
0: अच्छा।
1: बिकॉज अब तक वो कंफर्टेबल थे रंग के बिना, और वो ब्राउन कलर बिल्कुल डार्क ब्राउन उनको फिर सही गालों पे अच्छा नहीं लगता।
0: जी जी।
1: तो फिर उस स्थिति में वो रंग भी हटाना होता है।
0: अच्छा, तो उसका अलग इलाज मतलब?
1: जी, उसके लिए फिर अलग इलाज होता है, कुछ दवाइयां होती हैं जो आपके कुछ एरिया में अगर रंग बहुत ज्यादा बन गया है तो कम कर सकते हैं।
0: हाँ हा।
1: ये खास के उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जिनको जनरलाइज्ड विटिलाइगो होता है, सफेद दाग की परेशानी।
0: अच्छा।
1: कि पूरे शरीर में सफेद दाग हुआ जा रहा है।

0: बट कुछ एरिया है जहाँ पे रंग बना ही हुआ है, तो अब वो एक जैसा नहीं फील करते, पैची फील करते. तो उस केस में कुछ ऐसे मिलानोटॉक्सिक मेडिसिन होती हैं जिनको लगाने से जो बचा खुचा रंग होता है वो भी हम हटा सकते हैं,
1: जी
0: क्योंकि विटेलाइगो में कभी भी आईज इन्वॉल्व नहीं होते तो वो थोड़ा ठीक रहता है.
1: जी जी
0: एल्बिनिज्म में भी ऐसे केसेस देखे हैं मैंने जहाँ पे रंग वापस बनने लग जाता है, तो फिर आप उस पिगमेंट्स को भी हटा सकते हो. बट उनका रेगुलर स्किन चेकअप होते रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप प्रोन टू एग्जिमास भी होते हो और प्रोन टू कैंसर्स भी होते हो.
1: अच्छा, मतलब ऐसे लोगों को एक्जिमा,
0: देखिए कोई भी फोटो डैमेज होगा ना तो वो
1: हाँ हाँ
0: एक्जिमा डर्माटाइटिस की तरफ जा सकता है.
1: जी तो डॉक्टर साहब, आगे बातें हमारी और भी होंगी। अभी एक वक्त हो गया है कि आपसे एक गीत की और जो आप सुनना चाहती हैं।
0: जी लता मंगेशकर द्वारा गाया हुआ चंदन सा बदन चंचल चितवन.
1: जी, सरस्वती चंद्र फिल्म का ये गीत
0: जी
1: है, तो सुनवाते हैं आपको।

0: तो श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं आज अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस पर और कार्यक्रम चल रहा है डॉक्टर की सलाह। हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं क्या एल्बिनिज्म का कोई परमानेंट इलाज है या इसका कोई क्योर है क्या?
1: जी, अभी तक तो ऐसा नहीं है क्योंकि एक बार ही जेनेटिक म्यूटेशन हो चुका है तो आप उसको ठीक तो नहीं कर सकते
0: जी।
1: अब आप सिर्फ उसको मैनेज कर सकते हो या मेंटेन कर सकते हो।
0: जब भी हमारे शरीर में कोई विकार होता है या हमारे शरीर में किसी तरह की समस्या होती है तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक मिथक होता है, चाहे वो समाज में हो चाहे परिवार में हो, और हर बीमारी में इस तरह होता है कि भाई अगर उसको शरीर के में अगर उसको कलर चेंज हो गया है या स्पॉट्स आ रहे हैं तो उनका कुछ और सोचना हो जाता है। तो इस तरह से जो कॉमन जो लोग इस चीज़ के बारे में एल्बिनिज्म के बारे में सोचते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं जो लोग सोचते हैं?
1: देखिए, क्योंकि आपने जो बोला कि शारीरिक विकार आ जाता है, तो मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारी स्थिति में तो शारीरिक विकार नहीं आता। और सिर्फ एल्बिनिज्म का नहीं बोल रही हूँ, मैं विटिलाइगो में भी बोल रही हूँ
0: जी।
1: ठीक है, सिर्फ रंग नहीं बनता, सफेद दाग की परेशानी में भी रंग नहीं बनता, बट मुझे लगता है कि समाज का मानसिक विकार तो जरूर है।
0: हाँ,
1: क्योंकि ये जितनी भी परेशानी है ना इंसान के, जिसको है उसके जीवन का, वो उनकी खुद की शरीर की परेशानी नहीं होती
0: जी जी,
1: ये समाज के लोग, परिवार के लोग, दादी नानी चाची फूआ मौसी अड़ोसी पड़ोसी जो आपके सबसे सगे बनते हैं ना, ये उनके मानसिक विकार के कारण परेशान रहते हैं, त्रस्त रहते हैं
0: जी जी जी।
1: वरना न ही कोई सफ़ेद दाग का बीमारी वाला इंसान फंक्शनली या मेंटली वीक होता है, और ना ही एल्बिनिज्म वाला इंसान फंक्शनली या मेंटली वीक होता है। विजन ऑफ कोर्स अफेक्टेड रह सकता है, बट कोई मानसिक विकार नहीं होता, शारीरिक विकार नहीं होता, आपको सिर्फ देखने में ऐसा लग रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स कुछ एल्बिनिज्म में उनको परेशानी हो रही है विजन में, या किसी किसी में बिल्कुल आंखें बिल्कुल नहीं देख पाती, वो सीवियर कंडीशंस में होता है, तब तो आप ठीक है। बट सोसाइटी के मन का विकार मुझे ज्यादा लगता है, क्योंकि हो सकता है वो इंसान अपनी उस परेशानी से उतना परेशान नहीं हो जितना वो इस बात को सुन के परेशान हो कि अरे तुमको क्या हो गया
0: जी?
1: तुमने दिखाया नहीं। अरे उसको हुआ था तो उसके पूरे शरीर में हो गया, फिर उसको ऐसे हो गया, बिल्कुल नहीं ठीक होता। बिकॉज देखिए, हम लोग प्रतिदिन ऐसे लोगों से मिलते हैं, इनका जो कॉन्फिडेंस लो होता है ना वो अपनी वजह से नहीं होता। ये उनके जो शुभ चिंतक होते हैं ना ये उनकी वजह से होता है। ये जो अच्छा परफॉर्म नहीं करते, अपने बारे में बुरा सोचते हैं, ये उनके शुभ चिंतकों की वजह से होता है।
0: जी जी जी।
1: तो मुझे जैसा लगता है कि ये शारीरिक विकार ना हो के सामाजिक मानसिक विकार है।
0: जी जी जी। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे से समझाया आपने इस चीज़ को, और सच में अगर किसी भी बच्चे के साथ कोई समस्या है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो विशेषज्ञ हैं उनके पास लेकर जाएं और उनसे सलाह मशवरा करें, बजाय इसके कि हम अपने दिमाग में कोई मिथक बना लें या उस बच्चे को उस तरह से हम परेशान करें। बहरहाल डॉक्टर साहब, जो एल्बिनिज्म है इसके साथ में एक हेल्दी स्वस्थ और विश्वासपूर्ण अपने ऊपर भरोसा करके इंसान कैसे जी सकता है?
1: देखिए, सबसे पहले आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपने मेरा रंग नहीं देखा, आप मुझसे बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने पढ़ाई करी
0: जी,
1: मैंने अपने करियर में कुछ पाया। तो समाज में ना आपके ज्ञान का, आपके कर्म का महत्व है
0: जी।
1: आप उनकी बातें सुनते हो जिन्होंने कुछ हासिल किया होता है। तो सबसे पहले ये जानने वाली बात है कि इंसान को उसको फॉलो करना चाहिए जो उसका मोटिवेशन बढ़ाए या जो उसको सफलता प्राप्त करने में हेल्प करे। रंग कोई बहुत मायने नहीं रखता,
0: बिल्कुल
1: ठीक है। आप सांवले हो सकते हो, काले हो सकते हो, आपको चेहरे पे झाइयां हो सकती हैं, आपके लहसन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपके बाल हो सकते हैं नहीं हो सकते, लेकिन यदि आप अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हो, जो कि हो सकता है कि आप बौद्धिक स्तर पे करो, हो सकता है कि आप शारीरिक स्तर पे करो, या आप समाज में हेल्प करो, तो आपका लाइफ कितना फ्रूटफुल है और समाज के प्रति कितना हेल्पफुल है, या आपकी वजह से किसी की जिंदगी में कोई अंतर पड़ रहा है कि नहीं, पॉजिटिव अंतर ऑफ कोर्स
0: जी,
1: आपका जीवन वही सार्थक हो जाता है। लेकिन यदि आप सोचते हो कि मैं गोरा हूँ या मैं काला हूँ या मेरे को रंग नहीं बन रहा या फिर मेरे पास ये कमी है, लोग क्या कहेंगे, सबके पास सब अच्छा है, किसी के पास कुछ अच्छा नहीं है, सब अपने अपने दुख में हैं, सबके पास एक छोटी सी परेशानी है जो शायद आपको बस नहीं पता है
0: जी।
1: तो आप अपने जो भी स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, आपका जो भी शारीरिक मानसिक या बौद्धिक क्षमता है जिसको आप बढ़ा सकते हो और जिससे फिर आप और बेहतर हो सकते हो, आप उस पर काम करो
0: जी।
1: कोई जरूरी नहीं है कि आपको भीड़ के जैसा दिखना है। तो आप अपनी क्षमता पे काम कर सकते हो और अपना लाइफ में एक मकाम हासिल कर सकते हो जिस भी फील्ड में करो।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और अब चलते चलते हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे जो सुनने वाले हैं, जो श्रोता हैं हमारे, उनको आप एल्बिनिज्म के बारे में क्या संदेश देना चाहती हैं, उन्हें किस तरह से जागरूक करना चाहती हैं?
1: देखिए, एल्बिनिज्म क्योंकि मेलानिन की कमी की वजह से है, तो एक तो मैं एल्बिनिज्म के लोगों को ये कहूँगी कि आप प्लीज़ धूप से बचिए, कवर्ड कपड़े पहनिए, सनस्क्रीन्स लगाइए, हैट्स पहनिए, चश्मे पहनिए और प्लीज़ डॉक्टर्स को बीच बीच में मिलते रहिए
0: जी।
1: और मैं नॉर्मल लोगों से ये कहना चाहूँगी कि ये जो हम गोरे और सांवले हो गए, टैन हो गए या झाइयाँ बन गई, इसके पीछे पड़े रहते हैं। आप देखो कि मेलानिन कितना ज़रूरी है कि उसका नहीं होना एक बीमारी हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: तो इसमें मतलब सबसे बड़ी सावधानी ये है कि धूप से जितना ज़्यादा बच सकते हैं उतना बच कर रहें और अपने शरीर की इस समस्या को लेकर डॉक्टर से ज़रूर मिलें
1: जी।
0: तो डॉक्टर साहब, आपने आज अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस पर हमारे श्रोताओं को बहुत उम्दा जानकारी दी और इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद प्रवीणा जी।
0: इसके साथ ही ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।

0: समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह, इसमें अभी आप सुन रहे थे एल्बिनिज्म रोग के कारण लक्षण और उपचार, इस विषय पर त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा से ली गई भेंट वार्ता। भेंट कर रही थी प्रवीणा त्रिपाठी और प्रस्तुति रमा शंकर की थी। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बातों बातों में। इस कार्यक्रम में आज सुनिए मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा से ली गई भेंट वार्ता। प्रस्तुति विकल्प शुक्ला की है।
1: श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 से शुरू हुई इस यात्रा में देश ने विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, डिजिटल परिवर्तन, सामाजिक कल्याण और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका के कई नए आयाम देखे हैं। श्रोताओं, इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 10 जून को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल 4,399 दिन का हो गया है। इस तरह से उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने जो 12 वर्ष पूरे किए हैं और इस दौरान जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार श्री शशांक शर्मा जी। शशांक जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
2: विकल्प जी नमस्कार, श्रोताओं को भी नमस्कार।
1: जी शशांक जी, जैसा भी हम परिचय में बता रहे थे कि 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, शशांक जी इन 12 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धियां आपकी नज़र में क्या हैं?
2: विकल्प जी, मुझे लगता है कि इस 12 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि एक स्टेबल सरकार,
1: मतलब
2: जो
1: स्थिर सरकार जी,
2: जो विकास के अभी आपने जो आंकड़े गिनाए
1: जी,
2: ये सारा जो कुछ है वो इसलिए संभव हुआ क्योंकि एक स्थिर सरकार 1990 से लेके 2014 तक
1: जी,
2: जो अस्थिरता थी जिसके कारण भारत को विकास की जिस गति से और दूसरे आयामों में जिस तरह से एक अपने आप को स्थापित करना था
1: जी,
2: उसमें जो हम चुके
1: जी,
2: मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक और महत्वपूर्ण बात
1: जी,
2: अभी आपने पंडित नेहरू से मोदी जी की एक तुलना की,
1: उनके कार्यकाल की
2: हाँ। तो देखिए कितना एक गजब का एक वो है कि 52 में वो निर्वाचित हुए
1: जी,
2: 52 से 64 तक वे रहे
1: जी,
2: और ये 14 से अभी 26 हुआ है
1: जी।
2: इस दौरान
1: जी
2: वो भी बहुत स्थिर सरकार थी
1: जी,
2: और इसलिए उस समय भी जो भारत का एक जो बुनियाद बनना चाहिए था वो शुरू हुआ। लेकिन एक देखिए कि जहां कमियां थी उस कमियों को इस 12 साल की सरकार ने, 1962 का एक बड़ा युद्ध हुआ
1: जी
2: चीन के साथ
1: जी,
2: और उसमें हम बुरी तरह से हारे थे
1: बिल्कुल जी।
2: मोदी जी की सरकार का जो एक बड़ी उपलब्धि के रूप में आप देखेंगे
1: जी,
2: तो जो सामरिक शक्तियां हमारी जो बनी हैं
1: जी,
2: और अभी लगातार जिस प्रकार से हम अपने विरोधी देशों को
1: जी,
2: जो आतंकवाद फैलाते हैं
1: जी,
2: चाहे वो उरी हो
1: जी,
2: चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो
1: जी,
2: ये जो तैयारी है भारत की, ये जो क्षमता बढ़ी है 12 वर्षों में, हमारा संविधान भी जो है
1: जी,
2: जब उसकी उद्देशिका की बात हम करते हैं तो उसकी शुरुआत होती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व राष्ट्र के रूप में।
1: जी,
2: तो भारत की संप्रभुता किसमें होगी? जब उसकी सामरिक शक्ति इतनी होगी कि हम किसी दूसरे को डराएंगे तो नहीं, लेकिन कोई अगर हमारी ओर आंख उठाकर देखेगा
1: जी
2: तो उसका माकूल उसको जवाब देंगे।
1: बिल्कुल।
2: तो आज भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ा संतोष भारत के नागरिकों को इस बात के लिए होना चाहिए
1: जी
2: कि भारत अपनी सामरिक शक्ति के आधार पर वो किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। अब भारत 1962 की स्थिति से बहुत आगे निकल चुका है।
1: बिल्कुल। एक बात और शशांक जी, जैसे हम पिछले 12 वर्षों में यदि देखते हैं तो केंद्र सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को आधार बनाकर अनेक योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए। यदि हम वित्तीय समावेशन की बात करें तो जनधन योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल साबित हुई है, और डिजिटल इंडिया की बात करें तो ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। लेकिन इससे अलग हटके मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जब 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी तो क्या लगता है उस समय क्या चुनौतियाँ थीं उनके सामने, देश के सामने, और आज जब 12 वर्षों के सफर को देखते हैं तो हमने उन चुनौतियों से कितना पार पाया है?
2: विकल जी, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी चुनौती 2014 में देश के समक्ष थी
1: जी
2: वो आर्थिक चुनौती थी
1: जी।
2: जिस प्रकार 2008 में अमेरिका सहित पूरे विश्व में एक जो मंदी का दौर आया था
1: जी,
2: उस मंदी के दौर से निकलने के लिए जिस तरह के भी प्रयास अपने देश में हुए थे
1: जी,
2: वो प्रयास मुझे लगता है कि देश को कई आर्थिक चुनौतियों से घेर लिया था।
1: अच्छा।
2: तो उससे ये हो रहा था कि देश का विकास, देश में अधोसंरचना का विकास
1: जी,
2: देश में विनिर्माण जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है
1: जी,
2: वो हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे थे
1: जी।
2: तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चुनौतियों के समक्ष भारत की जिस तरह से हमारे पड़ोसी देश हमको घेर रहे थे
1: जी,
2: आतंकवाद जिस तरह से मुंह फैलाए हुए था
1: जी,
2: नक्सलवाद अपने चरम पर था 2014 को अगर आप देखेंगे
1: जी,
2: तो ये जो आंतरिक चुनौतियां थी, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां थी, और उसके साथ भारत का विकास, रोजगार एक बहुत बड़ी चुनौती थी उस समय, भारत की अधोसंरचना ये बहुत बड़ी चुनौती थी। अपने संविधान की बात मैंने इसके पहले प्रश्न का उत्तर जब आपका दिया
1: जी,
2: तो उसका पहला जो शब्द है, हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व राष्ट्र बनाना चाहते हैं
1: जी,
2: और हमारे संविधान के उद्देशिका का अंतिम शब्द आता है हम एकता और अखंडता को सुरक्षित रखना। और भारत के अंदर में कश्मीर में जिस तरह के हालात थे, अभी हम 2-3 दिन पहले देखा है कि हमने मनाली से लद्दाख तक का एक हमारा मार्ग तैयार हुआ है। देखिए ये कितनी बड़ी घटना है कि भारत का ही एक क्षेत्र लद्दाख
1: जी,
2: जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप देखेंगे तो लद्दाख जाने का भारत का सीधा कोई रास्ता नहीं था,
1: वो कोई सुगम रास्ता नहीं,
2: कोई सुगम रास्ता नहीं था
1: जी।
2: तो लद्दाख को भारत के मुख्य भूमि से जोड़ने का एक बहुत बड़ा जो कदम है
1: जी,
2: वो इस सुरंग से संभव हो पाया है।
1: बिल्कुल।
2: तो ये चुनौतियां उस समय मैं देखता हूँ
1: जी। एक बात और है कि जैसे ये 12 सालों की यदि हम बात करें तो गरीब कल्याण जो है वो सरकार की प्राथमिकताओं में प्रमुख रहा है, फिर चाहे हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना की, आयुष्मान भारत और जनधन जैसी जो योजनाएं हैं उसके माध्यम से करोड़ों लोगों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी है कि इन 12 वर्षों में चाहे वो युवा हो, महिला वर्ग हो, किसान भाई बहन हो, इनको सशक्त बनाने में केंद्र सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपका क्या मानना है यदि हम विभिन्न वर्गों की बात करें?
2: देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक चुनौती जो बहुत बड़ी थी उस समय
1: जी,
2: वो भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी
1: जी,
2: एक पारदर्शिता बहुत बड़ी चुनौती थी
1: जी।
2: हमारे तो पूर्व के हमारे देश के नेताओं ने कहा कि 1 रुपए भेजते हैं तो 85 पैसा पहुंचता है
1: जी जी जी।
2: उनको ठीक करने के लिए जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी आई
1: जी,
2: उसमें हमने जो जनधन योजना को मोबाइल के साथ कनेक्ट करना
1: जी,
2: और उससे हम 50 लाख करोड़ रुपए का ट्रांसफर किया हमने इस जनधन योजना के माध्यम से। देखिए इससे लाभ क्या हुआ, 4.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हुए
1: जी।
2: दूसरी चीज कि जो हमारे जितने भी बल्ब लगते थे वो पहले के जो पीले रंग के जो बल्ब आते थे वो लगते थे जो 40 वाट के, 25 वाट के, 60 वाट के
1: जी।
2: जब टेक्नोलॉजी बदल गई तो एलईडी का जब उपयोग होने लगा
1: जी,
2: तो सरकार ने कहा कि भाई आप एलईडी बल्ब का उपयोग करिए
1: जी।
2: 65 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए
1: जी।
2: देखिए विकल्प जी, इनसे फायदा क्या हुआ
1: जी?
2: इनसे फायदा हुआ कि कम से कम 2025 लाख किलोवाट
1: जी,
2: इतनी बिजली की बचत हुई।
1: बिल्कुल,
2: पिछले अगर 12 वर्षों में देखेंगे ना तो बहुत सारे पावर प्लांट इस देश में नहीं लगे
1: जी,
2: क्योंकि उससे प्रदूषण बढ़ता है। तो हमने गैर परंपरागत सोर्स की तरफ गए, हमने ऊर्जा जो है वो सोलर एनर्जी को आगे बढ़ाया
1: जी,
2: और पूरे देश में उत्तर प्रदेश बिहार सहित ऐसे हजारों लाखों गांव थे जहां पर बिजली की पहुंच नहीं थी, वहां तक हम बिजली की पहुंच तक लाए। तो गरीबों को जो चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती थी, सड़क, बिजली, पानी, उज्ज्वला योजना, हर घर में जो एलपीजी का सिलेंडर पहुंचा
1: जी,
2: गरीबों की समस्याओं को निराकरण करने की जो एक सोच और पहल होती है
1: जी,
2: वो हमको इन 12 सालों में दिखाई देता है
1: जी।
2: हर व्यक्ति की आकांक्षा होती है कि उसका खुद का घर हो
1: जी।
2: तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये केवल एक मकान बनाकर देना नहीं है, मकान बनाकर देने की योजना तो बहुत पहले से चल रही
1: जी।
2: है, लेकिन एक ऐसा घर दे देना, केवल एक कमरे का नहीं, मध्यम वर्ग के लोगों को भी हम प्रधानमंत्री आवास योजना के, आपके पास जमीन होनी चाहिए
1: जी।
2: तो एक जो जमीन से जोड़ने, समाज से जोड़ने और अर्थव्यवस्था जिसे जोड़ने का जो उपक्रम पिछले 12 वर्ष में सरकार ने अलग अलग तरीके से किया है, उसका लाभ हमको इन 12 वर्षों में कहीं ना कहीं दिखाई देता है।
1: एक बात और शशांक जी, अभी आपने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया गया है। यदि हम युवा कल्याण की बात करें, युवा वर्ग के कल्याण की बात करें, तो देखिए एक युवा जब पढ़ाई करता है तो शिक्षा वो हासिल करता है, ज्ञान हासिल करता है, लेकिन उसका उद्देश्य होता है कि वो रोजगार प्राप्त करे। इन 12 वर्षों में हमने देखा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से जो विनिर्माण क्षेत्र है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसको मजबूती देने का प्रयास किया गया है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल निर्माण, रक्षा उत्पादन और अन्य क्षेत्रों में निवेश भी आकर्षित किए गए हैं। आपका क्या मानना है?
2: देखिए, अगर आप 12 साल में देखें कि भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी विकल्प जी?
1: जी,
2: कि हमने विनिर्माण क्षेत्र जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है
1: जी,
2: उन क्षेत्रों पर हमने काम नहीं किया जो भारत में उत्पादन ही नहीं होता था
1: जी।
2: 1991 में जब हमने उदारीकरण का जो काम शुरू किया था
1: जी,
2: तो हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स की बात हमने की थी 1992 में
1: जी,
2: लेकिन इसमें बहुत काम नहीं हुआ
1: जी।
2: अब इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल का सबसे बड़ा बाजार आज भारत बना हुआ है
1: जी,
2: लेकिन 2014 में कितने मोबाइल भारत में बनते थे? आज 33 करोड़ मोबाइल केवल बन नहीं रहे हैं भारत से, वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं।
1: उसे मोबाइल ही नहीं, सेमीकंडक्टर
2: तक
1: यूनिट सब लग रही हैं।
2: तो इसके लिए सोच क्या है
1: जी?
2: आप देखिए, रक्षा उपकरण
1: जी,
2: जो पहले हम केवल इंपोर्ट करते थे
1: जी,
2: आज भारत 23,000 करोड़ रुपए का जो रक्षा उपकरण है
1: जी,
2: वो दुनिया के अनेक देशों को बेच रहा है। तो आप मुझे बताइए, जब हम मोबाइल बना रहे हैं, जब हम रक्षा के उपकरण बना रहे हैं, तो रोजगार तो किसी ना किसी स्तर से मिल रहा है।
1: बिल्कुल,
2: इसके लिए सरकार ने बहुत सारे जहां पर रोजगार जनरेट हो ऐसे पीएलआई एक योजना लाई थी
1: जी।
2: उस पीएलआई योजना में 2,00,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया था
1: जी,
2: और उससे मुझे लगता है कि लगभग 14,00,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला।
1: मतलब श्रोताओं को बता दें कि प्रोडक्शन लिंक्ड
2: इन्वेस्टमेंट,
1: उत्पादन आधारित
2: जी, जो ये मेक इन इंडिया है
1: जी,
2: और ये आत्मनिर्भर भारत की जो सारी चीजें हैं, हमने अपने वैक्सीन्स बनाए
1: जी,
2: तो ये भारत के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का एक जो बहुत बड़ा प्रकल्प शुरू हुआ
1: जी,
2: मुझे लगता है कि ये भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन लाने की दिशा में काम करता है, इससे रोजगार भी मिलता है। 12 साल कोई बहुत ज्यादा समय नहीं होता किसी भी देश के लिए
1: जी,
2: लेकिन 12 साल में जिस नैतिकता से, जिस ईमानदारी से जो काम हुए हैं
1: जी,
2: लेकिन अच्छा करने का जो मन से जो प्रयास हुआ है
1: जी,
2: उसका परिणाम दिखने लगा है
1: जी। एक बात और कि प्रधानमंत्री जी ने जब ये 12 वर्ष सरकार को पूरे हुए तो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा कि सरकार ने राष्ट्र प्रथम की भावना से काम किया है, और इन्हीं अथक जो प्रयास है उनका परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक आज देश को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली है, और विकसित भारत के संकल्प के साथ ये सरकार आगे बढ़ रही है। शशांक जी, विदेश नीति के मोर्चे की यदि हम बात करें तो भारत की जो वैश्विक पहचान है वो इन 12 वर्षों में मजबूत हुई है, आपका क्या विचार है?
2: बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपने जो पहला प्रश्न पूछा उसमें मैं संक्षेप में आपको बता दूं
1: जी
2: कि जो राष्ट्र प्रथम की अवधारणा है
1: जी,
2: वो राष्ट्र प्रथम कैसे? तो संयोग से हमने अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे किए
1: जी।
2: इससे हम जो एक उपनिवेशवादी मानसिकता है जी। उसको छोड़कर स्वदेश की मानसिकता, अपने देश के प्रति प्रेम करें, अपने देश के उत्पादों से प्रेम करें, ये भी भावना कहीं ना कहीं आपको पिछले 10-12 वर्षों में ज्यादा प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देती है
1: जी।
2: तो आपका देश जब अपने ऊपर निर्भर होगा तो दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है
1: जी,
2: और उस लोकतंत्र में जब एक सर्वप्रिय
1: जी
2: और बहुमत से बनी हुई सरकार का मुखिया
1: जी
2: और सरकार जब बनती है तो पूरी दुनिया आपकी तरफ सम्मान से देखती है।
1: बिल्कुल।
2: तो ये विदेश नीति में आपको झलकता है
1: जी।
2: प्रधानमंत्री जी आज किसी भी देश में जाते हैं तो ये भारत जैसे एक बड़े लोकतंत्र, एक सफल लोकतंत्र का बहुमत से निर्वाचित एक प्रधानमंत्री के रूप में एक सम्मान अपने आप बढ़ता है
1: जी।
2: तो भारत के अपने जो ताकत बनेगी
1: जी,
2: चाहे वो सामरिक हो, आर्थिक हो, अधोसंरचना हो, जब ये ताकत बढ़ेगी तो दुनिया उसको रिकॉग्नाइज करती है। G20 का सफल आयोजन होना हो
1: जी,
2: चाहे G7 हो
1: जी,
2: मुझे लगता है कि भारत ओवरऑल, और वो सब इसलिए हुआ है क्योंकि भारत की जनता ने एक बहुमत के साथ एक मजबूत सरकार बनाई है
1: जी। शशांक जी, वैसे तो इस 12 वर्षों की जो उपलब्धि भरी यात्रा है उसको 15 मिनट में समेटना जो है वो सागर को गागर में भरने के समान है, लेकिन आपने कमाल भी कर दिखाया और श्रोताओं को बहुत समग्रता के साथ में सारगर्भित रूप में आपने इन 12 वर्षों के सफर को समेटा है। हम आकाशवाणी समाचार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं
2: जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
0: बातों बातों में इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार श्री शशांक शर्मा से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करते थे विकल्प रंजन शुक्ला। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए अनु मलिक की बनाई तर्ज पर हसरत जयपुरी का लिखा गीत, आवाजें शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है राधा का संगम।

राधा का संगम इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। स्वर दिया था शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर ने, शब्द रचना हसरत जयपुरी की थी और धुन बनाई थी अन्नू मलिक ने।

श्रोताओं, चित्रपट संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वीव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। लीजिए सुनिए एक सूचना। श्रोताओं, आगामी मंगलवार 16 जून 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय होगा मानसून के पूर्व में पशुओं में होने वाली बीमारियों की पहचान, बचाव और उपचार तथा टीकाकरण का महत्व। विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर के एल राम, अतिरिक्त उप संचालक शासकीय पशु चिकित्सालय मांढर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 4003483402, 4003483403, और 4003484, 4003484, रायपुर का स्टडी कोड है 07710771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 16 जून 2026 को सुबह 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही शाम 7:30 बजे किया जाएगा। हमें आपकी फोन कॉल का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

0: नदीम श्रवण की बनाई तर्ज पर ये था समीर का लिखा गीत। फिल्म साजन के लिए स्वर दिया था अलका याज्ञिक और एसपी बाल सुब्रमण्यम ने। श्रोताओं, चित्रपट संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वीव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
2: चलो,
1: कहाँ
2: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

कुमार सानू और अलका याज्ञिक को अभी आपने सुना फिल्म बलमा में। शब्द रचना समीर की थी और धुन बनाई थी नदीम शवण ने। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं सफरी मरकाम और साथी। पहले सुनिए रतिदास मानिकपुरी और सफरी मरकाम के स्वर में ये गीत।

0: लोक संगीत, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वीव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं सफरी मरकाम और साथी।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: लोक संगीत, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वीव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। आज के कलाकार हैं सफरी मरकाम और साथी। आइए अब सुनते हैं ये गीत।

लोक संगीत इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सफरी मरकाम और साथियों के स्वर में छत्तीसगढ़ी गीत। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, स्पोर्ट्स स्क्रीन कार्यक्रम रात 8:30 पर और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10:00। इसमें आज आप सुनेंगे यूएस प्रसाद का कर्नाटक सैक्सोफोन वादन। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। नई फिल्मों से ये कार्यक्रम सुनेंगे

0: सुबह 10 बजे सदाबहार नगमे सुबह 11:05 पर और सुबह 11:40 पर उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा विदुषी बागेश्वरी देवी का गाया राग भैरवी में दात्रा। शाम 5:10 पर युवाणी युवासाथी आज सुनेंगे अपन गुट एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस पर चर्चा, आप मन की चिट्ठी और माटी के गीत। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 9:55 हुए हैं, लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने बुनकरों और कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक डिजाइन, प्रशिक्षण और नए उत्पाद विकास पर जोर दिया। और शिक्षा विभाग में 16 जून से ऑनलाइन उपस्थिति और अवकाश व्यवस्था अनिवार्य होगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने रायपुर में रेशम, खादी, ग्रामोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र की समीक्षा की। उन्होंने बुनकरों और कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक डिजाइन, प्रशिक्षण और नए उत्पाद विकास पर जोर दिया। स्थानीय उत्पादों को निर्यात एजेंसियों से जोड़कर वैश्विक बाजार तक पहुंच दिलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से आधुनिक डिजाइन तैयार करने की बात कही गई। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण और कुटीर उद्योग क्षेत्र के उद्यमियों की वार्षिक आय 5,00,000 रुपए तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। एक अन्य कार्यक्रम में श्री सिंह ने विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में विकास के कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उन्होंने गरीब कल्याण, डिजिटल सेवाओं और आत्मनिर्भर भारत अभियान की उपलब्धियों का उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। सम्मेलन को रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने भी संबोधित किया। केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री सिंह अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दूसरे दिन आज रायपुर में आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा वे ऑक्सीजोन गार्डन में पौधरोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में 16 जून से ऑनलाइन उपस्थिति और अवकाश व्यवस्था अनिवार्य होगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को डिजिटल माध्यम से हाजिरी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों में VSK ऐप और कार्यालयों में बायोमेट्रिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज होगी। ऑनलाइन हाजिरी नहीं मिलने पर जून माह का वेतन रोका जा सकता है। वहीं अब ऑफलाइन छुट्टी आवेदन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में नए शिक्षा सत्र से राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राज्यगीत सहित विभिन्न गतिविधियां अनिवार्य रूप से कराई जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। सुबह की प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और अन्य गतिविधियां होंगी, जबकि मध्यान्ह भोजन के समय भोजन मंत्र और छुट्टी के समय राज्यगीत का सामूहिक वाचन कराया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारियों को इसकी रोजाना निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी रायपुर के नवा रायपुर स्थित सेंध लेक में 36वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर पुरुष और महिला तथा सब जूनियर बालक बालिका चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का आयोजन भारतीय कायाकिंग कैनोइंग और छत्तीसगढ़ कायाकिंग एंड कैनोइंग के संयुक्त तत्वावधान में 14 जून तक किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव विक्रम सिंह सिसोदिया ने गुब्बारा छोड़कर प्रतियोगिता का आगाज किया। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के 24 राज्यों से करीब 800 खिलाड़ी और अधिकारी शामिल हो रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने बुनकरों और कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक डिजाइन, प्रशिक्षण और नए उत्पाद विकास पर जोर दिया और शिक्षा विभाग में 16 जून से ऑनलाइन उपस्थिति और अवकाश व्यवस्था अनिवार्य होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
0: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नई फिल्मों से।

सनम रे, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। स्वर दिया था मिथुन अनिरुद्ध भोला और अरिजीत सिंह ने। गीत और संगीत मिथुन का था।

आइए अब सुनते हैं राजेश रोशन की बनाई तर्ज पर समीर अंजान का लिखा गीत। आवाजें अलीशा चिनाए और जुबिन गर्ग की, फिल्म का नाम है क्रिश 3।

राजेश रोशन की बनाई तर्ज पर ये था समीर अंजान का लिखा गीत। फिल्म क्रिश 3 के लिए स्वर दिया था अलीशा चिनाय और जुबिन गर्ग ने। श्रोताओं, नई फिल्मों से ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वीब और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। लीजिए सुनिए एक सूचना। श्रोताओं, आगामी मंगलवार 16 जून 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय होगा मानसून के पूर्व पशुओं में होने वाली बीमारियों की पहचान, बचाव और उपचार तथा टीकाकरण का महत्व। इस विषय पर आपकी समस्याओं जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हमारे स्टूडियो उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर के एल राम, अतिरिक्त उप संचालक शासकीय पशु चिकित्सालय मांढर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 4003482400-3482, 4003483-4003483 और 4003484-4003484। रायपुर का एसटीडी कोड है 07710771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 16 जून 2026 को सुबह 11:30 से 12:00 तक की जाएगी।

कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही शाम 7:30 बजे किया जाएगा। हमें आपकी फोन कॉल का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

आइए अब सुनते हैं यासीर देसाई और जीत गांगुली को, बोल रश्मि विराग के, संगीत जीत गांगुली का, और फिल्म का नाम है परमाणु द स्टोरी ऑफ पोकरण।

परमाणु द स्टोरी ऑफ पोकरण। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, स्वर दिया था यासिर देसाई और जीत गांगुली ने। शब्द रचना रश्मि विराग की थी और धुन बनाई थी जीत गांगुली ने।

102 नॉट आउट इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, स्वर दिया था हीरल ब्रह्मभट्ट ने और संगीत सौम्या जोशी का था। आइए अब सुनते हैं मोहित चौहान और प्रियंका नेगी को, बोल सुजाता देवरारी और विकास चौहान के, संगीत संजय बोस का, और फिल्म का नाम है 72 आवर।

72 आवर इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। स्वर दिया था मोहित चौहान और प्रियंका नेगी ने, शब्दरचना सुजाता देवरारी और विकास चौहान की थी और धुन बनाई थी संजय बोस ने। इस गीत के साथ ही नई

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के ठीक 10:30 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों को फिल्म हिम्मत वाला में बोल इंदिवर के संगीत बप्पी लाहिरी का

0: बप्पी लाहिरी के संगीत निर्देशन में ये था इंदेवर का लिखा गीत। फिल्म हिम्मत वाला के लिए स्वर दिया था किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों ने। श्रोताओं, चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वीब और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
2: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
3: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
4: बड़ी दूर से आए प्यार का तोहफा लाए।
2: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
5: गीत मेरे होठों को भीग गया कोई।
2: कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
6: मुझे कुछ कहना है,
7: मुझे भी कुछ कहना है।
2: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
8: सुनिए।

आग और शोला। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, स्वर दिया था मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर ने, शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आइए अब सुनते हैं महेश किशोर के संगीत निर्देशन में सावन कुमार का लिखा गीत। फिल्म सनम बेवफा के लिए स्वर दिया है लता मंगेशकर और विपिन सचदेव ने।

महेश किशोर के संगीत निर्देशन में ये था सावन कुमार का लिखा गीत। फिल्म सनम बेवफा के लिए स्वर दिया था लता मंगेशकर, विपिन सचदेव और साथियों ने। श्रोताओं, चित्रपट संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।

आइए अब सुनते हैं शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म बेताब में बोल आनंद बख्शी के संगीत आर डी बर्मन का।

शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर को भी आपने सुना फिल्म बेताब में। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और धुन बनाई थी आर डी बर्मन ने।

आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और साथियों को फिल्म याराना में, बोल अनजान के संगीत राजेश रोशन का।

0: किशोर कुमार और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म याराना में। शब्द रचना अनजान की थी और धुन बनाई थी राजेश रोशन ने। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इसका उद्देश्य इन दोनों यूरोपीय देशों के साथ भारत की साझेदारी को और प्रगाढ़ करना है। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री कल फ्रांस के नीस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। श्री मोदी दक्षिण फ्रांस में भारतीय समुदाय से भी भेंट करेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी स्लोवाकिया जाएंगे। वे स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ आपसी सहयोग पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 16 और 17 जून को फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका ने पैराग्वे को 4-1 से हरा दिया। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को 21-6, 21-9 से मात दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमें।

कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले को बोल आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और फिल्म का नाम है जुदाई।

किशोर कुमार और आशा भोसले को भी आपने सुना फिल्म जुदाई में। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आइए अब सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर को फिल्म सन्यासी में, बोल विश्वेश्वर शर्मा के, संगीत शंकर जयकिशन का।

मुकेश और लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म सन्यासी में। शब्द रचना विश्वेश्वर शर्मा की थी और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। श्रोताओं, सदाबहार नगमे एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वीव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।

अगर तुम न होते। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, स्वर दिया था किशोर कुमार ने, शब्द रचना गुलशन बावरा की थी और धुन बनाई थी आर डी बर्मन ने।

0: मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और आनंद बख्शी को भी आपने सुना फिल्म चरस में। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
2: बिंदिया, शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए। प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया। मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया। डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।

मुकेश और कंचन को अभी आपने सुना फिल्म धर्मात्मा में। शब्द रचना इंदिवर की थी और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। श्रोताओं, सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म प्रेम बंधन में, बोल आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म प्रेम बंधन में। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए विदुषी बागेश्वरी देवी का गाया राग भैरवी में दादरा। बोल हैं चला रे नैना मिलाए परदेशिया। संगतकार हैं तबले पर सतीश शंकर पंडा, हारमोनियम पर सतीश इंदुरकर और वायलिन पर हिमांशु विश्वरूप।

0: उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विदुषी बागेश्वरी देवी का गाया राग भैरवी में दादरा। संगतकार थे तबले पर सतीश शंकर पंडा, हारमोनियम पर सतीश इंदुरकर और वायलिन पर हिमांशु विश्वरूप। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 11:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने बुनकरों और कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक डिजाइन प्रशिक्षण और नए उत्पाद विकास पर जोर दिया। शिक्षा विभाग में 16 जून से ऑनलाइन उपस्थिति और अवकाश व्यवस्था अनिवार्य होगी। और मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में हल्की वर्षा होने की संभावना जताई, वहीं कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने रायपुर में रेशम, खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र की समीक्षा की। उन्होंने बुनकरों और कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक डिजाइन प्रशिक्षण और नए उत्पाद विकास पर जोर दिया। स्थानीय उत्पादों को निर्यात एजेंसियों से जोड़कर वैश्विक बाजार तक पहुंच दिलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से आधुनिक डिजाइन तैयार करने की बात कही गई। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण और कुटीर उद्योग क्षेत्र के उद्यमियों की वार्षिक आय 5 लाख रुपए तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। एक अन्य कार्यक्रम में श्री सिंह ने विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में विकास के कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उन्होंने गरीब कल्याण, डिजिटल सेवाओं और आत्मनिर्भर भारत अभियान की उपलब्धियों का उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। सम्मेलन को रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने भी संबोधित किया। केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री सिंह अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दूसरे दिन आज रायपुर में आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा वे ऑक्सीजन गार्डन में पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में 16 जून से ऑनलाइन उपस्थिति और अवकाश व्यवस्था अनिवार्य होगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को डिजिटल माध्यम से हाजिरी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों में वीएसके ऐप और कार्यालयों में बायोमेट्रिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज होगी। ऑनलाइन हाजिरी नहीं मिलने पर जून माह का वेतन रोका जा सकता है। वहीं अब ऑफलाइन छुट्टी आवेदन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 16 जून से शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। प्रवेश उत्सव के दौरान स्कूल पहुंचने वाले नव प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। इस मौके पर विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण किया जाएगा। वहीं बोर्ड और स्थानीय परीक्षाओं में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में नए शिक्षा सत्र से राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राज्यगीत सहित विभिन्न गतिविधियां अनिवार्य रूप से कराई जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। सुबह की प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और अन्य गतिविधियां होंगी, जबकि मध्यान्ह भोजन के समय भोजन मंत्र और छुट्टी के समय राज्यगीत का सामूहिक वाचन कराया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारियों को इसकी रोजाना निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में मॉनसून छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगा। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के तापमान में लगभग 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के भीतर प्रदेश के अधिकांश जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं तेज हवा चलने के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में बाल श्रम उन्मूलन को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। महिला और बाल विकास विभाग, श्रम विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त प्रयास से लोगों को बच्चों के अधिकारों और शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने बुनकरों और कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक डिजाइन, प्रशिक्षण और नए उत्पाद विकास पर जोर दिया। शिक्षा विभाग में 16 जून से ऑनलाइन उपस्थिति और अवकाश व्यवस्था अनिवार्य होगी और मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में हल्की वर्षा होने की संभावना जताई, वहीं कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। अब सुनते हैं आकाशवाणी संग्रहालय से क्रम के अंतर्गत कार्यक्रम गाथा झरोके से। इसमें आज आप सुनेंगे फूल कुंवर की लोक गाथा का तीसरा भाग।

प्रस्तुत है सॉफ्टवेयर रूपक श्रृंखला गाथा झरोखे से। लीजिए सुनिए रूपक फूल कुंवर की लोक गाथा। लेखक हैं श्री जीवन यदु और रूपक के प्रस्तुतकर्ता हैं मोहन सी रामानी।

0: छत्तीसगढ़ का लोक साहित्य वीरों और वीरांगनाओं की शौर्य गाथाओं से भरा हुआ है। मध्य युग के काल पृष्ठों पर युद्धों के इतिहास की स्याही फैली हुई है, जहां रक्त की लाली ही मसी है। रक्त से आकार ग्रहण करते से प्रतीत होते हैं वहां यश शब्द, वहां रेखाएं लेखनी से नहीं तलवार से खींची जाती रही हैं।
1: फूल कुंवर की गाथा एक ऐसी वीरांगना की है जिसका नाम इतिहास के पृष्ठों पर अंकित होने से रह गया, किंतु लोक के होठों पर आज भी अंकित है। इतिहास चूक गया एक ऐसे नाम को अपने सीने में समेटने से, जिससे उसका सीना गर्व से और चौड़ा हो सकता था। दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई जैसी वीरांगनाओं के नाम के साथ फूल कुंवर का नाम भी दमकता होता इतिहास के माथे पर। विस्मृति का भंवर इस नाम को अतल की गहराइयों में डुबा नहीं सका आज तक।
0: राजा जगत सिंह की पुत्री थी फूल कुंवर, वो लाडली बेटी थी राजा जगत सिंह की। पुत्रहीन राजा की एकमात्र पुत्री थी वो, प्रजा को भी प्रिय थी फूल कुंवर। जैसा नाम वैसी ही फूल सी सुंदर, किंतु उसने फूल की तरह मुरझाना नहीं सीखा था। वो फूल की तरह सुगंध तो फैला सकती थी, किंतु किसी भी स्थिति में कांटों का आघात सहने को तैयार न थी।
1: जगत सिंह था दिल्ली का राजा। दिल्ली का राजा होना गर्व की बात हर युग में रही है, किंतु दिल्ली वह तो रणस्थली भी रही है सदा से, सदा शत्रुओं से घिरी हुई, हमेशा रणवीरों के अश्वों की टापों को सुनती हुई, तेग तलवारों के टकराने और तोप के गोलों के फूटने की भयानक आवाजों के बीच खड़ी हुई।
0: तब ऐसा कोई राजा नहीं था जिसकी आंख दिल्ली के राज सिंहासन पर न लगी हो। दिल्ली के सेनापति अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए सदैव तत्पर। यदि राजाज्ञा हो तो पलक झपकते अश्वों पर सवार हो सकने वाली सेना थी दिल्ली के पास। लेकिन किंतु मगर राजाज्ञा दे तो कैसे, कौन? प्रश्न कठिन था दिल्ली के लिए। राजा जगत सिंह वृद्ध और निर्बल, राजा जगत सिंह पुत्रहीन और पुत्रहीनता की चिंताओं में उलझा हुआ, राजा पुत्रहीन और दिल्ली युवराज विहीन।
1: प्राचीन काल की परंपरा के अनुसार दरबारी भाटचारण दरबार में वीर रस से ओतप्रोत कविताएं सुनाया करते थे, ताकि वृद्ध और चिंताग्रस्त राजा जगत सिंह की शिथिल नसों में वीरता का संचरण हो सके।

0: सच्चे क्या कहते मुरली बंदा?
1: चारण कवियों की अतिशोक्तिपूर्ण कविताओं को सुनकर वृद्ध जगत सिंह को अपनी युवावस्था का स्मरण हुआ था। प्रसन्न मन से चारण कवियों को स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में देते, किंतु जगत सिंह इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं थे कि ये सब अतीत की बातें हैं। वे अपने वर्तमान से उदासी नहीं, रुष्ट भी थे। राजतंत्र में राजा का पुत्रहीन होना राज सिंहासन के लिए अशुभ संकेत ही था।
2: राज दरबार में कभी कभी आ बैठती थी राजा जगत सिंह की लाडली राजपुत्री फूलकुंवर। दरबारीगण उसके सुंदरता की प्रशंसा करते तो थे, किंतु राजपुत्री का राजपुत्री होना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। काश ये फूलकुंवर फूलकुमार होती, काश ये युवराज के आसन पर आसीन होती, मूंछों पर ताव देती हुई। राजकन्या फूलकुंवर पिता की उदासी का कारण जानती थी, किंतु वो कर भी क्या सकती थी। उनके पिता अपने चौथेपन में एक पुत्र के लिए तरस रहे थे।
1: फूलकुंवर के मन में बार बार ये प्रश्न उठते, क्या पुत्र होना पुत्री होने से अधिक महत्वपूर्ण बात है? क्या पुत्री का कोई महत्व नहीं? क्या पुत्री अपने माता पिता का रक्षण एवं पोषण नहीं कर सकती? आखिर उनके पिता दुखी और उदास क्यों होते हैं?
2: दिल्ली के अधिपति जगत सिंह के सामने आठों पहर खड़ा रहता था एक ही प्रश्न, कौन होगा उनके पश्चात दिल्ली की गद्दी का वारिस? कौन करेगा रक्षा उनकी दिल्ली की? राजकन्या फूलकुंवर? नहीं नहीं, वो तो फूलों की तरह कोमलांगी है। वो क्या जाने तलवारों की भाषा, वो क्या समझे राजनीति की उठापटक। वो आज है कल नहीं होगी इस राजमहल में, किसी राजा की पटरानी बनकर चली जाएगी कल। कल कल क्या होगा, राजा को कल की चिंता खाए जा रही थी।
1: पिता को चिंताग्रस्त देखकर फूलकुंवर को दुख होता, प्रश्नाकुल हो जाता उसका मन। वो क्यों तुल रही है पुत्र और पुत्री की तुला पर? वो सोचती, इस दुनिया में कितने ही पुत्रवान ऐसे हैं जिनके पुत्र कायर और निकम्मे निकले। अब वे अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। ऐसे पुत्रवान होने से लाभ क्या? ऐसे कितने ही पुत्रीवानों के नाम को उनकी पुत्रियों ने अमर कर दिया है। मनुष्य के मन की एक कैसी विडंबना है कि पिता का मन फिर भी पुत्रवान बनने कामना करता रहता।

0: एक दिन राजकन्या फूलकुंवर ने निश्चय किया कि वो अंदर ऐसे गुणों का विकास करेगी जो किसी राजपुत्र में ही संभव है। वो दुनिया को दिखा देगी कि वो किसी राजपुत्र से कम नहीं।
1: और उसी दिन से उसने बंद कर दिए गुड़ियों के खेल। वो जाने लगी आयुधशाला, सीखने लगी आयुधों का चालन, रण कौशल सीखने लगी। अथक अभ्यास ने उसे निपुण कर दिया शस्त्र विधा में। रण व्यूह की बारीकियां समझने लगी। उसने धारण करना प्रारंभ कर दिया शूर वीरों का ओजस्वी परिधान। हां, आयुधशाला के सभी कर्मचारी उसकी आज्ञा के अधीन थे, उसके राजदार थे। महाराज और महारानी को उसके इस नए रूप की खबर ही नहीं हुई। वीर वेश में राजकन्या फूलकुमारी एक खूबसूरत राजकुमार ही लगती थी।
0: कि एक दिन एक ऐसी घटना घट गई जो संभावित थी। पटना के पठान राजा की आंख दिल्ली पर न जाने कब से गड़ी थी। वो आ धमका था दिल्ली की सरहद पर। पटना के पठान का दूत उसका पत्र लेकर दिल्ली दरबार में आ गया।

0: दिल्ली के अधिपति, वीरों के वीर महाराजा जगत सिंह दरबार में पधार रहे हैं।
1: आप सभी आसन ग्रहण करें। हाँ महामंत्री महोदय, आज मुझे अचानक क्यों बुलाया गया है? आप सभी जानते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
2: क्षमा करें महाराज, संकट की घड़ी आ गई है। पटना के पठान राजा का पत्र लेकर उसका दूत आया है।
1: क्या चाहता है पटनाधीश? पत्र दिखाओ।
2: महाराज, वो हमारी दिल्ली चाहता है। उसका पत्र युद्ध की धमकियों से भरा हुआ है। उसे क्या उत्तर दें महाराज?

0: रौना भाटा में मचे है लड़ाई वाला, तो ते जाना था कहा थे रागी
1: कहा थेगा
0: तहु चुप्पे चाप राजला दे दे नहीं ते देवे तो ऐसे लड़ाई करियो कहा थे रौना भाटा में बलावा थे रागी।
1: वाह बाबा सिंह।

0: बाबाजी।
1: ऐसे मूल न धर के सोचा लागा थे राजा
0: हाँ।
1: ना मोर कोरा में बेटा नहीं है कहा थे
0: अरे।
1: रोवा थे अपन भागला हाँ। के मोर कोरा में बेटा नहीं है
0: ये
1: एक छन बेटी है तेकर का विश्वास करी हो कहा थे
0: अरे।
1: मने मन में गुना लागा थे रागी।

0: पटना के पठान राजा के पत्र का उत्तर क्या दिया जाए। महाराज जगत सिंह चिल्लाना चाहते थे, युद्ध युद्ध युद्ध, किंतु उनके मुख से आवाज नहीं निकल रही थी।
1: उधर वृद्ध राजा जगत सिंह युद्ध से घबराए हुए बैठे थे दरबार में, और इधर रनिवास राजा के लौटने से चिंतित हो रहा था।
0: जब जगत सिंह दरबार से लौटे तो बहुत विलंब हो चुका था। चेहरे पर उदासी और दुश्चिंताओं के जाले आच्छादित हो चुके थे। राजा ने भोजन करने से इनकार कर दिया। फूल कुंवर ने अपने पिता से विलंब से लौटने और उदासी का कारण पूछा। राजा जगत ने फूल कुंवर से सारी बात कह दी। ये निश्चित ही चिंता में डालने वाली बात थी।
2: जब जगत सिंह दरबार से लौटे है तो बहुत देरी होगी कि सोचा थे मने मान के देख के पूछा थे रागे।
3: कैसे पूछा थे गा?
2: कहा लागे अब बेटी फूल कुंवर, मोर पेट हा गजब पिरा थे बेटी।
3: अरे
2: हाँ, मोर तो मूड में बेटी के दर्द में कैसे देखा,
3: कैसे देखा
2: देख तोर पिरा थे दादा, सोट खवा दो। का कहा थे बेटी हा? मूड तोर पिरा थे तो सोठ अला खवा दो, लगा दो कहा थे,
3: लगा दो कहा थे।
2: दुख पिरला हर लेते मौला बता ना दादा, ऐसे की के गोहरामा लागा थे।

0: अब राजा के लिखे पाती ला देख के बेटी फूल कुंवर ला दिखा थी
1: दिखा थी गा
0: औ असमंजस के अपन बात ला कैसे बताऊं बेटी
1: अरे
0: एकरे सती मने मन में गुनत रहे हो बेटी के जात कैसे लड़ाई में भेजो की कहत रहे
1: कहत रही सी गा

0: पिता जगत सिंह ने पुत्री को रणक्षेत्र में जाने से मना कर दिया। माता आंसू बहाने लगी, लेकिन युवा पुत्री के संकल्प के आगे वे कर भी क्या सकते थे। उसने तो राज्य और राज सिंहासन की रक्षा के संकल्प को अपनी आत्मा और प्राणों से पहले ही बांध लिया था। उसने सोचा, यह संकट की घड़ी नहीं है, अपितु संकल्पों की परीक्षा का दैव प्रदत्त अवसर है। इस अवसर को वो कैसे जाने दे अपने हाथ से। ऐसे ही अवसर की बाट तो वीर और वीरांगनाएं जोहती हैं।
1: फूलकुंवर ने अपनी माता से पुरुषोचित कपड़े मांगे। जब पूरी साज सज्जा हो गई, तब फूलकुंवर इंद्र के घोड़े में सवार हो गई। वीरांगना फूलकुंवर का वीर वेश देखते ही बनता था। कमर से बंधे मयान में 5 फुट की चमचमाती तलवार, दाएं हाथ में लौह बल्लम और बाएं हाथ ढाल, वक्ष पर कठिन कठोर चमचमाता कवच, सिर पर शिरस्त्राण, माथे पर कुमकुम अक्षत, आंखों में रणाकुलता की लाली, उसे जो भी देखता उसे महिष मर्दिनी दुर्गा का ही रूप दिखाई देता।
0: दिल्ली की निराश प्रजा के मन में आशा का संचार हो गया। अब खैर नहीं पटना के पठान राजा की, साक्षात दुर्गा ही निकल पड़ी है रणांगण में। अब कौन बचाएगा उस पटनाधीश मुगल को।

0: लड़ाई से कई के हे घंटा में लड़ाई के मैदान में पहुंच गएगा फूल कुंवर बेटी हा माल गुजार हा देख के फूल कुंवर ला ओला देख के बुगुल मुखे मुख मा ठार सुखा गए।
1: अरे
0: बेटी ला भेजे है वे दादा हा तो औ घरे बैठे है अपन तिरिया सही एड़ी के रिसा तरुआ में चढ़ गयो खा
1: चढ़ गएगा
0: ऐसे डरपोक ना बाप के बेटियत कहा थे रागी।
1: अरे

0: तरी नारी ना नर भैया मर नारा रे ना नाये गो अवतर नारी ना नर भैया मोर ना नारी ना नाये हो रागी भैया ऐसे माता पिता के रक्षण में दीवला होम देवैया बेटी के कथा ये फूल कुंवर वीरांगना के कथा ये संगी
1: काका जी बसी सच्चे राम नगरी है राम के मुझसे गंगा तिलक राज महाराजा के चौके हनुमत वीर का हाथेगा

0: युद्ध के मैदान में पैदल से पैदल, हाथी से हाथी और घुड़सवारों से घुड़सवार भिड़ गए। फूल कुंवर ने पहले मुगलों की 3,000 सेना को काट कर पीछा दिया। जब वो मुगल राजा के पास पहुंची तो मुगल राजा के प्राण सूख गए।
1: उसे घेर कर खड़ी हो गई 5,000 मुगल सेना। रणचंडिका के समक्ष सूखे पत्तों की तरह उड़ गई वो सेना। वीरांगना फूल कुंवर ने मुगल राजा को पकड़ लिया
0: और चेतावनी देकर छोड़ दिया। मुगल राजा पीठ दिखाकर भाग निकला वापस पटना की ओर।

0: की रक्षा की एक वीरांगना ने, एक बेटी ने। सुप्रसिद्ध लेखक दयाशंकर शुक्ल ने लिखा है, कथा का उद्देश्य नारियों में कर्तव्य भावना का उद्रेक करना है। कथा में इतिहास और कल्पना का समन्वय मिलता है।
1: उद्देश्य परकता ही इस गाथा गीत की आत्मा है। ये गाथा गीत अन्य गाथा गीतों से इस मायने में अलग है कि ये कहानी छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय होकर भी इसकी कथा सीमा छत्तीसगढ़ को नहीं घेरती, अपितु दिल्ली और पटना के क्षेत्र को रूपायित करती है। इसकी सीमा में छत्तीसगढ़ भले ही ना हो, किंतु छत्तीसगढ़ की आत्मा अवश्य है।
0: ये गाथा आज के युग में भी प्रासंगिक है। आज भी पुत्रियों के पिता पुत्र कामना से ग्रस्त हैं। वे ये नहीं सोच पाते कि उनकी पुत्री भी फूल कुंवर सी माता पिता को रक्षण और पोषण दे सकती है।
1: वीरांगना फूल कुंवर की गाथा एक उदाहरण है समाज के सामने कि पुत्री होना भी पुत्र होने से कम महत्व की बात नहीं है। जो भी इस गाथा पर चिंतन करेगा उसकी आत्मा में ये आवाज अवश्य गूंजेगी, बेटी हो तो ऐसी,

गाथा झरोखे से सॉफ्टवेयर रूपक श्रृंखला में अभी आप सुन रहे थे रूपक कूल कुंवर की लोक गाथा। लेखक श्री जीवन यदु, वाचक स्वर योगेश नैयर और प्रीति राज वैद्य के, नाट्य स्वर गौसुल रशीद, शीतल शर्मा और प्रदीप चक्रवर्ती के, गायक स्वर कुलेश्वर ताम्रकार, राम स्वरूप यदु और साथियों के। शीर्षक गीत के गायक थे सुनील सोनी और अंजलि शुक्ला। वाद्य पक्ष के कलाकार थे मोहम्मद सिराज, मोहम्मद आरिफ, महेंद्र चौहान, शिव कुमार गोण, विवेक टांक और सत्यरंजन गंगेले। रूपक के प्रस्तुतकर्ता थे मोहन सी राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाथा झरोखे से के तहत फूल कुंवर की लोक गाथा का तीसरा भाग। ये कार्यक्रम हमें प्राप्त हुआ आकाशवाणी संग्रहालय से। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 12:28 हुए हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आगामी मंगलवार 16 जून 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय होगा मानसून के पूर्व पशुओं में होने वाली बीमारियों की पहचान, बचाव और उपचार तथा टीकाकरण का महत्व। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर के एल राम, अतिरिक्त उपसंचालक शासकीय पशु चिकित्सालय मांढर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 16 जून 2026 को 11:30 से 12:00 तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही शाम 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

संगीत है प्रीतम का और फिल्म का नाम है रेडी। इस गीत को सुनवाने का अनुरोध हमें भेजा है बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, माही माखीजा, पूजा छुटकी, शरद कुमार, कीरत राय, दीपक सुंदर, उन्नति और प्रदीप कुमार साहू ने। मित्रनगर बीड शहर महाराष्ट्र से विकास बंसोड़, रेखा, अदिति बंसोड़ और वैभव शिंदे। खंडाला से आकाश और प्रिया सरोदे। कांकेर संबलपुर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। पलारी छत्तीसगढ़ से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और पूजा वर्मा। वंदरानगर इंदौर से गणेश खर्चे, कार्तिक परी खर्चे और स्वाति प्रयाग चौधरी। बागबहारा भद्रसी से पन्नालाल सेन, खुशबू तारा और कौशल सेन। महामाया चौक मेघापारा से रामकुशल पटेल, संतोषी, दीपांशु, दिव्या, दीपांजलि, दीपक और टेकलाल पटेल। गर्रापार बांधा बाजार से मानवेंद्र साहू, सुलोचना साहू और राकेश साहू। भाटापारा से बचकमल, मोती यादव, डॉक्टर बसंत भृगु और विनय ठाकुर। डोंगरिया मलाजखंड से इसी गीत को सुनना चाहते हैं मुन्नालाल पटले, माधुरी, दीपांशु और याचना पटले। तखतपुर से मिश्रीलाल, विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल और मानस। तो सुनते हैं इन सभी के अनुरोध पर रेडी फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं सनावद जिला खरगोन से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा और राजकुमार बोडान। सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप। पद्मा टॉकीज नेपा नगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विनी, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह। पाटापारा से हिमकेश्वर साहू, करण, राहुल और चंपा साहू। गंडई पंडरिया से शिव यादव, राज, चिंटू, तरुण, चोवाराम, कन्हैया और निर्मला यादव। देहान बांधा बाजार राजनांदगांव से हरिओम साहू, रेवाराम साहू, रानू सरस्वती, प्यारी राम और परमानंद साहू। पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा। रसेरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार और टिकेश साहू। पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी, नोमेश, नेहा और वान्या सिंगरौल। कटोरा तालाब रायपुर से मोहनलाल देवांगन, प्रभा देवांगन, त्रिभुवन अग्रवाल और गंगाराम देवांगन। लालपुर रायपुर से कीर्ति साहू और लक्ष्मी साहू। शारदा विहार अमलेडी रायपुर से भूपेश कुमार देवांगन और तुषार देवांगन। ये सभी सुनना चाहते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में फिल्म एक रिश्ता का ये गीत। बोल लिखे हैं समीर ने और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

सोनू निगम और अलका याग्निक के स्वर में आइए अब सुनते हैं आन फिल्म का गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार है अनु मलिक। इस गीत को सुनवाने का अनुरोध हमें भेजा है भाटापारा से दान सिंह रावत, पद्मिनी नीरज और शुभम सौरभ रावत ने। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन। ग्राम सहमालगी से सुखनंदन चंद्रवंशी, शिवरानी, आयशा, प्रतिभा, पूर्वी और पूनम चंद्रवंशी। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश राम मिस्त्री। ग्राम मर्राकोन नानघाट से लक्ष्मीणा यदु और वैभव यदु। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा साहू। फूलझर घटारानी जिला गरियाबंद से योगेश्वर साहू, डोमेश्वरी, यामिनी, मुस्कान और हर्षित साहू। आवरा डबरी से श्यामलाल साहू, मोंगरा, संगीता और केशरी साहू। भीमखोज तरपोंगी से संतोष गुप्ता, हितेश, होमेश, लक्ष्मी, प्रतिभा और शीतल गुप्ता। बोरसरा नैरा से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद साहू। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस, अनिल कुमार, अजीत कुमार। कमल विहार रायपुर से रतन जैन, कोकिला, वैभव और चिराग जैन। ये सभी सुनना चाहते हैं आन फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अगले गीत सुनवाने का अनुरोध हमें भेजा है हरदेव लाल पारा सिमगा से। रमेश कुमार यादव, माया, रिंकू, सनी और कोमल यादव, चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार, जय किशन, कुमारी साहू, इंद्राणी और माया साहू, समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति, राधे, दीपक और अंकुर राघव गुप्ता, आमा खोडरा रेंगाखार से देवी सिंह नेताम, राजेंद्र सिंह, दक्ष प्रिया और गीत सरगम नेताम, बालोदा छत्तीसगढ़ से दिलहरण गौतम, अंजलि, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल, सहसपुर लोरमी से छुटकू साहू, मोहित राम, लोकेश, रामकिशन, दुलीचंद और सीताबाई साहू, शीतलनगर दुर्ग से शिवप्रसाद चंद्राकर और भगवान चंद्राकर, धरसीवा से छेदूलाल यादव, सीता, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नू लाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ यादव, रानू, खुशी, प्रवीणा साहू और सी एल यादव, अमली पदर देवभोग से निकुंज तिवारी, लाची और

ममता तिवारी। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म दबंग 2 का गीत, तुलसी कुमार और सोनू निगम के स्वर में। बोल लिखे हैं इरफान मलिक ने और इरफान कामिल ने, और संगीत है

शान और श्रेया घोषाल के स्वर में आइए अब सुनते हैं अरुण भैरव का लिखा गीत, जिसे संगीत से सजाया है साजिद वाजिद ने और फिल्म का नाम है वांटेड। इस गीत को सुनवाने का अनुरोध हमें भेजा है धवलपुर गरियाबंद से गेंदलाल मिश्रा, चंद्रकांति, अर्चना, प्रतीक्षा और धनंजय मिश्रा, चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरिया नामल, अनीता मोटवानी, राजेश, मुकेश, सोमेश, मनीष और शुभम, सिमगा से सविता जैन और प्रदीप जैन, यहीं से लवकुश सेन, प्रहलाद सेन, आदित्य, आशीष और प्रकाश सेन, पावर हाउस भिलाई से विकास वर्मा, खुशी, ग्रंथ वर्मा, संजय प्रधान और पूजा

प्रधान, कोटा रायपुर से योगिता वर्मा, रुचि वर्मा, खुशी और ओजल वर्मा, रामनगर रायपुर से राजेश अम्बादे, शशिकला, पूजा, बुड़गहन छत्तीसगढ़ से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला और शशि कांता प्रजापति, भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा, यहीं से भागवत वर्मा, गुलाब दास वर्मा, बेमित्रा मुलमुला से नेत्राम साहू, मणिराम, लक्ष्मी, बिंदु, डिंपल, रामेश्वर साहू, सेवन राम, अमरीकाबाई, लेखनी, रोशनी और चहक साहू।

आपके मीत ये गीत कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर का 1 बजने को है, कुछ ही पलों में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडिगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। समारोह में Sukhoi-30, MKI, सारंग और सूर्य किरण टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। उधर भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ. जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं श्रेया घोषाल और उदित नारायण के स्वर में। बोल लिखे हैं गुलजार ने, धुन बनाई है ए आर रहमान ने और फिल्म का नाम है गुरु।

आई एम कलाम। आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत श्रेया घोषाल और अभिषेक रॉय के स्वर में। बोल लिखे हैं मानवेंद्र ने और संगीत है अभिषेक रॉय का।

सुल्ताना और ज्योति नूरा के स्वर में लीजिए अब सुनते हैं इरशाद कामिल का लिखा है गीत। संगीत है ए आर रहमान का और फिल्म का नाम है हाईवे।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:25 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम सुनिएगा रात 8:30 पर, और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम में रात 10:00 सुनिएगा यूएस प्रसाद से कर्नाटक सैक्सोफोन वादन। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम अष्टलक्ष्मी सुनिएगा रात 9:25 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ सुनेंगे शाम 5:00।

घर आंगन कार्यक्रम बहने सुनेंगी दोपहर 1:30 पर, जिसमें आज सुनेंगे क्रम आज के गोठ रक्तदान महादान विषय पर। क्रम भेंटवार्ता में सुनेंगे रक्तदाता श्रीमती रेवती चंद्रा ले संगीता वर्मा के गोठ बात। साथ ही सुनेंगे क्रम एक ही कलाकार के गीत, कलाकार होंगे मंसूरी सिंह।

चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा दोपहर 2 बजे, दोपहर 2:30 पर, शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर।

युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी शाम 5:10 पर, जिसमें आज सुनेंगे क्रम अपन गोठ अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस पर, क्रम आपमन के चिट्ठी और साथ ही सुनेंगे क्रम माटी के गीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे कुछ छत्तीसगढ़ी गीत। शाम 6:30 पर कलाकार होंगे गोरेलाल बर्मन और साथी। लोक संगीत के ही कार्यक्रम में रात 8:15 पर सुनिएगा कुछ छत्तीसगढ़ी गीत। कलाकार होंगी सफरी मरकाम और साथी।

चौपाल कार्यक्रम सुनिएगा रोजाना की ही तरह शाम 7:21 पर, जिसमें आज की बात केंद्रित होगी बरसात के पहली पशुधन के आवास प्रबंधन विषय पर। शाम 7:30 पर किसानवाणी कार्यक्रम के तहत सुनिएगा आज की सलाह, बीज उपचार का महत्व एवं विधियां। सलाहकार होंगी दीपमाला लकरा, विषय वस्तु विशेषज्ञ पौध रोग कृषि विज्ञान केंद्र भाटापारा।

कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:30 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी मन ला करुणा वर्मा के राम राम। बहनी हो कथे ना, बेरा हा कोनो ला पूछ के नहीं आए, बेरा हा कब काकर ऊपर बदल जही कोई नहीं जाने। बहनी हो आज के भागम भाग जिंदगी में हमर ला घर ले कई बार बाहर जाए ला लग जाते, या फिर ये कहान कि हमर शरीर सागर कब कौन प्रकार के बीमारी ले घेर जही पता नहीं चले। और ऐसन बेरा में कई बार का होते कि हमला नहीं चाहते हुए भी

दान कर सकत हवे। रक्तदान करे ले जीवन बचाए जा सकत हे। कोनो दुर्घटना और गंभीर बीमारी में रक्त की जरूरत पड़ती। मानवता की सेवा रक्तदान दूसर मनखे के मदद करे के सबले बड़े पुण्य माने जाते। समाज में जागरूकता बढ़ाते। नियमित रक्तदान ले समाज में सेवा के भावना बाढ़ते बहनी हो और आपातकाल में सहायता करते। रक्त बैंक में पर्याप्त रक्त उपलब्ध रहते। रक्तदान करे के फायदा शरीर में नवा रक्त कोशिका बने में मदद मिलते। स्वास्थ्य जांच के अवसर मिलते। हमर हृदय में स्वास्थ्य पर लाभदायक हो सकते। दूसर के जीवन बचाए के संतोष मिलते। रक्तदान के बाद हमन ला का करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा पानी और तरल पदार्थ पीना चाहिए। पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। कम से कम 24 घंटा तक शराब और धूम्रपान ले बाचन। भारी सामान और कठिन व्यायाम ले बाचन बहनियों। हमर रक्तदान करे ले कई मनखे के जीवन ला बचाए जा सकत हवे। ता जरूर रक्तदान करन। और आज पारी ही एक ही कलाकार के गीत के ता आवा सुनथन एक ही कलाकार के गाए गीत ला। और हमर आज के कलाकार हवे मंसूरी सिंह। ता सुनथन उकर पहली गीत ला।

0: पहिनी हो गीत के पहली बात करत रहेन रक्तदान के बारे मा, जो हमर समाज मा कतको बहनी हवे जो रक्त दान ला सबले बड़े पुण्य मानथे। और हमर रक्तदाता बहनी रेवती चंद्रा ले आप मन के मुलाकात कराथन और गोड बात करे हे संगीता वर्मा, ता आवो सुनथन भेंट वार्ता।
1: हमर भारतीय धर्म ग्रंथ मा कतका सुघर बात कहे गे हे कि बड़ भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। एकर धार्मिक या आध्यात्मिक महत्व जौन भी हो, फिर हम मानवीय गुण कोतिला देखन ना त सही मा मनखे ही एक बौद्धिक प्राणी हरे। और बौद्धिक प्राणी होय के स्थिति जीवन के मूल ला मनखे ले ज्यादा कोनो नहीं समझ सके। और जब जीवन की बात आते ना त कथे, जब तक शरीर में खून दौड़ा थे तब तक ये जीवन के अस्तित्व है, और रक्त नहीं है तो ये जीवन के समापन निश्चित है। फिर ईश्वर की कृपा ले हमला जिन शरीर में रक्त मिले है तेखर कुछ अंश जरूरतमंद ला दे दन तो हमारे शरीर में कोनो नुकसान नहीं हो, बल्कि दूसर के जिंदगी बचाए जा सकत है। और यही ल तो रक्तदान की थे, और रक्तदान ला महादान, और इला सबले बड़े पुण्य माने जाते। और कोनो ल कहूँ जीवन दान मिलत है तो एखर ले अच्छा काही नहीं हो सके। ऐसने रक्तदान जैसे महाभियान में जुड़े हमार बहिनी आज हमार बीच में है, और इनला अपन बीच पा के हमला बड़ खुशी होत है, और इखर ले प्रेरणा तको मिलत है। आज हम ये बहिनी ला आप मन संग मिलवाना चाहबो। आप हरो श्रीमती रेवती चंद्रा, जिन गृहिणी के संगे संग रक्तदान जैसन पुण्य काम में जुड़ के सेवा करत है। रेवती जी, आपके हमार स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। राम राम।
2: राम राम। धन्यवाद आप मल्ला।
1: और सबले पहले तो हम आपसे ये जानना चाहबो कि रक्तदान जैसे महादान के कार्य में जाए के आपके मन में विचार कैसे इस?
2: मोर बेटी जब हॉस्पिटल में होइस ना, तो वो टाइम मैं बहुत झन गर्भवती महिला मतलब देखें कि ओकर रिश्तेदार मन ब्लड बति वति भाग दौड़ करत रहिन हैं, फिर भी ओकर रिश्तेदार मन तैयार नहीं होत रहिन हैं कि ब्लड दे दिन कके। तब वो टाइम मोर मन में विचार इस कि काश मोर डिलीवरी अभी नहीं हो रही थी तो महूँ हाँ जाके दे रहते कके। तो फिर बाद में फिर मैं विचार करें कि मोर बेटी जब 3 साल के होइस ना, तहाले मैं सोचे कि मैं ब्लड देवा कके। ताल मोर पति तरफ से मतलब सपोर्ट भी मिली, सुमन सपोर्ट भी करी मोर घर के मन, तहाल मैं ब्लड दे।
1: अच्छा, तो आपकी बेटी 3 साल के रही से, हाँ। तब ले आप ब्लड दान करत आवत हो?
2: हाँ हाँ।
1: और कते घंव कर रहे हो आप?
2: मैं वही 20-25 बार कर चुके हूँ हाँ, अभी तक तो।
1: और जब पहली बार रक्तदान करे हो तो आप लग कैसे अनुभव हुईस, हमारे बहनी मन सन साझा करूँ अपन विचार ल?
2: जब मैं पहली बार ब्लड दान करें ना, तो वो टाइम बढ़िया स्वस्थ हल्का महसूस करें। और वो टाइम कुछ मन सोचते ना कि ब्लड देहे में कमजोरी आ जाएगी, थकान लगी कके, पर उसना मोर साथ ऐसा हो नहीं है। कोई कोई महिला हो जाते कभी कभार, अगर सब महिला के साथ उसना नहीं हो।
1: अच्छा, तो बहुत हल्का महसूस?
2: हाँ, हल्का महसूस हो, आराम भी लगे मोला, और वजन भी ठीक रहते उकर से।
1: अच्छा, और आत्मिक संतुष्टि अलग ही मिलते है?
2: हाँ हाँ, उकर से।
1: और हम आपसे एक बात और जानना चाहबो कि जिन मन के रक्तदान करते ओकर में का होना चाहिए, का क्षमता होना चाहिए, कौन मन के रक्तदान कर सकत है?
2: स्वस्थ और हेल्दी व्यक्ति ही रक्तदान कर सकत है। जैसे कि वह धूम्रपान नहीं करना रहे वाला, एक दिन ब्लड दे के पहले, और खान पान भी अच्छा होना चाहिए, और नशा मुक्त होना चाहिए, और बढ़िया से अच्छा मतलब
1: हेल्दी सेहतमंद,
2: और जो कर बीपी शुगर ये सब नॉर्मल रहे तभी ब्लड दान कर सकते हैं।
1: खून की मात्रा बढ़िया रहना चाहिए।
2: खून की मात्रा बढ़िया रहना चाहिए, जैसे

0: कि पुरुष मन के 13 ग्राम और महिला मन के 12 ग्राम होना चाहिए, तभी वो ब्लड दे सकते।
1: और जैसे कोनो मन के रक्तदान करना चाहते
0: हाँ,
1: तो वाला पहली कहीं तैयारी करे लगते का, और कौन उम्र में वह ब्लड दान की शुरुआत कर सकते हैं, और कौन उम्र तक वो कर सकते हैं रक्तदान?
0: ज़्यादा कुछ तैयारी करे में नहीं लगे, ओमा बढ़िया वाला तो पर्याप्त नहीं होना चाहिए ब्लड दे के, पहली खान पान वगैरह अच्छा होना चाहिए, और जो पानी पीते रहना चाहिए, और वही सब HIV टेस्ट, BP शुगर, और कोई बड़ी बीमारी नहीं हो और कुछ परेशानी नहीं हो, जैसे हेपेटाइटिस वगैरह ये सब मत हो करके। जब हमारे खून ला टेस्ट करे जाते तब वो टाइम हमारे पूरा शरीर के टेस्ट हो जाते।
1: अच्छा जी,
0: तो और लगभग 18 साल से लेके 60 साल के उम्र तक के मन दे सकते हैं, जैसे स्वस्थ व्यक्ति हवे तो 65 साल तक के उम्र तक भी दे सकते।
1: अच्छा अच्छा, यानी रक्तदान करे के पहले सबो टेस्ट करते
0: हाँ, है ना?
1: और जिसे हमला तत्काल ब्लड रक्तदान करना है, है ना, तो ओकर पर कैसे होते?
0: तत्काल में भी यही टेस्ट होते, BP शुगर सब, सर्दी खांसी बुखार सब चेक करे जाते।
1: अच्छा,
0: जैसे हॉस्पिटल में कोई हमारा आदमी एडमिट हवे और ओला जैसे कि ओकर ग्रुप के रक्त नहीं मिल पाते, तो हमर जो रिश्तेदार रही ओमन अपन डोनेट करके वहाँ हॉस्पिटल से ओला उपलब्ध करा सका थे मरीज ला।
1: और देवती बहनी, जैसे हमला या हमार श्रोता बहनी मनला रक्तदान करना है तो सीधा अस्पताल ले जुड़ के कर सकत हन या कोनो ग्रुप ले हमला जुड़े पर लागी?
0: डायरेक्ट हॉस्पिटल में भी जाके अपन दे सकत हैं, रिश्तेदार मतलब भी दे सकते हैं, अपन परिचित के मतलब दे सकते हैं, नहीं तो ऐसा ही भी जाके डायरेक्ट निकलवा सकते हैं। और ग्रुप में जुड़ना चाहिए तो ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, और मैं तो डायरेक्ट हॉस्पिटल में ही जाके दे हवा।
1: अच्छा,
0: और ग्रुप
1: अच्छा,
0: से भी दे हवा।
1: अच्छा,
0: जैसे मोर घर से नजदीक रहते तो मैं जाता दे हवा।
1: अच्छा अच्छा, तो आप ऐसे कोनो समूह से जुड़े हो का?
0: हाँ, समूह हवा उनके।
1: अच्छा, ते हाँ, मन आपस में मिल के सब एक दूसरे हाँ, के सहयोग करत
0: हाँ, सहयोग करते हैं हाँ,
1: या ये हाँ, तो बहुत बढ़िया काम करत हो आप मन। यानि कोनो भी परिवार में या कोनो ला भी रक्त की जरूरत है तो आपसे कांटेक्ट कर सकते
0: हैं,
1: और समूह के कोनो भी महिला या कोनो भी जाके ओला रक्त दे सकते
0: हैं। हाँ,
1: ये तो आप बहुत
0: हाँ,
1: पुण्य के काम हाँ, करत हो बहनी। और ऐसे आपके जीवन में कहीं अनुभव, जब आप रक्तदान करे हो तो आपके जिन करीब है, दिल के करीब है, तेन ला कहीं साझा करना चाहते हो का हमारे श्रोता मन से?
0: हाँ, मैं तो 8 साल के बच्चल दे रहे हैं, 2 गर्भवती महिला दे रहे हैं, 1 महीना के बच्चा ला दे रहे हैं, तो अभी 5 साल के हो गए हैं, तो कहीं भी मिलते हैं मुला तो कर रिश्तेदार मन परिचित के उन जो भी देखते हैं कहते आप मन ही ब्लड दे है तो हमारे लड़का आज हवा का कोकर पेरेंट्स मन कहते हैं
1: कतका मन संतुष्टि हाँ, हाँ,
0: तो लड़का भी बताते कि आंटी ब्लड दे रही से तो आज हवा से ओकर वजह से कहते भी तो अच्छा खुशी महसूस होते।
1: आप मोला आवत आवत यू बतावत रहे हो कि 1 महीना के लड़का तक आप ब्लड दे हो
0: हाँ,
1: बताओ एक बारे में कहें।
0: तो वही जो हॉस्पिटल में जब दे रहे ना तब वहाँ 1 महीना के बच्चा मैं दे तो मुझे देख के लगत नहीं रही से कि एकदम से बहुत हेरी से कमजोर हो टाइम बच्चा है
1: हाँ।
0: और मैं ब्लड दे तो हलो वो मन बाद में मुझे फोन करीन।
1: अच्छा,
0: वो नंबर भी रखे हैं, जब भी कभी भी मन करते तो बात भी कराते लड़का से भी।
1: अच्छा, बच्चा से आपसे बात
0: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा भी लगते कहीं भी मिलते तो खुशी महसूस होते।
1: और बहनी, जैसे हमार कई झन बहनी मन रक्तदान ला लेके कई ठन भ्रांति पाले रही थे कि रक्तदान करबो तो हमला कमजोरी तो नहीं लागी, खून जल्दी बनही तो नहीं, तो वो मला आप का कहना चाहो?
0: ओमा कोई डर के बातें नहीं, शुरू शुरू थोड़ा सा थकान कमजोरी लगते मगर हर आदमी नहीं लगे, बढ़िया खान पान अच्छा रही ओकर, बढ़िया जैसे कि सलाद वगैरह बढ़िया खाना चाहिए, हरा साग सब्जी
1: हाँ,
0: संतुलित आहार हाँ, अंजीर मुनक्का जैसे छुहारा वगैरह सब भिगा के सवेरे खाली पेट खाना चाहिए, और जूस वूस गाजर चुकंदर के सब पीना चाहिए, ओकर से हमार शरीर ताकत भी मिलते, कमजोरी भी दूर होते और खून भी बनते।
1: अच्छा हाँ, तो हम जैसे रक्तदान करत हन तो हमार खून है तो रोज बने की चीज है
0: हाँ,
1: तो हर 4 दिन में पूरा बन
0: हाँ,
1: जाते
0: 4 दिन में ये सब खान पान अच्छा रही ना हाँ, संतुलित आहार रही हाँ, तो 4 दिन में बराबर बन जाते।
1: आप तो ये बहुत बढ़िया बात बताए हो।

0: जावत जावत आप जैसा रक्तदाता है तेन मला आप का कहना चाहता हूँ।
1: हमर जो रक्तदाता है तेन बहुत अच्छा कार्य करत हैं और आगे भी ऐसने कार्य करत रहे, जैसे कि काकरो जीवन बचाते हैं तो ओमन रक्तदान करत हैं तो बहुत अच्छा लगत है और हम चाहबो कि वो आगे ओमन ऐसने निरंतर कार्य करत रहें अपन और जीवन रक्तदान जीवन दान होते महादान होते श्रेष्ठ दान होते वो बहुत बड़े पुण्य के काम है ओकले सौभाग्य और कुछ नहीं है और आगे भी ऐसने कार्य करत रहें और उनके स्वास्थ्य भी अच्छा रहे उमल बहुत बहुत शुभकामना है।
0: और जिन हमार बहनी मन खून दे पर डर रहे थे तेन मल आप का कहना चाहो।
1: खून दे में उमर डर वाली कोई बात ही नहीं है पहली बात तो कई जिन मन डराते हैं घलो कि हमार खून ला हम कैसे दे देवो कह के हाथ में एक पट्टी बांधी यहाँ से इंजेक्शन लगाई और एक बॉल पकड़ा दी और 5 से 10 मिनट के बीच में हमार खून निकल जाते पता भी नहीं चले कि खून कब निकली से बात करते हो पता ही नहीं चले।
0: अच्छा बहुत बढ़िया काम करत हो रेवती बहनी आप जीवन बचाए के काम करत हो। आप अपन कीमती बेरा ला निकाल के हमार स्टूडियो में आए और अतिक सुघर ढंग ले बढ़िया बढ़िया जानकारी दे तेखर पर आप ला हमार पूरा घर आंगन परिवार ढाल ले अंतस ले बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप मन के भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहनियों अभी भेंटवार्ता में रक्तदाता बहनी रेवती चंद्रा ले संगीता वर्मा के गुड़ बात सुनत रहें। वास्तव में बहनी हो भगवान हा हमन ला जोन चीज बना के दे उखर थोड़ा से हिस्सा ककरो जीवन ला बचा सकत है उखर ले बड़े खुशी का हो सकत है ता आवा हमन हा जरूरत पड़े मा रक्तदान दे के संकल्प करन तभे तो रक्तदान महादान कथे। औ आज पारी है एक ही कलाकार के औ आज के हमर कलाकार हवे मंसूरी सिंह ता आवा सुनथन दूसरैया गीतला।

बहनियों घड़ी हा घलोक इशारा ला करत हवय, तो आप मन हा मोला देवा विदा और झोंका मोर यानी करुणा वर्मा के मयाली भरे राम राम।

अभी बहनें सुन रही थीं अपना मनपसंद कार्यक्रम घर आंगन। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजे हैं। अब सुनते हैं चित्रपट संगीत।

0: अग्निपथ, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना एसपी बालसुब्रमण्यम और अलका याग्निक के स्वर में। बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

लीजिए अब सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत, जिसे सुरों में ढाला है राहुल देव बर्मन ने। आवाजें हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार की। फिल्म का नाम है लव स्टोरी।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत, आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया। हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
2: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
1: राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
3: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
5: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल governments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
4: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
6: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के

0: ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
1: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
1: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
3: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि की है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमरीका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब सुनते हैं चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत के साथ। संगीत है मदन मोहन का, आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। ये गीत हमने लिया है फिल्म लैला मजनू से।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
6: सुनिए।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में लीजिए सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा है गीत, स्वर है लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम है लोफर।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: के तैयारी कर थसकाते हैं।
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़थो फिर पढ़ के भुला जाथो।
0: अरे त सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: त काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एकर असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तैं बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तहा मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।

किशोर कुमार के स्वर में लीजिए अब सुनते हैं गुलशन बावरा का लिखा है गीत, संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है सनम तेरी कसम।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर में आइए अब सुनते हैं जीत फिल्म का गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

किसी और से बोल बिठा ले।

जानी दुश्मन। लीजिए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल के स्वर में। बोल लिखे हैं वर्मा मलिक ने और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के ठीक 3 बजे हैं। अब ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे अपने कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। राजदूत सिंगला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट्स ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पासिंग आउट परेड की सलामी भी ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया।

जी हाँ, आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़, और ये समय है मन भावन का, और हम आप तक पहुंचाएंगे वो फिल्मी नगमे, वो फिल्मी तराने जो आपकी पसंद है। जी हाँ, आपकी पसंद के तराने हम शामिल करने जा रहे हैं, और आप अपनी पसंद हमें भेज सकते हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पर। ये हमारा ईमेल का पता है, दोबारा बोल देता हूँ, fmgoldairdelhi@gmail.com। सभी लेटर्स स्मॉल में हैं, और व्हाट्सएप का नंबर है 9868868753। जी हाँ, 9868868753। तो आप हमें संदेश भेज सकते हैं, हम आपकी फरमाइशों को शामिल करेंगे, ज़रूर करेंगे, और पूरी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी संदेश शामिल करें। मैं हूँ आपके साथ शिव प्रकाश। आगाज़ इस नगमे से जो हमने लिया है फिल्म पुनर्मिलन से, और इस नगमे की जो फरमाइश हमारे पास आई है वो भी हम बताएंगे, मगर हम पहले बता दें कि इस नगमे में जो आवाज़ है वो है मोहम्मद रफ़ी साहब की, और इसकी फरमाइश हमें भेजी है होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल। फिल्म है पुनर्मिलन। आप तक ये नगमा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर।

जी हाँ, बहुत सारे पैगाम आप लोगों के हमारे पास लगातार आ रहे हैं, तो हम उनको शामिल करते हैं। हमारे पास वाइट फील्ड बेंगलुरु से संदेश आया है भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिव्यन्दु भूषण, पौरुष, इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे पास ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही महाराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से संदेश आया हुआ है और इन्होंने भी अपनी फरमाइश हमसे भेजी है। साथ ही मेरे पास जो संदेश आया है वो है कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह जहां बेगम, शाहजहां बेगम भी साथ में जुड़ी हुई हैं। और दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा, इन्होंने भी हमसे एक फरमाइश भेजी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा की भी हमारे पास फरमाइश आई हुई है। और इंद्रानगर भवपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू, नेहा, जगदीश देवांगन,

और गरिमा है, ये तमाम लोग जुड़े हुए हैं, ये नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और चलिए तो हम एक नगमा आप तक पहुंचाते हैं जिसकी फरमाइश हमें भेजी है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवाकर और निर्मला नावकर और विशाल नावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष मुरहेकर। तो चलिए नगमा किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में फिल्म एक बार मुस्कुरा दो आप सबके लिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
5: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
4: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
5: बिल्कुल। डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
4: और विनर्स को क्या मिलेगा?
5: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
4: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
6: जी हां, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। आप सुन रहे हैं मनभावन, आपके साथ हूं मैं शिव प्रकाश, और आप तक पहुंचा रहे हैं वो नगमे जो आपकी फरमाइश के हैं, जो आप हम तक अपने संदेशों के जरिए पहुंचा रहे हैं। जी हां, अगला नगमा हमने लिया फिल्म गुमनाम से, जहां स्वर है मोहम्मद रफी और शारदा का, संगीत है शंकर जयकिशन का। तो लीजिए सुनिए बहुत ही प्यारा सा नगमा फिल्म गुमनाम से। जी हाँ, इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरदान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के तमाम सदस्य इस गीत के लिए फरमाइश भेज रहे हैं।

तो जी हाँ, कुछ पैगाम शामिल कर लेते हैं। अगला जो हम पैगाम लेने जा रहे हैं उसमें चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा विमला अनेजा जुड़े हुए हैं। इन्होंने फिल्म मेरा साया का गाना सुनना चाहा है, वो हमने ले लिया है और हम सुनवाएंगे, मगर साथ साथ हम कुछ संदेश आपके शामिल करते चलें। हमारे पास विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा का पतेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से पैगाम आया हुआ है। और साथ ही हमारे पास लखनऊ उत्तर प्रदेश से मास्टर खिलू परवेज बेगम, इमराना नाज, राधा नामदेव, इन्होंने भी एक फरमाइश भेजी है और ये कहते हैं कि सेव वाटर सेव लाइफ। बहुत ही अच्छी बात कही है इन्होंने, पानी बचाना, पानी का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। पानी नहीं होगा तो जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। चलिए एक और सुनीत कुमार जुड़े हुए हैं ख्याला दिल्ली से, अनुज कुमार, दिनेश कुमार, उमेश कुमार, ये सभी लोग एक साथ हैं। और राकेश कुमार, मुनीश कुमार भी जुड़े हुए हैं विष्णु गार्डन से। तमाम इन लोगों का हमने संदेश लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये इन्होंने हमें पैगाम भेजा है, गौरी शंकर जी हैं नांगलोई से, इन्होंने एक फरमाइश भी भेजी है, कोशिश करेंगे ज़रूर। और भी हमारे पास पैगाम आए हुए हैं, बासा रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद नबीस, पलक लुबना और यश मंसूरी, इन्होंने कहा कि आपकी प्रस्तुति बेहद शानदार है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। गुरमीत सिंह मीता जी जुड़े हुए हैं अपने, अच्छा इन्होंने फरमाइश भेजी है और ये साउथ एक्सटेंशन दिल्ली से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।

और शेरवानी स्कूल गंज डुंडवाड़ा से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, अलिया अंसारी भी जुड़े हुए हैं। तो चलिए फिल्म मेरा साया का ये नगमा आप तक पहुंचाते हैं आशा जी की आवाज़ में। और फरमाइश तो हमने आपको बताई दी थी, तो आप लोग बने रहें आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

जी हाँ, हमारे पास और भी बहुत सारे पैगाम आपके लगातार आ रहे हैं, तो हम कुछ पैगाम शामिल कर लेते हैं। उनमें पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू मोहन, मधु नायक का पैगाम आया हुआ है। इन्होंने भी एक फरमाइश भेजी है। और हमारे पास सनावत से शेख मूसा मोहसिन का ये पैगाम आया हुआ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जॉन डी क्रेस्ट्रो का, हमारे पास रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो का जनकपुरी सहारनपुर से पैगाम है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ज़िला खरगोन सनावत से हमारे पास मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, भाई राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खांडवा से लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप का ये संदेश है। और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला सुरलकर और गौरी सुरलकर का ये संदेश आया हुआ है। साथ ही हमारे पास वारली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, अजहर खान, अजीम खान का भी ये संदेश आया हुआ है। और सुरेश नारंग जी ने हमें ये भेजा हुआ है संदेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आशा नारंग सहारनपुर से ये पैगाम हमारे पास आया हुआ है। और राजकुमार डूडी जुड़े हुए हैं, पवन कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी भी जुड़े हुए हैं। इन्होंने कहा जी कोई भी गीत सुनवा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे पास तो आप लोगों के बहुत सारे पैगाम हमारे सामने हैं। हमारे पास गांव शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का ये संदेश आया हुआ है। तो चलिए एक बहुत ही प्यारा सा नगमा हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। फिल्म है बालिका वधु और ये हमारा आज के इस कार्यक्रम का आखिरी नगमा होगा। आप खुश रहें, खुश रखें अपने आसपास वालों को और खुशियां बांटते रहें तो आपको जाहिर तौर पर बहुत खुशी मिलेगी। आप बने रहें एफएम गोल्ड के साथ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार इस बहुत प्यारे से नगमे के साथ जो हमने लिया है फिल्म बालिका वधु से। और आप सबके लिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। राजदूत सिंगला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट्स को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट्स ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगुल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती हुई युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। असम के जोरहाट में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक विमान AN-32 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। वायुसेना ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। वायुसेना ने बताया कि इस हादसे में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम का निधन हो गया। वायुसेना ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि दुख की इस घड़ी में वो उनके साथ मजबूती से खड़ी है। वायुसेना ने बताया कि दुर्घटना स्थल पर आवश्यक कार्रवाई और प्रारंभिक जांच जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकी बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। बैठक में गृहमंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध व्यक्त किया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ईरान ने कहा है कि वो अमरीका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश की वजह से टॉस अब तक नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना था। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय प्रशांत कुमार सिन्हा। Prime Minister Narendra Modi today embarked on a six-day visit to France and Slovakia to further deepen bilateral ties with the two European countries. The visit will also reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. In the first leg of the visit, the Prime Minister will reach the French city of Nice tonight for a bilateral meeting with President Emmanuel Macron tomorrow. The two leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which will bring together top innovation startups and venture capital funds from India, France and other countries. In his departure statement, Mr. Modi said the focus of the visit will be on boosting economic as well as cultural linkages between India and France. Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Nice has filed this report.
3: Nearly 10,000 Indian students are today studying in France, with both countries working towards 30,000 by 2030. In conversation with Akashvani, the Ambassador of India to France, Sri Sanjeev Sankla, emphasizes that the Prime Minister's upcoming visit is set to further deepen the people-to-people ties.
4: There is a core belief that key partnerships, for instance with France we have now a special global strategic partnership, they have to be driven by people-to-people relationships. There is only a certain point up to which the governments can push the relationship. So the relationship has to become much more organic, and that's why increasingly there's a focus on deepening these ties. They span a number of areas.
3: It is precisely the spirit of research, innovation and people-to-people connect that Bharat Innovates brings to Nice tomorrow, and with it the promise of a partnership that only grows stronger. Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
2: Union Home Minister Amit Shah today directed the High-Level Committee on Demographic Change to study the shift in population structure in border districts. Chairing the meeting of the committee, Mr. Shah also asked the panel to visit border areas, metro cities and industrial towns for an assessment of changes because of illegal migration and other unnatural causes. An AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force crashed at the Jorhat Air Force Station in Assam this morning during a routine sortie claiming the lives of five air warriors. The Indian Air Force, IAF, said that a court of inquiry is being constituted to ascertain the cause of the accident. The IAF has expressed grief at the loss of lives. Defence Minister Rajnath Singh has also expressed grief over the loss of five air warriors. In a social media post, Mr. Singh said their courage and service to the nation will always be remembered with pride and gratitude. Mr. Singh said the nation stands firmly with them in this hour of grief. He also conveyed his heartfelt condolences to the bereaved families. The government has appointed Lieutenant General Dheeraj Seth as the next Chief of the Army Staff with effect from the afternoon of the 30th of June. He is presently serving as the Vice Chief of the Army Staff. The present Chief of Army Staff, General Upendra Dwivedi, is retiring from service the same day. The Indian Army today welcomed 481 new young officers as the 158th Passing Out Parade was held with grandeur at the Indian Military Academy in Dehradun, Uttarakhand. President Draupadi Murmu reviewed the parade as the reviewing officer. Speaking on the occasion, the President said that the Indian Military Academy is a symbol of honour, courage and service to the nation. India has lodged a strong protest to the United States over U.S. Navy strikes on oil ship in the Gulf that killed three Indian sailors. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar spoke to the U.S. Secretary of State Marco Rubio and said that such lethal actions against commercial shipping are not justified. And in men's cricket, the toss for the first ODI of the three-match series between India and Afghanistan has been delayed due to rain in Dharamsala, Himachal Pradesh. The match was earlier scheduled to begin at 1:30 p.m. Star Indian batter and former skipper Rohit Sharma is expected to be in action in today's match. The remaining two matches of the series will be played in Lucknow and Chennai. And that is the end of this news bulletin.

श्रोताओं, आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। लीजिए सुनिए कुछ फिल्मी तराने। पहला तराना हमने लिया फिल्म आन मिलो सजना से, स्वर है किशोर कुमार का।

0: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I am Lucy Gabriel, and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with J&K Development Finance Corporation, a government-owned financial institution in Jammu and Kashmir, has invited applications for the post of a manager legal on regular basis. The vacancy is unreserved and carries a pay scale of 60 to 1,80,000 IDA pattern. Candidates must possess a full-time LLB degree with at least 50% marks from recognized universities and should have 15 years of post-qualification executive experience. Maximum age limit is 50 years as on 30th April 2026. Applications in the prescribed format must be submitted by 19th June 2026 through registered post or speed post to the corporation's Jammu office. Detailed eligibility conditions and application format is available on the corporation's website, that is at www.jkdfc.org. The Indian Pharmacopoeia Commission, IPC, an autonomous body under the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, has announced recruitment for 4 scientific assistant posts, 3 unreserved, 1 OBC through direct recruitment. The positions are placed in pay level 6, as per the 7 CPC. IPC plays a key role in developing and updating the Indian Pharmacopoeia, coordinating the Pharmaconvigilance Program in India and ensuring drug safety standards nationwide. Candidates should not exceed 35 years of age, with age relaxations applicable as per government rules. Applications along with supporting documents must reach IPC Ghaziabad within 45 days of publication of this advertisement. Detailed qualification and application forms are available on the IPC website. Do refer to www.ipc.gov.in. The Institute of Serology, Kolkata, under the Ministry of Health and Family Welfare, has invited applications for 2 laboratory technician positions on a purely contractual basis under the project Implementation of Water Waste Surveillance for Multi-Pathogens Across India at the National Polio Laboratory. The engagement is initially for 2 years with a consolidated remuneration of 18,000 rupees per month plus HRA. Candidates should possess 12th pass with MLT and DMLT qualifications from a recognized institute and 2 years of relevant experience. The upper age limit is 28 years. Applications must reach the institute within 10 days of publication of this notification. The positions are temporary and do not confer any claim for regular employment. For details, do refer to the website, that is at www.dghs.mohfw.gov.in. The Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, IHM Goa, an autonomous institution under the Ministry of Tourism, Government of India, has announced a vacancy for Assistant Lecturer cum Assistant Instructor, 1 unreserved post. IHM Goa has also invited applications for 5 teaching associate positions on a contractual basis, comprising 3 unreserved, 1 OBC and 1 SC vacancies. The institute is looking for hospitality professionals and educators capable of teaching hotel management and catering subjects. Interested candidates should carefully review the eligibility requirements, application procedure available on the institute's website. Detailed eligibility criteria, qualifications and selection procedures available on the institute's website, that is at www.ihmgoa.gov.in. Mera Yuva Bharat, MY Bharat, an autonomous body under the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, has invited online applications for the post of Assistant Director, District Youth Officer. The posts are placed in pay level 10 as per the 7 CPC. Recruitment is open to eligible candidates appearing in UPSC Civil Services Examination 2024 disclosure list available through the Pratibha Setu portal. Selected officers will contribute to youth engagement, leadership development, community participation and implementation of youth-centric government programs across districts. Detailed eligibility conditions, application procedures and important dates are available on the ministry's website. Please do go on to the website, that is at www.yas.gov.in. I repeat, it is www.yas.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड दूर संचार संवर्ग में कनिष्ठ दूर संचार अधिकारी जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के पद हेतु प्रत्यक्ष भर्ती योजना के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी और नवीनतम अपडेट के लिए BSNL की वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका पता है www.bsnl.co.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवघर आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। चिकित्सा अधीक्षक, नर्सिंग सहायक, परीक्षा सहायक नियंत्रक, उप नर्सिंग अधीक्षक, सहायक नर्सिंग अधीक्षक, लेखाधिकारी, सहायक भंडार अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, चालक ग्रेड 2। इसके अतिरिक्त अनुबंध के आधार पर आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर, सीनियर प्रोग्रामर, जनसंपर्क अधिकारी, सहायक ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर, विधि अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, सहायक अभियंता, स्वच्छता अधिकारी, बायोमेडिकल इंजीनियर, लॉन्ड्री मैनेजर और परफ्यूजनिस्ट। इच्छुक उम्मीदवार एम्स देवघर की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। वेबसाइट है www.aimsdevghar.edu.in। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पुस्तकालय अध्यक्ष, अधीक्षण अभियंता, उप पुस्तकालय अध्यक्ष, उप कुल सचिव, कार्यकारी अभियंता, सहायक कुल सचिव, सहायक कार्यकारी अभियंता, खेल अधिकारी और उप कुल सचिव। अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए देखिए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता की वेबसाइट apply.iiserkol.ac.in। कर्मचारी राज्य बीमा निगम इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है, जिनमें विशेषज्ञता के आधार पर निर्धारित विभाग हैं एनाटॉमी, एनेस्थीसिया, बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन, फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, पेडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, फिजियोलॉजी, साइकियाट्री, रेडियो डायग्नोसिस, रेस्पिरेटरी मेडिसिन और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। वेतन संरचना, आयु, योग्यता शर्तें, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, शोध प्रकाशन और अन्य शर्तों के बारे में विस्तृत विज्ञापन देख सकते हैं आप कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वेबसाइट पर, जिसका पता है www.esic.gov.in। आवेदन करने की अंतिम तारीख है 27 जुलाई 2026। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बज चुके हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूँ जया भारती और आपके साथ और हमारे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत कुमार सिन्हा। हेलो प्रशांत।
2: हेलो एंड गुड डे जया। लिसनर्स, यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम प्रशांत कुमार सिन्हा एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट जया भारती। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। सो ऑल ऑफ दीस कमिंग योर वे ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
1: बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी विल आल्सो अटेंड G7 समिट एट एवियन इन फ्रांस।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम।
2: इंडिया लॉजेस स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट टू द US ओवर US नेवी स्ट्राइक्स ऑन ऑयल शिप इन द गल्फ, किलिंग 3 इंडियन सेलर्स।
1: वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त।
2: एंड इन मेंस क्रिकेट, टॉस फॉर द फर्स्ट ODI ऑफ 3-मैच सीरीज बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान डिलेड ड्यू टू रेन इन धर्मशाला। And listeners, now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today we will talk about Antyodaya in action. When we speak of development, what are we really talking about? Is it the infrastructure we build, the wealth we create, or the records we break?
1: बिल्कुल प्रशांत, और ये उपलब्धियां निश्चित रूप से मायने रखती हैं, लेकिन शायद किसी देश की तरक्की का असली पैमाना एक साधारण सवाल में छिपा है, जब मौका आता है तो क्या वे हर किसी तक पहुंचता है?
2: Absolutely. Does it reach the last household in the remotest village? Does it create opportunities for those who have long remained on the margins? Because development is meaningful only when no one is left behind.
1: और लंबे समय तक बहुत से लोग भारत की विकास गाथा के किनारे पर खड़े रहे, उन्होंने अपने आसपास बदलाव होते देखा, लेकिन अक्सर वे इसकी पहुंच से बाहर ही रहे।
2: एंड टुडे दैट स्टोरी इज चेंजिंग एंड एट द हार्ट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन लाइज अ पावरफुल आइडिया, अंत्योदया।

0: आदिवासी परिवार जंगल से मिलने वाली उपज को उसी कीमत पर बेचते रहे जो व्यापारी उन्हें देते थे। हालांकि इसकी जानकारी तो उन्हीं के पास थी, लेकिन दुख इस बात का है कि इसका मुनाफा अक्सर और कच्चा माल बेचने के बजाय उन्होंने आयुर्वेद तेल, दवाइयां और हर्बल उत्पाद बनाना शुरू किया। उन्हें उद्यमिता की ट्रेनिंग, डिजिटल साक्षरता की ट्रेनिंग और मार्केटिंग में मदद मिली।
1: And today they run a successful enterprise under the brand Chhattisgarh Herbals. This is so fascinating, isn't it? An age-old craft nurtured within homes and communities is now becoming a source of income and local growth.
0: और पूरे देश में ऐसे कितने ही छुपे हुए हुनर हैं जिन्हें आगे बढ़ने के लिए बस सही सहारे की जरूरत है। पीएम जनमन जैसी पहले ठीक इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करती हैं।
1: There was a time when many particularly vulnerable tribal groups or PVTGs settlements lacked basic necessities. Well, when geography stands in the way of progress, the solution is simple: bringing opportunities closer to people rather than asking people to travel great distances in search of them.
0: पीएम जनमन योजना के पीछे ठीक यही सोच है। आदिवासी इलाकों में पीएम जनमन पहल बेहतर आवास, सड़क संपर्क, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल विकास और आजीविका में मदद जैसी सुविधाओं के जरिए बदलाव ला रही है।
1: The impact extends far beyond infrastructure because a road is never only a road. Sometimes a road means a safer journey to the hospital for a pregnant woman. Sometimes it means a student no longer missing classes because the school is too far away.
0: और श्रोताओं, अब आइए आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में बसे एक ऐसे ही छोटे गांव की ओर जहां सर्दियां बहुत कड़ाके की होती है। अक्सर सड़कें बर्फ के नीचे दब जाती हैं, बिजली की सप्लाई में भी कभी कभी अनिश्चितता आ जाती है। बहुत से बच्चे यह मानते हुए बड़े होते हैं कि मौके कहीं दूर दराज की जगहों पर ही मिलते हैं।
1: However, everything begins to shift when a good school is no longer a distant dream. Let's introduce our listeners to Jatin. Jatin enrolled in an Eklavya model residential school nearby. The school offered structured learning, dedicated teachers, laboratories, academic guidance, among others.
0: बिल्कुल, और पढ़ाई के दौरान पिता को खोने पर जिंदगी ने उनकी कड़ी परीक्षा ली। ऐसे हालात में कई छात्र शायद हार मान लेते, लेकिन जतिन के पास आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दी, प्रेरणा दी। उन्होंने जी जान से पढ़ाई की और आखिरकार जी एडवांस में ऑल इंडिया रैंक हासिल की।
1: एंड टुडे ही स्टडीज एट IIT जोधपुर। व्हाट डज जतिन्स जर्नी टेल अस? इट इज एक्चुअली अ मैसेज दैट टैलेंट कैन इमर्ज फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, no matter how remote. Across thousands of villages, countless young minds carry dreams of becoming scientists, doctors, engineers and innovators. The missing link was often not ability, but access. Today, that reality is beginning to change.
0: और ऐसे ही परिवर्तन और उम्मीद से भरी कहानियों को सुनते हुए प्रशांत, मुझे कवि दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए।
1: How beautiful. We too should remember that Walt Whitman once said, keep your face always towards the sunshine and the shadows will fall behind you.
0: और इमारतें कुछ ही महीनों में बनाई जा सकती है, सड़कें कुछ सालों में बन सकती है, लेकिन क्या खोई हुई भाषा को फिर से जीवित किया जा सकता है? क्या भूली बिसरी परंपराओं को आसानी से वापस लाया जा सकता है? विरासत को बचाना उतना ही जरूरी है जितना कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, क्योंकि दोनों ही अलग अलग तरीकों से भविष्य को आकार देते हैं।
1: That is why tribal research institutes and tribal freedom fighter museums are playing an important role. They are preserving languages, traditions, indigenous knowledge, and the stories of heroes who fought for freedom long before many history books acknowledged them.
0: तो श्रोताओं, क्या आप हमारे आसपास नए दिन की शुरुआत के संकेतों के बारे में सोच सकते हैं? सड़कें साफ सुथरी हैं, कचरा उठा लिया गया है, अपने आकर्षक गाने के साथ कचरा उठाने वाली जानी पहचानी गाड़ी पहले ही गुजर चुकी है।
1: However, none of this happens on its own. It is the result of the dedication of thousands of sanitation workers who start their day while most of us are still asleep. Yet for years, many of them face unsafe and hazardous working conditions.
0: क्या शहरों को साफ सुथरा रखने वाले लोगों को अपनी जान जोखिम में डालनी चाहिए? इसका साफ जवाब है नहीं। इसलिए मशीनीकरण, सुरक्षा उपकरणों, ट्रेनिंग और आजीविका के

0: वैकल्पिक मौकों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आखिरकार विकास का मतलब सम्मानजनक जीवन भी तो है।
1: Should a child's future depend on the district where he or she was born? Should a village remain disadvantaged because it is difficult to reach? The Aspirational Districts program was built around this very idea. Geography should not determine destiny. Across some of India's most underserved districts, local solutions have produced remarkable outcomes.
0: बिल्कुल, और अक्सर बाढ़ से प्रभावित रहने वाले एक जिले में मोबाइल मेडिकल यूनिट और नाव क्लिनिक के जरिए दूर दराज के गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई गई। वहीं दूसरे जिले में डिजिटल मॉनिटरिंग के इस्तेमाल ने गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के तरीकों को बदला, जिससे स्वास्थ्य के नतीजों में जबरदस्त सुधार हुआ है।
1: Listeners, these are not one-size-fits-all solutions. These are examples of governance adapting to local realities, and perhaps that is where lasting transformation begins. Numbers tell one part of the story, while people's lives tell the rest. As we mentioned earlier as well, a well-built road is equal to opportunity in reach. A scholarship equals to a child not dropping out from school.
0: असल में इसकल प्रोग्राम का मतलब है परिवार की सम्मान के साथ कमाई। लड़की के लिए हॉस्टल का मतलब हो सकता है उसकी पढ़ाई का जारी रहना। असल में अंत्योदय का यही मतलब है। यह कोई एक स्कीम या प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक सामूहिक कोशिश है ताकि कोई भी समुदाय पीछे ना छूटे, कोई भी नागरिक खुद को भूला हुआ महसूस ना करे और देश के हर कोने तक विकास पहुंचे।
1: India's journey towards becoming a developed nation is not only about economic growth. It is also about inclusion, because the strongest nations are built when every citizen has the opportunity to contribute. And perhaps the most important change is that the communities once viewed as being on the margins are now increasingly becoming central to India's growth story.
0: बिल्कुल, और सफर जारी है, चुनौतियां अभी भी हैं, अभी बहुत काम करना बाकी है, लेकिन दिशा साफ है। कोई देश तब सबसे मजबूती से आगे बढ़ता है जब वह एकजुट होकर आगे बढ़ता है, और यही अंत्योदय का मूल भाव है। एक ऐसी सोच जिसमें तरक्की को इस आधार पर नहीं मापा जाता कि सबसे तेज व्यक्ति कितनी दूर तक जा सकता है, बल्कि इस आधार पर मापा जाता है कि समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति कितनी तरक्की कर सकता है।
1: And as India moves towards Viksit Bharat 2047, that vision is helping shape a future where every citizen has a place, a voice and an opportunity to thrive. A future every Indian can take pride in.
0: और विकसित भारत एट 2047 का संकल्प तभी साकार हो सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक अपनी क्षमता को पहचान सके। उनकी इस आत्मखोज की यात्रा में मैं उन्हें कुछ पंक्तियां याद दिलाना चाहूंगी, तनवीर गजी की हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र, तू ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र, तू तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। और अब ये समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज क्या कुछ खास है।
1: As Prime Minister Narendra Modi visits France this week, much attention is focused on the growing ties between India and France. Yet one of the oldest and most unexpected connections between the two countries may already be sitting in our kitchen jars. The humble Nice biscuit, enjoyed with cups of tea across India, carries with its name a remarkable story of cultural journeys between India and France. It is named after the beautiful Mediterranean city of Nice in southern France. More from our correspondent.
2: Nice is a sundown city on the French Mediterranean coast. Somewhere in the 19th century, British biscuit makers borrowed its name for this coconut-flavored biscuit. The British brought it to India. After independence, Indian biscuit makers made it entirely their own. And over time, quietly and without ceremony, it became part of the furniture of Indian daily life. It is not alone in this quiet French inheritance. The palmier, that flaky caramelized pastry found in the Indian sweet shops and bakeries, takes its name from the French word for palm tree. It arrived without any announcement of its origins. People simply know it as the crunchy, flaky biscuit. It needs no introduction. It needs no translation. France and India have never seemed particularly close geographically, but in the biscuit tins of a billion homes, in the coconut sweetness of a nice biscuit, dunked into a cup of chai, they have

0: been sharing something quietly for nearly a century. A small edible reminder that the world has always been more connected than it appears. This is Shailesh Man for Akashvani News, Nice, France.
1: Listeners, the Central Water and Power Research Station, CWPRS, in Pune is celebrating its 110th Foundation Day. Jaya, you would recall it is a principal central agency to cater to the research and development needs of projects in the fields of water and energy resources development and waterborne transport. Today, CWPRS is one of the foremost organizations in the field of hydraulics and allied research. Let's listen in to a report.
2: The Central Water and Power Research Station, CWPRS, established in 1916 by the then Bombay Presidency as a special irrigation district, today is a leading national hydraulic research institute under the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation. In its early days of formation, this institute played an important role by conducting outstanding research work for the Sukkur Barrage in Sindh, the largest irrigation project in the world from 1927 to 1932. With the dawn of independence and launching of planned development of water resources of the nation, CWPRS became the principal central agency to cater to the research and development needs of hydraulics and allied disciplines for evolving safe and economical designs of hydraulic structures involved in water resources projects, river engineering, power generation and coastal engineering projects. Advisory services are offered to the government within the sphere of its activities by participation in various expert committees. CWPRS campus, situated downstream of Khadakwasla Dam in southwesterly part of Pune, occupies an area of about 450 acres. CWPRS has been recognized as the regional laboratory of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, ESCAP, since 1971. The institution, with multidisciplinary approach in its activities, thus represents unique services available to the country and the ESCAP region. For Parikrama, Manoj क्षीरसागर, पुणे।
3: और श्रोताओं, पुणे से अब आपको आंध्र प्रदेश की ओर लिए चलते हैं, जहां मछली पालन और एक्वा कल्चर सेक्टर को बढ़ावा मिलने वाला है। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से घोषित कई उपायों का मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना और तटीय इलाकों में रहने वाले हजारों परिवारों की आजीविका को मजबूत करना है। अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
4: A series of initiatives announced by both governments pointing to a long-term strategy aimed at increasing seafood exports, improving infrastructure and creating new economic opportunities for coastal communities in Andhra Pradesh. A key highlight is the center's decision to provide 72 crore rupees for the modernization of Kakinada port. The project is expected to strengthen export infrastructure, improve logistics and support the growing seafood industry in the state. The state government has also agreed to allocate land for a regional office of the Union Fisheries Department, which is expected to improve coordination and speed up implementation of fisheries-related schemes. At the state level, Andhra Pradesh plans to develop an integrated aqua corridor connecting Amaravati, Bhimavaram, Kakinada, Vishakhapatnam, Krishnapatnam and Nellur. The proposed corridor will bring together research institutions, technology providers, startups and processing units to improve productivity in the aqua sector. The government has also announced the Andhra Shrimp India Seafood Brand Initiative to increase the global visibility of Indian seafood products. The center is also supporting efforts to expand seafood processing, improve market access and boost exports. With Andhra Pradesh already accounting for a major share of India's shrimp production and seafood exports, the growing center-state partnership is expected to drive investment, generate employment and strengthen the state's role in India's blue economy ambitions. Allu Murli for Parikrama, Akashvani News, Vishakhapatnam.
3: और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। तो सबसे पहले बात ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की, जहां महिला सिंगल सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया।
1: एंड इन मेंस क्रिकेट, द टॉस फॉर द फर्स्ट ओडीआई ऑफ द थ्री मैच सीरीज बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान हैज बीन डिलेड ड्यू टू रेन इन धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। द मैच वॉज अर्लियर शेड्यूल्ड टू बिगिन एट 1:30 PM। स्टार इंडियन बैटर एंड फॉर्मर स्किपर रोहित शर्मा इज एक्सपेक्टेड टू बी इन एक्शन इन टुडेज़ मैच। match. The remaining two matches of the series will be played in Lucknow and Chennai.
3: अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
5: आज हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी नरुथ नाथ का स्मरण कर रहे हैं, जो 13 जून 1930 को शहीद हुए थे। गुजरात के सूरत जिले के नरुथ नाथ ने मई 1930 में धरसाना नामक सत्याग्रह में भाग लिया था।
6: 1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान जब गांधी जी ने धरसाना सॉल्ट वर्क्स पर छापा मारने का निर्णय लिया, तो उन्हें वायसराय लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा और उन्हें अपनी योजना की जानकारी दी। गांधी जी को 4 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया और पूना के निकट हिरासत में रखा गया। हालांकि गांधी जी की योजना के अनुसार धरसाना सत्याग्रह आगे जारी रहा। 76 वर्षीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश अब्बास तैयब जी ने कस्तूरबा गांधी के साथ मार्च का नेतृत्व किया।
5: तैयब जी और कस्तूरबा गांधी दोनों को धरसाना पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया और 3 महीने जेल की सजा दी गई। उनकी गिरफ्तारी के बाद सत्याग्रहियों ने सरोजनी नायडू के नेतृत्व में मार्च जारी रखा।
6: सशस्त्र सैनिकों ने सत्याग्रहियों को स्टील की मूठ वाली लाठियों से पीटा। नरुथनाथ सहित बड़ी संख्या में सत्याग्रही बुरी तरह घायल हुए। चोट की वजह से 13 जून 1930 को नरुथनाथ की मृत्यु हो गई। स्वदेश की माटी के इस साहसी सपूत को हमारा नमन।
5: आज हम स्वतंत्रता सेनानी गणेशी सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। शुरुआत में गणेशी सिंह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में थे, लेकिन उन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान सेना की नौकरी छोड़ दी और विभिन्न स्थानों पर ब्रिटिश प्रतिष्ठानों पर हमलों में शामिल हो गए। उन्होंने अपने साथी सिपाहियों को भी अंग्रेजों पर हमले के लिए प्रेरित किया और अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकने को ललकारा।
6: अंग्रेजों से मोर्चा लेते हुए वे पकड़ लिए गए और उन पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का आरोप लगाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अप्रैल 1858 में बॉम्बे से अंडमान द्वीप भेज दिया गया। कारावास में ही 13 जून 1858 को उनका निधन हो गया। इस महान शहीद को हमारा शत शत नमन।
5: 13 जून 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से टोक्यो पहुंचे और उपमहाद्वीप से ब्रिटिश शासन समाप्त करने के अपने लक्ष्य का उद्घोष किया। उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेश के पूर्वी क्षेत्रों पर आक्रमण करने की योजना बनाई और इसके लिए 2 जुलाई को सिंगापुर गए।
6: अक्टूबर 1943 में सिंगापुर के प्रसिद्ध कैथे सिनेमा हॉल में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार के गठन की औपचारिक घोषणा कर दी। नेताजी ने उद्घोष किया, संघर्ष की शुरुआत और संचालन अस्थायी सरकार का दायित्व होगा, जिससे भारत की धरती से ब्रिटिश और उनके सहयोगियों का निष्कासन सुनिश्चित होगा। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति का आह्वान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी के योद्धाओं ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी।
3: आज का दिन भारतीय सैन्य इतिहास में शौर्य की उस कहानी का गवाह है जिसने 1999 के करगिल युद्ध का पूरा रुख पलट दिया था। आज तोलोलिंग फतह का दिन है, लेकिन इस फतह की कीमत देश ने अपने 2 जाबाज बेटों को खोकर चुकाई थी। आज देश मेजर मनोज तलवार और महावीर चक्र विजेता मेजर विवेक गुप्ता के सर्वोच्च बलिदान को याद कर रहा है।
1: Today is the death anniversary of freedom fighter Nanak Bhil. Hailing from the Bundi district in Rajasthan, he played a pivotal role in Indian independence movement in Bundi during British colonial rule in India.
3: जब भी देशप्रेम की बात होती है तो हमारे जहन में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का चेहरा उभर आता है, या फिर इन सभी शहीदों की बात करें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में इन शहीदों के जज्बे को अपनी कलम से अमर कर देने वाला जादूगर कौन था? वो महान शख्सियत थे प्रेम धवन। आज उनकी जयंती है। प्रेम धवन सिर्फ एक गीतकार नहीं, बल्कि आजादी के लड़ाई में शामिल एक सच्चे देशभक्ति भी थे। देशभक्त भी थे। उनकी आवाज रोंगटे खड़े कर देने वाली है।

प्रेम धवन की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे जितने कमाल के गीतकार थे उतने ही बेहतरीन संगीतकार और कोरियोग्राफर भी थे। और दिलचस्प बात यह है कि प्रेम धवन ने जहां एक तरफ जोशीले देशभक्ति गीत लिखे, वहीं दूसरी तरफ चंदा मामा दूर के जैसी कोमल और प्यारी लोरी भी रची, जो उनकी लेखनी की विविधता को दर्शाती है। यह गीत दशकों से भारत में हर घर का हिस्सा रहा है और आज भी बच्चों को सुलाने के लिए सबसे प्रसिद्ध लोरी मानी जाती है। इसके अलावा फिल्म उपकार का वो सदाबहार गाना, कस्मे वादे प्यार वफा सब, भला कौन भूल सकता है।

0: Listeners, he was the winner of the National Film Award for Best Lyrics in 1971 and was honored by the Government of India in 1970 with the Padma Shri.
1: So, इन्हें हम याद कर रहे हैं उनकी जयंती पे, तो इसी में 1960 के फिल्म हम हिंदुस्तानी का बेहद लोकप्रिय गीत सुनते हैं, जिसके बोल आशा और पुरानी बातों को भूलकर भविष्य की ओर बढ़ने के संकल्प को दर्शाते हैं। सुनते हैं छोड़ो कल की बातें।

0: Listeners, today is the birthday of Arjuna Awardee Archer Deepika Kumari. Born in 1994 on today's date, she is a four-time Olympian and two-time World Championships silver medalist. She is one of the most decorated Indian archers and the first Indian archer to rise to the top of the world rankings, reaching the world number one ranking in 2012. She has been honored with the Arjuna Award in 2012 and the Padma Shri in 2016 for her contribution to Indian sports. So, happy birthday once again.
1: आज ही हिंदी के विख्यात उपन्यासकार, नाटककार, समीक्षक और पत्रकार मुद्रा राक्षस साहब की भी पुण्यतिथि है। 21 जून 1933 को लखनऊ के पास जन्मे मुद्रा राक्षस जी का असल नाम सुभाष चंद्र गुप्ता था, लेकिन साहित्य की दुनिया उन्हें उनके उपनाम मुद्रा राक्षस से ही जानती है। वे सिर्फ एक लेखक नहीं थे, बल्कि शोषितों और वंचितों की बुलंद आवाज थे। उनकी लेखनी में एक अद्भुत धार थी। वे मानते थे कि साहित्य का काम सिर्फ मनोरंजन करना नहीं, बल्कि समाज को जगाना और उसे आईना दिखाना भी है। उनके इसी अनूठे योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित कई बड़े सम्मानों से नवाजा गया।
0: Listeners, today is the birth anniversary of William Butler Yeats, a renowned Irish poet, writer and literary critic who was one of the foremost figures of 20th century literature. Widely known for many of his works, including the most relatable poem, An Irish Airman Foresees His Death, he was a driving force behind the Irish literary revival. He was awarded the Nobel Prize in Literature in 1923.
1: Now let's talk about kala. वो नहीं सिर्फ जो दीवारों पर टंगी रहे, कला वो है जो बेजान पत्थरों और धातुओं में भी जीवन का एहसास करा दे। ऐसे ही थे पद्मश्री से सम्मानित महान मूर्तिकार विनायक पांडुरंग करमकर। उनकी कला की सबसे बड़ी खासियत थी सजीवता। जब आप उनकी बनाई मूर्तियां देखेंगे तो ऐसा लगेगा मानो वो अब भी बोल पड़ेंगी। आज ही के दिन साल 1967 में देश ने अपने इस जादुई कलाकार को खोया था, जिन्होंने अपनी मूर्तिकला से देश का मस्तक पूरी दुनिया में ऊंचा किया था। आज ही हिंदी साहित्य की एक महान लेखिका कवयित्री कीर्ति चौधरी की भी पुण्यतिथि है। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि उन्होंने महादेवी वर्मा के बाद हिंदी कविता में आए खालीपन को अपनी मौलिकता से भरा। उनकी कविताओं में गांव की सौंधी खुशबू भी थी और शहर की आपाधापी का यथार्थ भी था। उनकी एक बेहद खूबसूरत कविता की कुछ पंक्तियां हैं। बरसते हैं मेघ झरझर, भीगती है धरा उड़ती गंध, चाहता मन छोड़ दो निर्बंध तन को, यहीं भीगे भीग जाए दे।

का हर रंध्र। और श्रोताओं, अब समय हो चला है परिक्रमा के इस अंक को यहीं समाप्त करने का, तो अनुमति दीजिए जया भारती और प्रशांत कुमार सिन्हा को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का। अगर आप हमारा कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन कर सकते हैं newsonair.gov.in पर। इसके साथ ही अनुमति दीजिए, नमस्कार, नमस्कार।

मीडियम वेव 305.81 मीटर्स अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5 बजे हैं, सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी टिकरा, खड़गवां, रामेश्वरपुर, जाम दोहर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये मेंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, कोटराही, भगवानपुर, नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये सकालो, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, खलीबा, पड़ौली, किशुनपुर, जमीरा, डांडपारा, दांतीढाब, घटगांव, बरवाली, कंडराजा, बरिमा, पेंट, घोड़ा घाट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ा माचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, चट्टानपारा, साजापानी, कुदरा झरिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, कापू और बाकारुमा में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये लोटान, पुरुंगा, बनहर, सिंघीछाप, बेहरामार, इंचपारा, कंचीरा, कोयलार, सागरपुर, सस्कोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के कुदमुरा और करतला में हाथियों की कुल संख्या 18 है। ये चचिया, बैगामार, तौलीपाली, गेराव, बताती, कोरकोमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलारगढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, आमाटिकरा, नवापारा, मड़ई, कोदवारी, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 61 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल, राठरोड, झिंगोल, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं।

0: तो बाजार वनमंडल की बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये पकरी तालदादर, हरदी, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, तेंदू चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट, आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। 5:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। आइए आपको पहले बता दें इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। स्पोर्ट्स स्कैन, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:30 पर। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में 10:00 आप सुन सकते हैं यूएस प्रसाद का कर्नाटक सैक्सोफोन वादन। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। युवावाणी में अभी 5:10 पर सुनेगा अपन गोट, विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। साथ ही सुनेगा क्रम आप मन की चिट्ठी और माटी के गीत। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम अष्टलक्ष्मी पूर्वोत्तर राज्य सुनेगा 9:25 पर। 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संगीत, कलाकार होंगे गोरीलाल बर्मन और साथी। और इसी कार्यक्रम में 8:15 पर कलाकार होंगे सफरी मरकाम और साथी। चौपाल शाम 7:21 पर, इसमें आज आप सुनेंगे आज की बात, विषय होगा बरसात के पहले पशुधन के आवास प्रबंधन। किसानवाणी में होगी आज की सलाह, बीज उपचार का महत्व एवं विधियां, इस विषय पर जानकारी देंगी दीपमाला लकरा। विषय वस्तु विशेषज्ञ पौध रोग, कृषि विज्ञान केंद्र भाटापारा। चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं शाम 7:00, 8:00 और 9:15 पर। ये थी जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

और आइए अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच एचबिस्टन बर्मिंघम में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ टू कमेंट्री सुनेगा कल शाम 6:30 से। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। नमस्कार रायपुर, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं कल सुबह 7:05 पर। किसलय कल सुबह 8:30 पर। इसमें बच्चों की डायरी में सुनेगा रक्तदान महादान। क्रम नव अंकुर में आप सुनेंगे इसरो के प्रतिष्ठित युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युवका के लिए चयनित अभिषेक खरे से धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी की बात।

खेल संसार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 9 बजे। इसमें सुनेगा साप्ताहिक खेल समीक्षा। छत्तीसगढ़ तैराकी संघ के रायपुर के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मनीष कुमार शुक्ला से ली गई भेंटवार्ता आप सुनेंगे। भेंटकर्ता और प्रस्तुतकर्ता होंगे रमा शंकर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। 5:10 हुए हैं। युवा श्रोता अपना कार्यक्रम सुने, युवा वाणी।

0: और चमकत चंदैनी जैसे मनखे अपन पहचान बनाते।
1: नहीं देखे रंग रूप कभू, हुनर भरे हौसला बड़ मान देवा थे।
0: आज संजा बेरा युवानी लधर के फिर आगे हन आपके दुआरी मा, त झोंका अपन मयारु संगी थनेश्वरी बघेल,
1: अपन दुलरवा संगी सुमित तिवारी के डहल ले मया भरे
0: राम राम, राम, राम जय जोहार।
1: भी थनेश्वरी भारी आज तबले मुझ करत आवास, ये बता तेहा अपन पिताजी असन दिखते कि अपन महतारी असन?
0: तै कैसे आते भार शुरू हो गए सुमित, कम से कम हाल चालत पूछ लेते।
1: ले वो तो खैर पूछ बेच करूँ, तोर हार चाल तो हमेशा बने जी थे। फिर मैं जिन पूछे तेला बता भाई।
0: मैं हाँ अपन पिताजी के मुहरन महावा सुमित, ले तही देख ये तस्वीर ला।
1: डिट्टो, एकदम डिट्टो दिखा था बस अपन पिताजी बरोबर।
0: ये तो है संगी, और तहु देखे हो भी कि हर घर में थोड़ा एक जन ना एक जन अपन पिताजी या फिर माता जी के मुहरन में जरूर दिखते।
1: वो तो है भाई, अब जैसे जैसे दाई दादा तैसे तैसे लेखा थोड़ी कहीं, और जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे फेंका।
0: हाँ बिल्कुल
1: भैया, तो हमारे जुन्ना हाना हरे।
0: हाँ
1: फिर थनेश्वरी, घर में कोनो हा थोकिन ओगर रहा है या थोकिन सांवला रहा है, तो हम सबो जन हा नानपन में भारी आनी पानी के
0: ना भरन ना। बिल्कुल, फिर ये बात ला कभू मन में नहीं बांधत रहे सुमित भाई, अभी जैसे विधाता हा बनाए हवे वैसने तो रेला लागी।
1: बिल्कुल भाई,
0: वो बदल तो नहीं सकन ना,
1: वह नानपन के खेल बरोबर ही।
0: हाँ,
1: जिन हा नानपन के सुरता संग गवा गए।
0: बिल्कुल
1: हाँ, सिरतोन कहा थे। फिर कई घाव ये देखे मिलते कि जग में रंग रूप के स्थिति लोगन मन के विचार आने रही थे, है ना, उमल्ला असहजता के आभास करा दे थे।
0: हाँ, तेकरे स्थिति समाज में लोगन मन के बीच जागरूकता बताए बर हर बच्चर 13 जून के अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाए जाते
1: भाई। इला समाज में जेन इला मनाए के उद्देश्य का जानता? सॉरी, एक उद्देश्य हवे कि लोगन मन के बीच मना एल्बिनिज्म ला लेके जो भी मिथक भ्रांति हवे, जो भी मतलब पता नहीं है जेकर सही जानकारी है, है ना, ओला शिक्षा रोजगार और सामाजिक जीवन में जिन भी भेदभाव आते ना तेला कम करे के है प्रयास हरे, और संगे संग आत्मसम्मान के भावना देवे के प्रयास हरे।
0: बिल्कुल, और संगे हो यह जान लेते हैं कि ये एल्बिनिज्म का हरे, यह कोनो बीमारी नो है, बल्कि एक जैविक स्थिति आए जेमे मनखे के शरीर में मेलानिन नामक वर्णक के कमी लहुते। ये वर्णक हमार त्वचा के त्वचा चूंदी और आंखी के रंग पर जिम्मेदार होते।
1: बिल्कुल भाई, जैसे हम सब जन जानता चे सगवारी हो कि सूरज ले जिन तेज किरण निकलते, माने जिला हमन यूवी किरण की थन, है ना, तेन हा हमार सुरक्षा बड़ बड़ बड़का कारण हो जाते हैं हमार असुरक्षा बर, है ना, आंखी के रोशनी ले के ऊपर प्रभाव पड़ते, संगे संग त्वचा और हमार चूंदी में तको गहरा प्रभाव पड़ते जेखर से ओखर रंग फीका हो जाते।
0: बिल्कुल, और संगी हो हम अक्सर बहुत सुनथन और कभो कभो देखथन घलो कि रंग रूप ला लेके बहुत से ऐसे व्यक्तित्व होते जेकर विचार एला लेके बहुत आने होते, जेकर स्थिति भेदभाव के शिकार हो जाते।
1: सिरतोन संगी हो, बहुत अकन ऐसे आने आने देश आवे जैसे कि अफ्रीका और बहुत अकन, जी हाँ, एल्बिनो मन के ऊपर ना कतकोन प्रकार के भेदभाव होते और हिंसा के मामला ना सरलग देखे जा रहे थे, जेना बने बात नो है।
0: बने बात नो है, तेकरे स्थिति संयुक्त राष्ट्र हा एला अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहचान के सुरक्षा और मानवाधिकार बर अभियान चलाए के जरूरत ला बताई से, और बछर 2014 में अंतर्राष्ट्रीय

0: एंटी एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस घोषित करी थी।
1: देखे सती संगी हो, जागरूकता बढ़ाए खातिर सामाजिक संस्था स्कूल कॉलेज जिसे आने जगह में ना सेमिनार घलो आयोजित होते ना, और जांच शिविर लगाए जाते और संगे संग संस्कृति कार्यक्रम के माध्यम ले घलो ना ये संदेश फैला के जागरूक करते कि सबो मनखे हा एक समान होते।
0: बिल्कुल, संगी हो, रंगहीनता कोनो रोग न है, यह सिर्फ जीन में परिवर्तन आए। हमला भेदभाव और डर के बजाय समझ और समर्थन के भाव बगराना चाहिए। समावेशन और समान अवसर मिलना सबो के अधिकार हवे।
1: संगी हो, ध्यान में हमला ये रखना चाहिए कि कोनो ला कोनो इसने मजाके में तको हमला ना कोनो ला अब शब्द नहीं कहना चाहिए,
0: नहीं कहना चाहिए
1: नहीं। भाई कब काला कहा ठेस पहुंच जाए।
0: हाँ,
1: और यह बने बात तक
0: बने बात नो है, भले ननपन में वो बात ला कहात रहे ना, वो बात अलग है। फिर इखले सामाजिक मानसिक भावना ठेस पहुंचते और असहजता के हगलो शिकार हो जाते।
1: बिल्कुल भाई, ज्यादा ले ज्यादा प्रयास करना चाहिए संगी हो कि हमन है ना दूसर के सहयोग करन, उनला संग में समान अवसर दमान स्थान मिला और संगे संग हम सब जन मिल के प्रयास करन कि सबके उज्जवल विकास हो सके।
0: बिल्कुल, और यही बात के चेत राखन कि मनखे के पहचान ओकर रंग रूप ले नहीं, भलुक ओकर अपन कला प्रतिभा और ओकर व्यक्तित्व ला निखार थे।
1: तभी तो हमारे सियान मन के है संगी हो कि मनखे मनखे एक समान और आवा सब मिल के करबो सुघर काम।

0: संगवारी अभी आप मन सुनत रहिबे सुघर अकन गीत ला जेलापन सुर में सजाय रही से निर्मला बेलचंदन और साथी मन
1: अभी गीत ला सुने भर चाह रही समर ये संगवारी मन डोंगर गांव ले राष्ट्रपाल गजभिये राधिका बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये पिपरियाले कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम गुप्ता बिलाईगढ़ ले रोशनलाल देवांगन कौशल्या हेमलता डिम्पल देवांगन बेमितरा मुलमुला ले नेतराम साहू मनीराम लक्ष्मी बिंदु डिम्पल रमेश्वर साहू इंचे चले संगवारी मन हावे सेखन राम अमरीका बाई रोशनी चहक साहू चूड़ी लाइन भाटापारा ले अब्दुल मजीद कुरैसी रेहाना बेगम मोहम्मद साजिद कोरदा लवन ले भूदर प्रसाद वर्मा घनश्याम गुलसन शिव कुमारी हेमलता वेद किरण वर्मा मना।
2: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
3: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
3: चलो
4: कहाँ
3: एडमिशन कराने,
5: खाता हुआ एक्टिव।
6: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
8: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
9: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
10: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
9: आज ही ऑपरेशन आज ही छुट्टी।
10: 47 सालों से निरंतर सेवा में
9: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय श्याम नगर गुरुद्वारा रोड तेली बांधा रायपुर।
0: थनेश्वरी जब तुला तोर संगवारी मन के सुरता आते का कर
1: का करो सुमित, आजकल तो सबो सुविधा आ गई है, फोन करके उठा लेता हूँ भाई।
0: और फोन ही उठावे तो
1: आजकल मैसेज के जमाना है भाई।
0: ठीक और उसने मैसेज तो हमरो तरी आते अब संगवारी मन के फोन में तो हम महीना में बात करबे करथन।
1: हाँ।
0: फिर हर हफ्ता हमारा गुठिया पर संगवारी मन के नया भरे हमारे तिर ना पाती आ जाते। हाँ बोल का कहते।
1: हाँ मैं कहा रही हूँ कि पाती में जो उकर मन के भाव रहते ओला का है हमन जब तक हमार कर नहीं पहुंचे तब तक हमन नहीं जान पान। और मैं कहा है सोशल मीडिया में हमन जल्दी से लिख देता और एक सेकंड भर लगते पहुंच जाते घूम दिख जाते भाई।
0: वो कहते ना थनेश्वरी सब्र के फल मीठा होते कि बस एस ने आए भाई। हफ्ता के जतका चिट्ठी है जब हमन एक दिन हमारे शनिचर के जब हमारे हाथ में आते ना तेन ओकर खुशी का कहन मन है ना पूरा गदगदा जाते।
1: मतलब हमन हा अगोरत रथन की भाई संगवारी मन हा कौन जनी का लिखे हुई हमूला उत्की अगोरा रिथे जतका संगवारी मन हा गोरा करते।
0: तमोर हाथ में ना प्यूरी पाती और संगे संग ना ये सफेद पाती माने ईमेल तको आगे हवे।
1: हाँ।
0: है ना तो चल
1: तब मैं हाँ बताता हूँ आज शुरू करथन
0: है ना। तो चलो आज संग मिल के शुरू करथन थनेश्वरी क्रम आप मन की चिट्ठी।

0: थनेश्वरी वही भारी हड़बड़ हड़बड़ करत हसते हैं
1: है ना? कैसे करबे संगवारी, संगवारी मन के पाती है जब तीर में पहुंचे रहते ना त कौन जनी कौन संगी काय लिखे हुई कि ना मन
0: समझा था
1: समझावत रही थे
0: मोला ऐसे लगा थे त मन पढ़ा नहीं दस की के है ना
1: मैं पढूं भाई
0: ले ले तोरे मन के सहिता पूरा हो जाए तही पढ़ रहा संगवारी मन का लिखे थे
1: हां त भाई संगवारी मन हां 6 जून के कार्यक्रम बर भेजे हावे और संगवारी मन हावे करी भदर ले पुरुषोत्तम निर्मलकर श्रद्धा निर्मलकर मन
0: और का लिखे संगवारी मन है
1: संगवारी मन हा लिखे हावे कि 6 जून के संचौती बेरा युवानी ला लेके आयरीन हमर दो संगी तनु साहू और ऋषभ देव साहू संगी मन अपन गोड बात मा शिक्षा ले जुड़े सार गर्वित बात ला बताई है जेहा हमन ला सीख के लागी से शिक्षा के जो जलावा अंधियार ला दुरियावा दूर भगावा अपन रुचि के राह चुनाव सफलता के मंजिल पावा सोच विचार के निर्णय लेवा अपन सपना ला सच बनावा ज्ञान के संग आगू बढ़ाओ और नवा इतिहास बनावा शिक्षा के निर्णय ला खुद लेना चाहिए संगी मन इसे कहा थे जेमे आत्मबल आत्मविश्वास तको मिलते और बाढ़ते संग माँ वो इंसान अपन मंजिल ला तको पा जाते बड़े ज्ञानवान मनखे मन तको राय विचार लेना चाहिए ऐसे कहा थे और संगवारी में लिखा हुआ है क्रम आप मन की चिट्ठी में श्रोता संगी मन के पठोए पाती और ईमेल ला समुचित स्थान दीन हावे हमला बने लागी इस क्रम माटी की गीत में रिकिम रिकिम के छत्तीसगढ़ी गीत सुने हन मन हा हरियागे अतिक सुंदर सफल प्रस्तुति बर तन्नु साहू और ऋषभ देव साहू ला अंतस ले धन्यवाद कहा थे और यही दिन के कार्यक्रम पर बधाई पाती पठो है संगवारी मन हावे धरसीवा ले छेदुलाल यादव सीता अर्चना यादव मन हा दुर्गा पारा संतोषी नगर रायपुर ले छन्नूलाल यादव पुष्पलता परसा टोला अंबागढ़ चौकी ले ओम प्रकाश मसिया सिलोचनी मसिया लोरमी ग्राम चचेड़ी ले कमल कांत मरावी प्रमिला मरावी मन
0: सिंघियो शिक्षा ना हमारे जिंदगी के अमूलांग है भाई पढ़िए पढ़े लिखे ले मानुख मन के जिंदगी में नवाचार बाढ़ जाते है ना और संगे संग सफलता के नवा चिन्ह तक बनाए जाते थे तो एक संग ना सुघर यही सुघर विषय संग आप मंत्र वो दिन युवाणी ला सुने हो और आप मन ला बने लगी ऐसे आपके पाती है बतावा थे भाई आपके मम ही हमार तक पहुंचा था भाई है ना तो ये बधाई ला हम अन्हा एक कार्यक्रम के माध्यम ले हमार संगी ऋषभ देव साहू और तन्नु साहू तिरा अमृत हवन संगवारी हो है ना आप मन इसने सुघर सुघर पाती ला पठवात रहू और पाती पठोए हो तेकर ए पाती बार आप मला गाड़ा गाड़ा धन्यवाद हावे अब अगला पाती कहाँ है के भाई
1: बतावत हो संगवारी मन हावे गौरेला पिंडरा ले गौरेला पिंडरा रोड ले चंदुलाल सिंह रावल नारायणी संगवारी मन हा संगवारी मन लिखे हावे कि हफ्ता मा 3 दिन प्रसारित हुआ छत्तीसगढ़ी युवानी कार्यक्रम हमर बर बहुते उपयोगी और लाभदायक और मनोरंजन ले भरपूर होते युवानी सचमुच में युवा मन ला अपन प्रतिभा दिखाए के और अपन विचार ला व्यक्त करे के समाज ले जुड़े बर एक बहुत मजबूत मंच प्रदान करते ये कार्यक्रम सिर्फ मनोरंजन नहीं करे बल्कि युवा मन ला सकारात्मक सोच आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य के निर्माण बर प्रेरित गलो करते युवानी कार्यक्रम ले जुड़े सबो जुड़े प्रस्तुतकर्ता निर्माता तकनीकी सहयोगी और आकाशवाणी परिवार ला ये उत्कृष्ट प्रयास बर हमर हृदय ले बहुत बहुत धन्यवाद है बधाई और शुभकामना है हमर आशा ये है कि कार्यक्रम ऐसने युवा मन के मार्गदर्शन करत रही और ज्ञान और मनोरंजन के ये सुघर सिलसिला लगातार जारी रही संगवारी मन ए दिन के कार्यक्रम बर यहू संगवारी मन पाती पठो हावे सहसपुर लोरमी ले छोटकू साहू मोहित राम लोकेश राम किशन दुलीचंद सतीश सतीबाई साहू बाजार वार्ड महासमुंद भीष्मदास नर्मदा कोयलारी कवर्धा ले कैलाश चंद्राकर मुकुंद चंद्राकर सलोनी ले संगवारी मनहावे देवचरण साहू हेमा साहू कोल्हापुरी ले सूरजबान साहू कमलाबाई सलोनी ले पुरानी क्राम साहू सीताबाई साहू मड़ौदा ले पारकदास साहू सोनू साहू पिपरिया ले कमलकांत गुप्ता दीपा गुप्ता खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ ले मोतीलाल भिमटे सुशीला भिमटे मनहा
0: बड़ सुघर विचार लिखे हो संगवारी हो आप मन अपन पाती माँ जिला पढ़ के बहुत सुंदर आनंद आवत है भाई संगी हो ये कार्यक्रम जेन है ना तेन आप मन के कार्यक्रम है जिसे मितानी बार दोनों संगी के संग्रह रहला पड़ते ना वैसे आप वह मन जब रेडियो की तरंग माँ एक संग जुड़ता ना तो खर अलग आनंद रहते संगी है ना और जब आप मन हमार कार्यक्रम कि था कि सुघर लगा थे की के तो हमला ऐसे लगते कि हमारा मेहनत था ना सार्थक हो गया हवे ऐसे अपन मया दुलार जो है युवाणी ला देवत रहो संगी हो और सुना रहो अपन आप मन के अपन मन पसंदा युवाणी ला आपके बधाई ला स्वीकार था हमन हा और संगे संग आप मला बधाई देवत हन कि आप हमन अतका सुघर श्रोता हराओ जिन हमार कत का ध्यान रखता अपन मया दया इसने बनाए रखू त थनेश्वरी अब अगला पाती तोर हाथ में हवाए तेला बता दर भाई झटकुन
1: त मोर हाथ में हवाए हथोकन शिकायती लगत है सुमित
0: या शिकायती है तो बने बात है काबर करू करेला है हमर सेहज बर बने रहते भाई
1: बिल्कुल बने रहते त भाई चलो बताथन संगवारी मन हवाए चिरमिरी कुरासिया कालेरी ले इंद्रवान सिंह अनुभव ऋषभ राम सहोदर नारायण प्रसाद लहरे मन संगवारी मन लिखे हवे क्रम सवाल जवाब 233 में हमर ईमेल के ईमेल शामिल नहीं करेगी से आप मन के गलती के चलत हमर ईमेल के शामिल नहीं करेगी से कहा थे हमर ईमेल शामिल नहीं करे हो कहा थे बाकी हमन ईमेल हरदम शामिल करेगी से जबकि हमन हाँ कोड घलो सही लिखथन पत्र घलो सही लिखथन एकर बाद घला हमर ईमेल जानबूझ के नजरअंदाज करेगी है ऐसे कहा थे आपन से निवेदन है कहा थे और क्रम सवाल जवाब अंक में 234 बार उत्तर दे हो दे के बाद जो श्रोता मन के ईमेल आप मन हड़बड़ी के चलत ईमेल शामिल नहीं करे हो समय दे के आप मन हा पिछला सवाल जवाब 232 और 233 के नाव बताए बर कृपा करहू ऐसे कहा थे हमन अतिक मेहनत करके ईमेल भेजथन भेजे के बाद घला अगर हमारे ईमेल शामिल नहीं हुए तब हमला बहुत दुख होते ऐसे कहा थे
0: सिंगी हो आपके पाती है हमारे तिरा पहुंची इस और पढ़ के हमला थोड़कीन खेद हुआ थे कि आपके पाती महा शामिल नहीं हो पैसा वैकी के आपके रिश्ला तो हमन समझथन संगी हो फिर कई हो कहा होते ना तकनीकी के कारण ना पाती है देर ले पहुंचते या फिर आगुमा नहीं आ पावे फिर कोनो नहीं आपके पाती है आए है तो बिल्कुल हम शामिल करे कोशिश करबो फिर आपके पाती के हमारे बड़ बड़ सम्मान हवे और जिन समस्या के आगू आप मन बतावत हवा वो समस्या हमन आगुमा विशेष रूप से ध्यान रखबो कि यह दोबारा ना हुए अपन हमारे जुन्ना श्रोता हर रिश्ला थोकन त्याग देव आगू बने पाती आही आपके हमला इसे विश्वास हवे आप सुघर अकन पाती पठोए हो तेखर बर गाड़ा गाड़ा धन्यवाद हवे तो थनेश्वरी और तो हाथ में मोर पाती हवे फिर मैं कहा था कि संगी मन के पाती तो सरलग पढ़बेज करबो फिर संग में चल सुन थने सुघर अकन गीत ला

0: संगवारी हो, अभी आप मन सुनाते रहे आप मन के सुघर अखन मन पसंद गीत ला जेकला अपन स्वर में सजाए रही से मणिराम साहू और अखिलेश साहू और संगी मन हा
1: गीत ला सुने बर चाहरीन हमार ये संगवारी मन हा रिंगनी छत्तीसगढ़ ले दिनेश वर्मा करुणा वर्मा धवलपुर गरियाबंद ले गैनलाल मिश्रा धनंजय मिश्रा शीतलानगर दुर्गले शिव चंद्राकर भगवान चंद्राकर मगरलोडले श्रीचंद यादव भारती कशेश चांदनी सनातन यादव नर्मदा धाम सुरसुली ले कैलाश यादव सुरेश टिकेंद्र योगेश यादव मन हा
0: थनेश्वरी भाई वो पाती तोर हाथ में हवा इसे तो है बता रहे है ना तो भाई सूर्याडर कौन संगवारी है अपन मयक पातिल भाई भेजे तेला
1: बिल्कुल तो संगवारी मन हवा सुमित लुकाऊ पाली छतवन ले पुनीत राम सूर्यवंशी निर्मला सिंह सूर्यवंशी मन हा
0: संगवारी मन का लिखे है भाई
1: संगवारी मन लिखे हवे यू वाणी के कंपेयर संगवारी मल्ला और सुनैया जम्मो मयारू श्रोता संगी मल्ला हमर डहर ले राम राम जय जोहार
0: हमरो डहले आप मल्ला बहुत बहुत जय जोहार है संगी
1: तो संगवारी में लिखा हवे 9 जून दिन मंगलवार के संजौती बेरा युवानी के बगेला लेके आए रही नीलेश साहू और दुर्गा साहू ये दिन के युवानी की शुरुआत कोयली के गुरतुर बोली ले और अपन गोठ मा गाँव के बारे में सुग्गर गोठ ला गोठियाइन है ये गोठ ला सुन के हमरो मन हा गाँव के बारे में दू लाइन कहा थे ऐसे कहा थे
0: माने कविता के आरोते हैं देवावत हंस
1: बिल्कुल बिल्कुल और संगवारी में बड़ सुघर ढंग ले लिखे आवे सुमित
0: तू ही सुघर ढंग ले तू पढ़ डर
1: हाँ बिल्कुल संगवारी में लिखे है ऐसन सुघर है गांव आमा अमली बर पीपर के छाव जिहा हावे मया प्रेम के छाव खपरा छानी के घर द्वार लिपे पोते सुघर गली खोर गिल्ली डंडा भौरा बाटी छुनुर छुनुर बाजे नोनी के सांटी घरों घर कुआं बावली बारी बकरी जिहा मिले साग भाजी तरकारी शीतला दाई महामाई ठाकुर देव सब सब जन मिलके पूजे सहारा देव संझौती के बेरा गुड़ी चौरा मा डेरा जिहा गुंजे रामायण के ज्ञान धारा ऐसन सुघर है गांव ऐसन सुघर है गांव
0: बड़ सुघर भाई
1: और संगवारी मन आगू लिखत है आगू औ ये दिन सुनेन सवाल जवाब 233 के जवाब संग मा और अंक 234 बर सवाल लिखे और गुरतुर गुरतुर माटी के गीत सुने हन जे हमला मोहडरी ये दिन के सफल प्रस्तुति बर युवानी परिवार औ दुर्गा साहू और नीलेश साहू संग जम्मो संगवारी मल्ला गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हन ऐसे कहा थे और संगवारी मन ए दिन के कार्यक्रम बर बधाई पाती भेजे हावे देवर बीजा बेरला ले दिनेश देवांगन सृजन देवांगन मही दही साजा ले हेमलता साहू देव साहू कोहका भेलई ले उत्तम सिंह जंगेल मोरस अनिल जंगेल भड़गा कोदवा गोड़ान ले श्याम सिंह मरावी राजकुमारी मरावी कुई ग्राम भंगी टोलले ननकाराम धुर्वे जामुनबाई धुर्वे पोटिया कला दुर्गले संजय साहू सुजाता साहू मना
0: संगी हो गांव के सुरता हा गांव को ती हमला ना तीरे बर धले थे भाई गली खोर तरिया खेत खार अपन को ती ना बुलाए बर धले थे आपके कविता हा हमला बड़ सुघर लगी सब है महुला अब मोर गाँव जाके मन करे थे संगी हो आपके पातीला पढ़ के अंता सा हम रम गे और आपला ये दिन के काय सबो कार्यक्रम बने लगी ऐसे आपके पाती है बतावा था वह आपके बधाई ला हम ये कार्यक्रम के माध्यम ले दुर्गा साहू और नीले साहू तीरा अमरत हावन ऐसने सुघर सुघर अपन माया पाके पाती हमार तीरा पठोवत रहू
1: औ संगवारी मन हा ये दिन के कार्यक्रम पर औ पाती भेजे हावे सुमित
0: कौन हरे भाई
1: रूपा पाली बसना ले हीरालाल जगत चंद्रिका जगत मन हा औ संगवारी मन

0: हाँ लिखा हवे
1: हाँ
0: 9 जून दिन रही से मंगलवार ए दिन के युवानी ल धर के आईने हमर रेडियो संगवारी दुर्गा साहू नीलेश साहू ए दिन अपन गोठ मा कोयली के मीठ बोली ले गांव के बारे मा गोठियाइन जेला सुन के हमू मन गांव के बारे मा कुछ कहा था नहीं से कहा थे
1: बड़ सुघर भी भारी गांव ए गांव के पूरा पाती आए लगा था
0: बिल्कुल भाई और संगवारी मन हा बहुत सुघर ढंग ले लिखे आवे सुमित
1: माने कविता
0: हाँ
1: वाह भाई आज तो कविता दिन हो गए लगा
0: बिल्कुल भाई अब संगवारी मन अपन गाँव के बारे में अतका सुघर वर्णन करे हावे
1: संगी
0: मन हा अपन कविता के माध्यम से लिखे हावे चारों कोती दिखे हरियर हरियर खेत मा बूता करत दिखे बनिहार कोयली के बोली लगे गुरतुर गुरतुर धान के बाली ले लहरावत है खेत खार खपरा छानी के बने हे घर द्वार गोबर ले लिपाए सुघर गली खोर खेलाए बांटी भावरा नदी पहाड़ मनावाए हरेली तीजा पोरा तिहार सुआ कर्मा ददरिया पंथी के सुर गौरी गौरा और राउत के दोहा पार संझौती के बेरा गुड़ी चौरा मडेरा बहे रामायण गीता के अमृत धार गंगा जल गजामोंग महाप्रसाद असन नता गोता मिलते इहां बड़ सुघर फूलदाई फूल ददा के सुघर छाँव ऐसन सुघर हे गांव ऐसन सुघर हे गांव ए दिन गुरतुर गुरतुर माटी के गीत सुने हैं जिन्हा हमर मल्ला मोडरिस कहा थे भाई तय का कहना चाहबे ये कविता सुन के
1: बिल्कुल भाई कविता के माध्यम ने महू संगवारी मन तिरना गुठिया हूँ कहा
0: त ए दिन के कार्यक्रम पर हमर यहू संगी मन इसने पाती भेजा सुमित कोका भेलई ले उत्तम सिंह जंगेल मोरस जंगेल रानी गांव नगरी ले संगवारी मन हावे खिलेश कुमार साहू चित्रेखा साहू लुकाऊ पाली छतवन ले नीतू जीतू रिया मन हा और संगवारी मन हेवे धमधा ग्राम सुखरी कला ले अमित जंगेल शकुन जंगेल
1: संगी हो मुरमन लागे थे वो बेरा मा मुरमन लागे रिथे वो बेरा मा जिहां जुरे रहूं अपन माटी के संग रद्दाला जोहत बैठे रिथों कि कब सनावम ओ माटी के रंग आपो मन के बड़ सुघर हमला कविता लगी संगी और पढ़ के मोर डहाले कविता निकले धलीस है ना और थनेश्वरी तो मोर डहार देखते छवे
0: हाँ मैं देखा था कि तोर कविता का है मैं ये सुनना चाहता हूँ सुमित
1: तो संगी हो आप मन के ऐसे माया भरे पाती पढ़ के ना हमार मन में नवा नवा जोश आ जाते उमंग ला बढ़ जाते आपके पाती पढ़ के ऐसे लगी कि हमार कोनो घर परिवार के हमला अपन दुख सुख लगोठियाएगी के ऐसने सुघर सुघर अपन अपन पाती ला पठवत रहू और पाती पठोए भर तेखर भर गाड़ा गाड़ा धन्यवाद हवे अगला पाती कहाँ के थनेश्वरी
0: अगला पाती हावे सुमित महामाया चौक मेघा पारा ले संगवारी मन हावे राम कुशल पटेल संतोषी पटेल मन हा
1: संगवारी मन का लिखे है
0: संगवारी मन लिखे हावे दिन गुरुवार के युवानी में थनेश्वरी बघेल और संगी आरी सावे दामनी सेन संग मा नीलेश साहू लिनिमा साहू के गोड बात प्रसिद्ध कलाकार मनमोहक आवाज के धनी शेख अमीन अपन कलाकारी और जीवन सफर के बारे में बताई ने भारी प्रेरणादायक रही से सुन के हमला बड़ अच्छा लागी से एक हर बार युवानी परिवार और आकाशवाणी रायपुर ला हृदय ले बधाई और शुभकामना देवथन ऐसे कहा थे और ए दिन के कार्यक्रम पर यहू संगवारी मन हा सुन के बधाई पाती पठोए हावे संगवारी मन है सहसपुर ले दुर्गेश कुमार साहू रामकिशन साहू बिलाईगढ़ रोशनलाल देवांगन कौशल्या हिमलतर देवांगन धमनी राजीम ले समेलाल धीवर मुन्नी गोविंद ममता कुणाल धीवर चांदनी चौक गंडई पंडरिया ले पवन कुमार सेन प्रभा देवी सेन हसदा नंबर दूले कमले साहू जितेंद्र दिलीप प्रवीण पायल लक्ष्मी गीतांजलि साहू तेंदु भाठा मगलोड ले उमेन कुमार निषाद मोहेश्वरी देविका निषाद भानपुरी मुसरा ले आत्माराम यादव सुखदेव यादव नवागढ़ कटई ले नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत वर्मा और संगवारी मन हावे मगरलोड ले पुनुराम साहू राज तेजेश्वरी साहू और संगवारी मन हावे शिक्षक नगर दुर्गले राकेश वर्मा सचिन वाणी वर्मा मन हा
1: संगी हो ये दिन आप मन हा बड़ सुघर अकन खेल कूद के बारे में सुघर चर्चा ला सुने हवा और शेख अमीन के कलाकारी और लोकगीत संगीत के बारे में आप मन ला विस्तार से जाने सुने के मौका मिली सब है ये दिन के कार्यक्रम आप मन ला बने लगी ऐसे आपके पाती है बतावा थे आपके बधाई ला कार्यक्रम के माध्यम ले हमार संगी मंत्री रहमन हा अमृत हवन है ना वो थनेश्वरी है तो यही मेरे स्वीकार कर
0: था
1: भाई है ना तो संगी हो इसने सुघर सुघर अपन विचार अपन पाती अपन मायल हमार तीरा भेजत रहो और पाती पठो है तेखर बार बड़ अकन धन्यवाद
0: सुमित ए दरी तो संगवारी मन के बिकट अकन पाती आ रही इसका
1: फिर दार बहा चूर गे और हमार पाती पूर गे
0: है ना भाई ये बात तो है फिर संगवारी हो आगू दरी ज्यादा ले ज्यादा आप मन हा हमार तीर पाती पठो हो तेखर बार हमार पता ला लिखो आप मन हमार पता हावे क्रम आप मन की चिट्ठी युवानी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 97 आकाशवाणी रायपुर पिन कोड है

0: 9002001 औ ईमेल के माध्यम ले पता हमर तीर अपन बात गोट बात ला लिखू तेकर बर पता हवे aiyouth9@gmail.com औ एकर सब्जेक्ट कोड हवे संगवारी हो y8
1: तो संगी हो क्रम आप मन के चिट्ठी
0: इहे तक।

0: अभी थनेश्वरी संगवारी मन के पाती पढ़ के ना मोर मन हाँ उड़ा लगे लहरी से
1: अब संगवारी मन पर मया तो लागे रहे थे सुमित
0: है ना तो भाई अब जब मन मा अतेक मनाया हो गए है तो चलो सुनथने सुघर अकन गीत ला।

0: संगवारी हो, आपमन सुनात रहे सुक्कर अकन गीत ला जेला पंसूर मा पिरो हे धुरा राम मरकाम औ दुखिया भाई मन हा।
1: अब गीत ला पसंद करिया संगवारी मन हावे लोरमी ले नारायण खांडे, रजनी तुषार, समीर रेखा दिवाकर, शीतला नगर दुर्ग ले शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, गंडई पंडरिया ले शिवा यादव, राज चिंटू, तरुण चुआ राम, कन्हैया निर्मला यादव, सहा मार्ग ले सुखनंदन चंद्रवंशी, शिवरानी आकाश, प्रतिभा पूर्वी, पूनम चंद्रवंशी, अंबागढ़ चौकी ले रिजवान खान, आयसा सबीहा, अनस रेहान, डोंगरगांव ले राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका बेबी, अनिष्का तन्मय गजभिये, पिपरिया ले कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, मेघापारा चिल्फी ले शुभम पटेल, दिव्या दीपांजलि, दीपक संतोषी, रामकुशल, दीपांशु पटेल, कन्या जिला बालाघाट मध्य प्रदेश ले अखिलेश यादव, ज्योति अंकित, श्रद्धा सौरव यादव, बलौदा ले दिलहरन गौतम, अंजनी आनंद, समृद्धि पटेल, संगवारी मनहावे पुतकी कला कवर्धले राधेश्याम पांडे, वीणा विनय शंकर, नयन पांडे, पाहंदा पलारी ले नीतीश कुमार, लखनलाल, सावित्री बाई, ईशान, तनुजा देवांगन, पीपरलोड सरगांव मुंगेली ले दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति, शिवांश वर्मा, कोटना पानी डोंगरगढ़ ले खिलावन मंडावी, परमेश्वर प्रणय, ईशांत मनहा।
0: तो का कहत रहते हैं का पेड़ रुखराई के बारे में कहत,
1: मैं रुखराई के बारे में ये कहत रहे हूं संगवारी हो कि एसो के बाढ़त घाम और गर्मी है तो भारी तपे हावे, मन खेल अरवा दे, अब थोकन कम होई से तो राहत तो मिले हावे भाई।
0: भाई राहत तो मिले हावे, फिर अभी तको ना चचरा के कभू कभू सेंक देते थनेश्वरी
1: हाँ।
0: है भाई, भुइया के तापमान है ना धीरे धीरे दिन ब दिन बाढ़ जावत हावे,
1: बाढ़ जाते
0: और यहाँ के ही जीव जंतु और प्राणी मन भर ना भाई खतरा के संकेत है।
1: बिल्कुल संकेत है, और प्रकृति ले तो हमला मुक्त में बहुत कुछ मिल जाते, फिर बदला में हम मनखे मन का देथन, सिर्फ नुकसान ही हुआ थे पर्यावरण ला, औ ते औ जीव जंतु के संग आज मानव घला पानी भर भटक थे।
0: सीर्तन भाई वो कितने ना संगी कि फोकट के जीनी सहा उखर मान्यता खत्म हो जाती
1: है, हाँ, ज्यादा दिन नहीं
0: बस उसने आए तो संगी हो, हमला अगर कुछ प्रकृति की तरफ से हमला कुछ मिला था ना,
1: बिल्कुल
0: जिन हमला फोकट मिला थे हमला उखर कहाँ कुछ दिल पर थे, लेकिन अखर ओला हमला ना सहेज के रखना चाहिए, उखर ध्यान रखना चाहिए, और संगे संग ना हमला जागरूकता बढ़ाना चाहिए कि कैसे हम उस चीज के संरक्षण कर सकन, उखर संवर्धन कर सकन की है नहीं।
1: ये बात तो है सब भाई, तो एकर पीरा ला कौन सुनी सुमित, हम मनखे मन ही सुनबो, और सुनही वो मनखे जेकर मन में जीव भर दया माया के भाव होही, जेकर मन में निस्वार्थ सहयोग के भावना होही।
0: बिल्कुल भाई, तो हम ये सब हम खासकर युवा मन के जवाबदारी आए कि हम अपन ना प्रकृति के विशेष ध्यान रखन,
1: ध्यान रखन, और हमर अवैया पीढ़ी है एकर ले
0: जुड़े रहा
1: जुड़े रही और जागरूक हो जही।
0: बिल्कुल भाई, तो अब यही विचार संग सुनथन सुघ रखन गीतला।

0: रुख जगा के देख संगवारी हुए सुघर अकन गीत ला अपन सुनत रहो जेला अपन सुर में पिरोए रही से पवन चंद्राकर और साथी मन
1: अभी गीत ला सुने बर चाहिए हमारे संगवारी मन बंगला मटिया बालोद ले शिव कुमार अंगारे अंजनी त्रंबिका लीना अंशुमाला आशुतोष अंगारे कुमारदा राजनांदगांव ले ताराचंद साहू ओम माही धर्मेंद्र साहू देवरी भाटापारा ले मुकेश कुमार रजक युवान हाविया तन्नु तानिया नित्या रजक पथरिया भरेवाले चंदुलाल नारायणी नोमेश नेहा वानिया सिंगरोल मन
0: तो थनेश्वरी भाई संगवारी मंदिरा गोठियावत कब बेरा हा जाए के हो गए समझ में नहीं है भाई है ना तो भाई काली के कार्यक्रम संगवारी मला बता डर
1: तो संगवारी हो जाए के पहली काली के कार्यक्रम ला बता देतन काली के कार्यक्रम युवाणी सजी हिंदी में जेमे आप मन सुनो राग नंदिनी और सवालों के आईने में
0: संगी हो मौसम के बदलत बेरा हवा अब इसना में अपन अपन सेहत के विशेष ध्यान रखो और अपन मया दया हमला ना पठवत रहो आज के कार्यक्रम आप मतलब कैसे लगीस अपन अब बड़कन पाती के संग हमला लिख के भेजाओ और संगे संग एक संग अपन संगी सुमित तिवारी
1: और थनेश्वरी बघेला देवा विदा
0: नमस्कार।

ये था युवा श्रोताओं का दैनिक प्रसारण युवावाणी, आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। 6 बजने को हैं, हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले।

0: करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध आप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की एक नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरे सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में केंद्र सरकार की 12 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। देश भर में इस तरह के 1,600 केंद्र स्थापित किए जाने हैं और अब तक 24 केंद्र स्थापित हो चुके हैं। इन केंद्रों में अभी तक लगभग 10 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्चा कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेना अध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में 1 विकेट पर 16 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।
3: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर सुना।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे
1: हो? हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम Hello? गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित,
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद की और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:10

0: हुए हैं, अब छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग वसुधा सेन के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहिन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाछू 12 बच्छर में नवा समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण हो है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह अपन छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज रायपुर में स्वच्छता मित्र मन के सम्मान करीन और उनला मेडिकल किट प्रदान करीन और प्रदेश के सबो सरकारी और निजी स्कूल मन में अवैया 16 जून ले साला प्रवेश उत्सव मनाए जाहे। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 बच्छर पूरा होय ऊपर आज रायपुर में आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहिन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 बच्छर के ये कार्यकाल ऐतिहासिक रहे है। उखर नेतृत्व में नवा समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण हुआ थे। उमन कहिन की जनजातीय वर्ग बरघलो ये 12 बच्छर स्वर्णिम रहे है। ये दौरान 58 करोड़ ले ज्यादा जनधन खाता खोले गए है। छत्तीसगढ़ में छूढ़ाई बच्छर में 10 लाख ले ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बने हैं। ये मौका में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहिन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है विकास के संग विरासत लघलो बढ़ाए के काम करे है। उमन कहिन कि पाछू 12 बच्छर में भारत के अर्थव्यवस्था मजबूत हो है। 25 करोड़ लोगन मन हा गरीबी रेखा ले ऊपर आए हैं। एखरे संग दुनिया में भारत के सम्मान घलो बढ़े है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह अपन छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज रायपुर में स्वच्छता मित्र मन के सम्मान करीन और उनला मेडिकल किट प्रदान करीन। ये मौका में ओमन स्वच्छता कर्मी मन ले संवाद करत हुए स्वच्छ भारत अभियान में उखर समर्पण परिश्रम और योगदान के सराहना करीन। श्री सिंह कहिन कि स्वच्छता केवल अभियान न है बल्कि जन भागीदारी ले राष्ट्र निर्माण के सशक्त माध्यम है। ये मौका में केंद्रीय मंत्री भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा ऊपर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करें। एखर बाद केंद्रीय मंत्री श्री सिंह कलेक्ट्रेट परिसर करा स्थित ऑक्सीजोन में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण घलो करें। उन्हें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ले रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात करें। इबेरा में मुख्यमंत्री कहिन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय और निरंतर संवाद की भावना विकास काम मल्ला नवा गति प्रदान करे है। एकर पहले केंद्रीय मंत्री श्री सिंह काली रायपुर में रेशम खादी ग्रामोद्योग हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र के समीक्षा करीन। केंद्रीय मंत्री अधिकारी मल्ला निर्देशित करीन कि अलग अलग योजना मन के माध्यम ले ग्रामीण और कुटीर उद्योग क्षेत्र के उद्यमी मन के वार्षिक आय 5 लाख रुपया तक पहुंचाए बर विशेष प्रयास करे जाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुईन। ये मौका में मुख्यमंत्री NHM कर्मचारी मन के 33 दिन के हड़ताल अवधि के वेतन दे जाए के घोषणा करीन। उमन NHM कर्मचारी मन ला स्वास्थ्य सेवा के रीढ़ बतावत हुए कहिन कि प्रदेश के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्र मन में घलो स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाए में उखर अहम भूमिका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों शौर्य चक्र ले सम्मानित सुरक्षा बल के जवान मन ले आज उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा नवा रायपुर स्थित अपन निवास कार्यालय में मुलाकात कर उनला बधाई और शुभकामना दीन। ये दौरान उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा शौर्य चक्र ले सम्मानित इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट, इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख और राइफलमैन भोजराम साहू के साहसिक काम मन के सराहना करीन। गरियाबंद जिला में सुरक्षा बल के टीम तलाशी अभियान के दौरान माओवादी मन के एक ठन बड़े हथियार डंप बरामद करे हैं। मिले जानकारी के अनुसार CRPF और जिला पुलिस के संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर निकले रहीन। इसी दौरान दंडई पानी के जंगल में माओवादी मन डहार ले लुका के रखे 4 किलो के IED कुकर बम टिफिन बम हथियार और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद करे हैं। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
2: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगू बढ़बो बाते समाचार को ती। प्रदेश के सबो सरकारी और निजी स्कूल मन में अवैया 16 जून ले साला प्रवेश उत्सव मनाए जाही। प्रवेश उत्सव के दौरान स्कूल पहुंचैया नव प्रवेशी लइका मन के तिलक लगा के स्वागत करे जाही। ये मौका में विद्यार्थी मन ला निःशुल्क पाठ्य पुस्तक यूनिफॉर्म और साइकिल के वितरण करे जाही। उन्हें बोर्ड और स्थानीय परीक्षा में टॉप करैया लइका मन ला घलो सम्मानित करे जाही। स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश के स्कूल मन में नवा शिक्षा सत्र ले राष्ट्रगान राष्ट्रगीत और राज्यगीत समेत अलग अलग गतिविधि मनला अनिवार्य रूप ले कराए जाए के निर्देश जारी करे हैं। निर्देश में कहे गए हैं कि बिहनिया के प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान राष्ट्रगीत और आने आने गतिविधि होगी, जबकि मध्यान्ह भोजन के बेरा भोजन मंत्र और छुट्टी के बेरा राज्य गीत के सामूहिक वाचन कराए जाए। यही बीच लोक शिक्षण संचालनालय 16 जून ले ही ऑनलाइन उपस्थिति और अवकाश व्यवस्था अनिवार्य करे जाए के निर्देश दे हैं। संचालनालय अधिकारी कर्मचारी और शिक्षक मन ला डिजिटल माध्यम ले हाजिरी दर्ज करे बर कहे हैं। स्कूल मनमा VSK ऐप और कार्यालय मनमा बायोमेट्रिक प्रणाली ले उपस्थिति दर्ज हो ही। ऑनलाइन हाजिरी नहीं मिले ऊपर जून माह के वेतन रोके जा सकत है। उन्हें अब ऑफलाइन छुट्टी आवेदन पूरी तरह ले प्रतिबंधित रही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में राजनांदगांव के प्रतिभाशाली युवा क्रिकेटर महक नरवासे ले सौजन्य मुलाकात करें। ये मौका में श्री साय भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम के आगामी श्रीलंका दौरा पर T20 और वनडे टीम के उपकप्तान नियुक्त करे जाए ऊपर सुश्री नरवासे ला बधाई और शुभकामना दीन। रायपुर में आज देवर्षि नारद जयंती पत्रकार सम्मेलन सम्मान समारोह आयोजित करेगी। ए बच्छर के देवर्षि नारद सम्मान वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत शर्माला प्रदान करेगे है। उन्हें बब्बन प्रसाद मिश्र सम्मान महिला पत्रकार आकांक्षा तिवारी ला और रमेश नैयर सम्मान फोटो जर्नलिस्ट रूपेश यादव ला प्रदान करेगे है। ये कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नवा रायपुर स्थित IIIT के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश व्यास और मुख्य वक्ता DD News के वरिष्ठ सलाहकार संपादक प्रखर श्रीवास्तव रिहीन। जांजगीर चांपा जिला के पतोरा थाना क्षेत्र में आज भारतमाला सड़क कर एक ठन ट्रेलर और पिकअप के बीच हुए टक्कर में पिकअप सवार दो झन युवक मन के मौत हो गए। उन्हें 3 झन घायल हो गए। घायल मल्ला अस्पताल में भर्ती कराए गए है। राजधानी रायपुर के नवा रायपुर स्थित सेंध लेक में 36वां राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर पुरुष महिला और सब जूनियर बालक बालिका प्रतियोगिता शुरू हो गए है। एकर आयोजन भारतीय कायाकिंग कैनोइंग और छत्तीसगढ़ एंड कैनोइंग के संयुक्त तत्वाधान में करे जाते हैं। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश डहाल ले प्रस्तुत कार्यक्रम जिला के चिट्ठी के प्रसारण काली संध्या 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। ये कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के सबो आकाशवाणी केंद्र एके संग्रह रिले कर ही ये बखत के अंक मा गरियाबंद जिला के बारे में जानकारी दे जाही। और अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग अवैया 1-2 दिन के भीतर मानसून के छत्तीसगढ़ में प्रवेश की संभावना जताए है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून झारखंड और उड़ीसा पहुंच गए है। मानसून के आगू बढ़े पर परिस्थिति सामान्य बने हुए है। उन्हें एक ठन द्रोणिका मध्य प्रदेश उत्तर छत्तीसगढ़ और झारखंड के ऊपर बने हुए है। एकर असर ले अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के कुछ एक जगह में हल्का ले मध्यम वर्षा हो और गरज चमक के संग छीटा पड़े के संभावना है। उन्हें 1-2 जगह में अंधर चले और गाज गिरे के चेतावनी दे गए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घों फिर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहिन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाछू 12 बच्चर में नवा समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण हुए है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह अपन छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज रायपुर में स्वच्छता मित्र मन के सम्मान करीन और उनला मेडिकल किट प्रदान करीन। और प्रदेश के सबो सरकारी और निजी स्कूल मनमा अवैया 16 जून ले साला प्रवेश उत्सव मनाए जाहे। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का

हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 6:30 हुए हैं। लोक संगीत, लोक संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार हैं गोरेलाल बर्मन और साथी। पहले आपको सुनवा रहे हैं गोरेलाल बर्मन और साथियों के स्वर में ये लोकगीत।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर सुना।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मनपसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। औ तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मन ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

श्रोताओं, आइए आपको एक सूचना दे दें। आगामी मंगलवार 16 जून 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम का विषय होगा मानसून के पूर्व पशुओं में होने वाली बीमारियों की पहचान, बचाव और उपचार तथा टीकाकरण का महत्व। इस विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर के एल राम, अतिरिक्त उप संचालक शासकीय पशु चिकित्सालय मांढर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 16 जून 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। आज इसमें कलाकार हैं गोरेलाल बर्मन और साथी। आपको सुनवा रहे हैं इनके स्वर में ये लोकगीत।

0: अभी आप लोक संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे। आज इसमें कलाकार थे गोरेलाल बर्मन और साथी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
9: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
9: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
10: आकाशवाणी से।
7: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
0: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीते 12 वर्षों के कार्यकाल में नए समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण हुआ है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज रायपुर में स्वच्छता मित्रों का सम्मान किया तथा उन्हें मेडिकल किट प्रदान किए। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में आगामी 16 जून से शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा और मौसम विभाग ने आगामी 1-2 दिनों के भीतर मानसून के छत्तीसगढ़ में प्रवेश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आज रायपुर में आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्षों का ये कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है। उनके नेतृत्व में नए समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण हो रहा है।
11: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिनके नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है और 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास के लिए अद्भुत काम किया है। आज जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि सबका जनधन खाता हो, सबके घर में शौचालय हो, सबका पक्का मकान हो, सबके घर में बिजली हो, उसी तरह से सबके घर में नल द्वारा पानी पहुंचे, इसके लिए भी जल जीवन मिशन की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है।
0: इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के साथ विरासत को भी बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं।
12: प्रधानमंत्री जी ने जैसा कि कहा, विरासत के साथ विकास या विकास के साथ विरासत, दोनों को लेने का काम किया। और वही नहीं, दुनिया में भारत के सम्मान को ऊंचा किया। 32 देशों ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया, भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया। नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के मंत्र से काम किया है।
0: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज रायपुर में स्वच्छता मित्रों का सम्मान किया तथा उन्हें मेडिकल किट प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छता कर्मियों से संवाद करते हुए स्वच्छ भारत अभियान में उनके समर्पण, परिश्रम और योगदान की सराहना की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने भारत रत्न डॉ भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री श्री सिंह ने कलेक्टोरेट परिसर के समीप स्थित ऑक्सीजोन में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री श्री सिंह ने कल रायपुर में रेशम, खादी, ग्रामोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण और कुटीर उद्योग क्षेत्र के उद्यमियों की वार्षिक आय 5 लाख रुपए तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने NHM कर्मचारियों के 33 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने NHM कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बताते हुए कहा कि प्रदेश के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका है।
13: सरकार आप लोगों के साथ, हम सब लोग खड़े हैं। आप लोग लंबे समय से हड़ताल में थे, उसका वेतन रुका हुआ है, तो मैं आज उसकी घोषणा करता हूं। आप लोगों के हड़ताल समय का जो वेतन है उसको सरकार देगी और आप सब लोग इसी तरह से आगे भी सेवा का काम करते रहें, आप सभी लोगों से ये अपेक्षा है।
0: प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में आगामी 16 जून से शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। प्रवेश उत्सव के दौरान स्कूल पहुंचने वाले नवप्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। इस मौके पर विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण किया जाएगा। वहीं बोर्ड और स्थानीय परीक्षाओं में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया जाएगा। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के स्कूलों में नए शिक्षा सत्र से राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राज्यगीत सहित विभिन्न गतिविधियां अनिवार्य रूप से कराए जाने के निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में कहा गया है कि सुबह की प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और अन्य गतिविधियां होंगी, जबकि मध्यान्ह भोजन के समय भोजन मंत्र और छुट्टी के समय राज्यगीत का सामूहिक वाचन कराया जाएगा। इस बीच लोक शिक्षण संचालनालय ने 16 जून से ही ऑनलाइन उपस्थिति और अवकाश व्यवस्था अनिवार्य किए जाने के निर्देश दिए हैं। संचालनालय ने अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को डिजिटल माध्यम से हाजिरी दर्ज करने को कहा है। स्कूलों में VSK ऐप और कार्यालयों में बायोमेट्रिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज होगी। ऑनलाइन हाजिरी नहीं मिलने पर जून माह का वेतन रोका जा सकता है। वहीं अब ऑफलाइन छुट्टी आवेदन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में राजनांदगांव की प्रतिभाशाली युवा क्रिकेटर महक नरवासे से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर श्री साय ने भारतीय महिला अंडर-19 क्रिकेट टीम के आगामी श्रीलंका दौरे के लिए T20 और वनडे टीमों का उपकप्तान नियुक्त किए जाने पर सुश्री नरवासे को बधाई और शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों शौर्य चक्र से सम्मानित सुरक्षा बल के जवानों से आज उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नवा रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में मुलाकात कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने शौर्य चक्र से सम्मानित इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट, इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख और राइफलमैन भोजराम साहू के साहसिक कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन जवानों की बहादुरी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने तलाशी अभियान के दौरान माओवादियों का एक बड़ा हथियार डंप बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार सीआरपीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम तलाशी अभियान के लिए निकली थी। इसी दौरान दंडई पानी के जंगल में माओवादियों द्वारा छिपा कर रखे गए 4 किलो का आईईडी, कुकर बम, टिफिन बम, हथियार और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। बम निरोधक दस्ते की टीम ने मौके पर ही विस्फोटकों को निष्क्रिय कर दिया। रायपुर में आज देवर्षि नारद जयंती पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस वर्ष का देवर्षि नारद सम्मान वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत शर्मा को प्रदान किया गया। वहीं बबन प्रसाद मिश्र सम्मान महिला पत्रकार आकांक्षा तिवारी को और रमेश नैयर सम्मान फोटो जर्नलिस्ट रूपेश यादव को प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नवा रायपुर स्थित IIIT के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश व्यास और मुख्य वक्ता DD न्यूज के वरिष्ठ सलाहकार संपादक प्रखर श्रीवास्तव थे। राजधानी रायपुर के नवा रायपुर स्थित सेंध लेक में 36वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर पुरुष और महिला तथा सब जूनियर बालक बालिका प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इसका आयोजन भारतीय कायाकिंग कैनोइंग और छत्तीसगढ़ कायाकिंग एंड कैनोइंग के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के 24 राज्यों से करीब 800 खिलाड़ी और अधिकारी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का समापन कल 14 जून को होगा। जांजगीर चांपा जिले के पंतोरा थाना क्षेत्र में आज भारतमाला मार्ग के पास एक ट्रेलर और पिकअप के बीच हुई टक्कर में पिकअप सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कोरबा जिले के केरवा गांव से पिकअप से 5 लोग भिलाई जा रहे थे। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में गरियाबंद जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 1-2 दिनों के भीतर मानसून के छत्तीसगढ़ में प्रवेश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून झारखंड और ओडिशा पहुंच चुका है। मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां सामान्य बनी हुई हैं। वहीं एक द्रोणिका मध्य प्रदेश, उत्तर छत्तीसगढ़ और झारखंड के ऊपर बनी हुई है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।
14: आज मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ तेज हवा और वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये मेघ गर्जन का गतिविधि और वर्षा का गतिविधि जो है आगामी 7 दिन तक भी रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटों में लगभग 1 से लेकर 3 डिग्री का गिरावट आ चुका है और दक्षिण छत्तीसगढ़ में मॉनसून का एंट्री आगामी 2 से लेकर 3 दिन में होने की कंडीशंस फेवरेबल बन रहे हैं।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीते 12 वर्षों के कार्यकाल में नए समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण हुआ है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज रायपुर में स्वच्छता मित्रों का सम्मान किया तथा उन्हें मेडिकल किट प्रदान किए। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में आगामी 16 जून से शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा और मौसम विभाग ने आगामी 1-2 दिनों के भीतर मानसून के छत्तीसगढ़ में प्रवेश की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
15: ये आकाशवाणी का रायपुर और रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत।

ये गीत आपने सुना फिल्म ससुराल से। आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की थीं। गीत लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत शंकर जयकिशन का था। लीजिए आपको सुनवा रहे हैं साहिल उद्यानवी का लिखा गीत, संगीत है दत्ता नाइक का, आवाज़ आशा भोसले की है और फिल्म का नाम है धर्मपुत्र।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने सुना मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। संगीत दिया था एसडी बर्मन ने और फिल्म का नाम था तलाश। लीजिए आपको सुनवा रहे हैं शैलेंद्र का लिखा गीत। धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, और फिल्म का नाम है हमराही।

ये गीत आपने सुना फिल्म आकाशदीप से, आवाज लता मंगेशकर की थी, शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत से सजाया था चित्रगुप्त ने। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। 7:21 हुए हैं। लीजिए सुनिए किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

0: राम राम नीतू दीदी।
1: राम राम पूजा और कार्यक्रम सुनैया हमारे जम्मो संगवारी मल्ला हमारे दोनों के
0: राम राम।
1: पूजा मौसम बड़ सुघर हो जाते संजा
0: है ना।
1: अब देखना रोज देखा था ना अभी अभी कि अंधड़ आते है नहीं हवा बने गरेर चलते और थोकिन जो दिन भर गर्मी आत रही थे नहीं मौसम तेन थोकिन शाम के बने लागे लगते माने बरसात के जिन कहना है ओखर न्योता हम देर रहे ना बरसात आवत है भाई। ऐसे है कि जब बरसात आते ना तो अब बड़ा कन काम तको करे पड़ते। अब गाँव गाँव में देखबे कई जन के घर कच्चा है आजो खपरा वाले घर देखते तो वो मन पहली अपन खपरल बने छायरी लहुटा थे बने करते है नहीं। अब किसान भाई है तेन मन हा देखबे पैरा वैरा ला बने सुखा उखा के और अभी बने असन अब्बड़ अकन जैसे बरसात आते नहीं तो साग भाजी नहीं मिले तो हमारे भाई बहनी मन है ना तेन हा सब कहना चाहिए लाखड़ी रखते कहना चाहिए ना सुखा के बने रखते भाटा टमाटर जमोला। तो ऐसे है कि बरसात के पहली अब्बड़ अकन काम करे पड़ते तैयारी करे पड़ते बरसात आवे तो कमती समस्या हो कहके है नी।
2: और दीदी सोर सुरता है ऐसे पर्ची रहा है पहली और माटी के ऐसे पर्ची रहा है तो झिपार घलो बांध है कि भाई पानी ऐसे आवे तो वो यही काड़ी के रहर काड़ी के झिपार बांधे बड़े बड़े और खपरा लुटाए काम है जैसे आपने बताया कि करते और कई जन मन के घर माटी रहा है तो ऐसे झिल्ली ले उड़ा ढाका ताकि वो जो दीवार है तेन गिरा झन ऐसे छोट छोट छोट छोट तैयारी करे जो छोट छोट उदीम करे निकल ले भाई बरसात के मौसम में अपन सुरक्षा तो करबे करे और संगे संग जब हम मन के मन अपन सुरक्षा करथन तो पशुधन की भी सुरक्षा के घलो हमला ध्यान रखे पड़ते।
1: हमारे पशुपालक मन है ना अभी गर्मी जब चलते ना गर्मी के मौसम में पशुधन के सुरक्षा के व्यवस्था करे लागते हैं विशेष करके जैसे हम अपन आवास की सुरक्षा करते नहीं प्रबंधन करते नहीं वैसने उमन है उखर जन प्रबंधन है आवास रहे के जगह के उखर बहुत जरूरी है उमन करते भी लेकिन कई पैत देखते ना कि भाई विशेष रूप से प्रबंधन उमन नहीं कर पाए जैसे कि हमारे जन विशेषज्ञ उमन कई ठन सलाह देते तेन उमन नहीं कर पाए एक पाए के तो हम अपन संगवारी मतलब कई ठन गोड बताथन ताकि मन हाँ विशेषज्ञ के अनुसार काम कर सके। तो भाई ऐसे है कि थोड़ थोड़ छोट छोट काम ऐसे दे बहुत ध्यान लगा के करना चाहिए रहे के आवास के प्रबंधन के काबर की मौसम में देखते हैं कि बीमारी जैसे पशु मन ल होते ना खुरहा मुँहपका और गलघोटू ऐसा बीमारी ले बचाए बार आवास के सही प्रबंधन बहुत जरूरी है इसे विशेषज्ञ मन बताते।
2: हाँ दीदी और एक बार सबले पहली तो मन के जो रहे के जगह है चाहे शेड हो चाहे बाड़ा हो या फिर कोठा जिला कई तरह ओला जो छत होते कई जन मन इसने घास फूस के बना देते या फिर पैरा उरक बना देते या फिर छा देते इसने तो वहू ला मरम्मत करना बहुत जरूरी हो जाते। और कई जन मन तो भाई पशुधन तो हरे पशु तो हरे जनावर जिनावर तो हरे ओकर मन के रहे के का जो दरवाजा है या खिड़की तेलो उतना ज्यादा ध्यान नहीं देवे तो ओकरो मरम्मत जरूरी काबर की भाई अगर ओकर मरम्मत नहीं हुई तो जो बरसात में जो पानी है तेन सीधा अंदर भीतर में मतलब जमा हो जाही तो ओकले जो बीमारी है तेकर संभावना हाँ बढ़ जाते।
1: जैसे कहेस ना शेड या बाड़ा तो शेड या बाड़ा मा या कोठा मा ओला हमेशा का करना चाहिए ऊंच बनाना चाहिए थोकिन ताकि आसपास के जमीन ले थोकिन पानी मत मतलब ढलान में मत हो पानी हाँ। में भराए मत है ना और ऊंचा रही है ना तो बने रही ताकि भीतर में बने असन पानी झन आवे भाई है ना और बीमारी के उचित व्यवस्था कर सका था अगर पशु मतलब बीमारी हो गए तो ओखर ले मन हा बांस सके और पानी के निकासी के बने व्यवस्था तको करना चाहिए संगे संग का करना चाहिए सफाई के भी ध्यान देना चाहिए गोठान के पहली सबले पहली तो सफाई बने कर देवे गोबर कचरा और जतका गंदगी होला बने साफ कर देवे है ना। और पानी के बात करें ना तो ऐसे कि पानी रुकी जैसे मान लो जब पानी चल दिस खरावास में तो ऐसा में मच्छर है माखी है एमन बाढ़ी और खरले बीमारी फैला है।
2: और दीदी यही ला मच्छर माखी ले बांचे बर भाई ओकर विशेष ध्यान रखे बर का कर सकत हन कि फिनाइल जो है आजकल वो बहुत आसानी ले उपलब्ध हो जाती तो ओकरो छिड़काव कर सकत हन ताकि बैक्टीरिया है या कोई परजीवी है जो बीमारी फैलाने वाला है तेना पन पै झन और माछी मरको मच्छर के जो प्रकोप है तेकर ले घलो बांस सकन और एक बार एक ठन उदी मऊ कर सकत हन नीम के पाना बहुला भाई छेना संग धुआं कर सकत हन जला के धुआं कर सकत हन तो ओकर ले यह बहुत प्रभावित होते बहुत माछी मच्छर ले बचाव हमला हो जाते और भाई एक जो पशुधन है वो संझा बेरा खासकर मच्छर के प्रकोप बहुत ज्यादा होते, एकर ले बहुत परेशान हो जाते हमर जनावर मन, तो ओला सुरक्षित राखे बर ये उद्यम करे जा सकत है।
1: एकर बर एक ठन काम कर सकत है हमर पशुपालक मन, के जेन दीवार है नहीं है ओला चूना ले पोत दे बने असन, तो ओखर ले मच्छी मक्खर
2: नहीं आई
1: कमे आते कहना चाहिए है ना। और एक ठन कर सकत हन कि सूखा बिछौना के भी ध्यान रखना चाहिए कि पानी गीला जन
2: नमी झन रहा है,
1: तिन गीला झन रहा है नमी झन रहा है, बने सूखा बिछौना है ना सूखा बोरा है ओला बने बिछा दे और उनमें पशु मन ना बैठे के बने व्यवस्था करे।
2: इसने दीदी चारा के भी व्यवस्था उकरो सही ढंग से होना चाहिए, चारा सूखा होना चाहिए, सूखा जगह में रखना चाहिए, माने थोड़ा ऊंचाई में रखन ताकि ओमा नमी झन आवे। अब नमी आही तो चारा खराब हो जाही, एकले जनावर खाई नहीं तो उकरो ले प्रभावित होते, तो ये सब छोटे छोटे जिनिस के ध्यान हमरा रखना चाहिए। एकर संगे संग टीकाकरण घलो हमला बरसात के पहले करवा लेना चाहिए, अपन पशु चिकित्सक ला बुलवा के संपर्क करके कि रोग झन हो एकल बर।
1: अब एक प्रकार ले देखा ना पूजा, तो बरसात के पहली पशुधन के आवास के सही प्रबंधन ले पशु मन स्वस्थ रहते, दूध उत्पादन बढ़ते, इलाज के खर्चा जेने वह कमती होते और किसान के आमदनी में बढ़ोतरी होते। साफ सुथरा सूखा और सुरक्षित गोठान सफल पशुपालन के आधार आवे।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चर ले सब लग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
3: और संगवारी हो बेरा है किसान वाणी के प्रायोजक है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: हम है भारत के किसान हम
1: किसान हम
2: किसान हम।
3: दीदी अब हमर किसान भाई मन खरीफ फसल के तैयारी तो शुरू करिस दे तो एक बार बहुत कन तैयारी करे लगती जैसे माटी के सही उपचार हो गए और खेत के तैयारी हो गए खातू पानी की व्यवस्था हो गए एक संगे संग बीज उपचार घलोक बहुत जरूरी होते काबर की बीज उपचार नहीं होही तो फसल के उत्पादन में बहुत प्रभाव पड़ते तो यही ला आज विस्तार ले जानबो क्रम आज की सलाह में आज के हमर भेंटवार्ता के विषय है बीज उपचार का महत्व और विधियां ये विषय में चर्चा करत हन हमर विशेषज्ञ ले दीपमाला लकड़ा विषय वस्तु विशेषज्ञ पौध रोग कृषि विज्ञान केंद्र भाटापारा ले आप मन ले भेंट करत है नीतू शर्मा ता सुनथन ये भेंट वार्ता।
4: संगवारी हो खेती में जम्मो काज के बड़ महत्ता है कोनो भी काम में लापरवाही या अगर अज्ञानता हो ही तो उपज और आमदनी दोनों ला कमती कर सकत है ये हमर लापरवाही हो अज्ञानता है देखरे पाए के माटी के तैयारी के बाद अगर हम बीज के चयन कर लेथन तब बीज ला उपचारित करना भी बड़ जरूरी है ऐसे विशेषज्ञ मन बताते तो यही बात ला ध्यान में रखत हुए क्रम आज की सलाह में जानकारी लेथन बीज उपचार के महत्व और विधि के बारे में जानकारी दे बर हमर बीच है दीपमाला ये मने विषय वस्तु विशेषज्ञ पौध रोग कृषि विज्ञान केंद्र भाटापारा ले राम राम दीपमाला मैडम जी।
5: राम राम मैडम।
4: हमर संगवारी मल्ला सबले पहले ये बताते हो कि ये जो बीज उपचार हरे वो का हरे।
5: बीज उपचार जो है वो एक प्रक्रिया है जिसमें बुआई से पहले बीजों को रसायन या फिर जैविक एजेंट या जैव एजेंट से हम उपचारित करते हैं ताकि बीज जनित या मिट्टी जनित जो रोग होते हैं उनको हम बीमारियों से बचा सके क्योंकि बहुत सारे जो बीमारियां होती हैं वो भूमि जनित होती हैं या फिर बीज जनित होती है तो हमको हमारी जो फसल है उसको बचाने के लिए सबसे पहले बीजों का उपचार करना बहुत अधिक जरूरी है। बहुत सारी फसलों के लिए नर्सरी तैयार करने की आवश्यकता होती है वही कुछ सीधी बुआई करते हैं ऐसे में हमारे किसान भाइयों को ये जानकारी होना आवश्यक है कि बीज अनेक रोगाणु जैसे कवक जीवाणु विषाणु या फिर सूत्रकृमि आदि के वाहक होते हैं जो भंडारित बीज एवं खेत में बोए जाने वाले बीजों को नुकसान पहुंचाते हैं जिसकी वजह से हमारे जो बीज होते हैं उसकी गुणवत्ता या फिर अंकुरण की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है फसलों की बढ़वार कम हो जाती है और उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है इसलिए हमको जो बीज का उपचार है वो करना बहुत ज्यादा आवश्यक है।
4: जी तो ये तो हो इस बीज उपचार का है फिर हमारे संगवारी मल्ला ये बताते हो कि बीज उपचार के का उद्देश्य है और या बीज उपचार के लाभ का हरे।
5: बीज उपचार का जो उद्देश्य है वो जैसे मैं भी पहले ही बोली कि जो बीमारियां होती हैं पौधे में जो बीमारियां होती हैं
4: जी जी
5: वो बीज जनित होती है और मृदा जनित होती है
4: जी।
5: इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे जो बीजों को है बीज जनित और मृदा जनित रोगों से सुरक्षा प्रदान करना है दूसरा है अंकुरण प्रतिशत को बढ़ाना तीसरा उद्देश्य हमारा है पौधों की प्रारंभिक वृद्धि में सुधार करना चौथा उद्देश्य है पौधों की सहनशीलता बढ़ाना पांचवा उद्देश्य अधिक उत्पादन प्राप्त करना। बीज उपचार से हमको यह लाभ होता है जैसे बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं वो बीज जनित होती हैं जैसे ब्लास्ट है उकता है रोग है या जड़ गलन जो बीमारियां होती हैं चाहे सब्जी वाली फसलों में अधिकतर दिखाई देता है
4: जी जी
5: ऐसी जो बीमारियां होती हैं इनको अगर हम बीज उपचारित करके हम लगाएंगे तो हमारा जो बीमारियां हैं जो पौधों में बीमारियां हैं वो बहुत कम आएंगे।
4: जी जी जी
5: दूसरा है कि हमको स्वस्थ एवं मजबूत पौधे मिलेंगे बीज की अंकुरण क्षमता को बनाए रखने के लिए बीज का उपचार करना बहुत जरूरी है क्योंकि बीज उपचार करने से कीड़े अथवा बीमारियों का प्रकोप भंडारित बीज में कम होता है और बुआई पूर्व कीटनाशक से बीज का उपचार करने पर मृदा में उपस्थित हानिकारक कीटों से बीज की सुरक्षा हो जाती है। तीसरा लाभ यह है कि रोग एवं कीटों का नियंत्रण रहता है चौथा लाभ है कि कम लागत में हम अधिक मात्रा में लाभ ले सकते हैं क्योंकि उपचारित बीज की बुआई करने से बीजों की मात्रा कम लगती है एवं बीज स्वस्थ होने के कारण उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि होती है। साथ ही साथ जो हमारा पर्यावरण है वो अनुकूल बना रहता है, क्योंकि जैसे हम फोलियर स्प्रे करते हैं तो फोलियर स्प्रे की तुलना में काफी कम मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग किया जा सकता है, जिससे पर्यावरण जो है वो अनुकूल बना रहेगा और हमारा जो फसल का

0: देखिए भौतिक बीज उपचार में बीजों को गर्म पानी या सूर्य की तेज धूप में सुखाकर उपचारित किया जाता है। जैसे गेहूं में लूज स्मट लगता है
1: जी जी,
0: तो हम गर्म पानी के द्वारा हम लूज स्मट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम गर्म पानी से उपचार करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, बीजों को 4 घंटे तक पानी में भिगो के रखते हैं, फिर उसके बाद 49 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म पानी में बीजों को अलग अलग समय के लिए पानी में डालते हैं गर्म पानी में। फिर उसके बाद बीज को सुखाकर बुआई कर, ये आपका हो गया गर्म पानी। दूसरा होता है सौर उपचार। सौर उपचार तो हमारे जो किसान भाई हैं वो करते ही हैं, ये कोई नया चीज नहीं है। इस विधि में बीज को सुबह 4 घंटे पानी में भिगो के रखते हैं, फिर जो फर्श होता है फर्श में पतली तह में बीजों को चिलचिलाती धूप में सुखाते हैं। सुखाने के बाद बीजों को शुष्क भंडारण की दशा में बुआई के लिए भंडारित कर देते हैं। तीसरा विधि है गर्म वायु से उपचार। यह जो विधि होता है मेनली जो बीमारियां होती हैं हमारे फसल को जो नुकसान पहुंचाती हैं वो फफूंद जीवाणु और विषाणु के द्वारा होता है। तो गर्म पानी से जो हम उपचार करेंगे इसमें जो वायरस के द्वारा जो होने वाले रोग हैं उसका उपचार किया जाता है। उदाहरण के लिए गन्ने में मोज़ेक वायरस के नियंत्रण करने के लिए हम गन्ने के बीज के टुकड़े को एक इंक्यूबेटर में 8 घंटे के लिए रखते हैं और इसमें 54 मतलब 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म वायु से उपचारित करते हैं।
1: जी, तो ये तो हो इस भौतिक बीज उपचार के। फिर आगे ये बताते हो कि आप मन जे नऊ बीज उपचार के विधि बताए हो जैविक बीज उपचार, ये का हरे?
0: ये एक कृषि में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें रासायनिक दवा के बजाय हम प्राकृतिक, जैसे सुने होंगे ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास, इसके द्वारा हम बीजों का उपचार करते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है बीज जनित और मृदा जनित रोगों और कीटों में फसल की रक्षा करना तथा बीज के अंकुरण क्षमता को बढ़ाना है। जो ट्राइकोडर्मा होता है ये एक फफूंद होता है, लेकिन ये हमारे लिए लाभकारी फफूंद है जो कि बीज जनित बीमारी जैसे उकता, जलजड़न आदि के उपचार के लिए जैविक फफूंदनाशक का उपयोग किया जाता है। इसकी जो मात्रा है वो 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम लेते हैं फसल बीज का उपचार कर। अगर हमको इसमें ट्राइकोडर्मा से भूमि का उपचार अगर करना है
1: जी,
0: तो ट्राइकोडर्मा की मात्रा लेते हैं हम 10 किलो, जिसको हम 250 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में हम इसको मिलाते हैं।
1: जी जी,
0: मिलाने के लगभग 1 महीने बाद जब ट्राइकोडर्मा इस गोबर की खाद में पूरी तरीके से फैल जाता है
1: जी,
0: तब इसको हम खेत में जब हम मिट्टी पलटने हल से जब हम जुताई करते हैं
1: जी जी,
0: उस समय इसे हम खेत में छिड़कते हैं ताकि जो ट्राइकोडर्मा है वो गोबर की खाद में तो अपनी जनसंख्या बढ़ाई गई, साथ ही साथ जो मिट्टी में है मिट्टी में अपनी जनसंख्या बढ़ाएगा, जिससे जो हानिकारक जो फफूंद है जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाएगा उसको ये निष्क्रिय स्यूडोमोनास है। स्यूडोमोनास की भी जो मात्रा है वो 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से लेते हैं। यदि हमारा 30 किलो का बीज तो हमको 60 ग्राम स्यूडोमोनास दवा का उपयोग करना।
1: मैडम जी, अभी आप मन हमार संगवारी मन ला रासायनिक बीज उपचार के विधि बता रहे हो, तो यही बताते हो कि रासायनिक बीज उपचार का हरे?
0: रासायनिक बीज उपचार, इसमें बीजों को फफूंद नाशक या कीटनाशी रसायनों से उपचारित किया जाता है, जैसे कार्बेंडाजीम, थायराम, मेनकोजेव या मेनकोजेव प्लस साफ, ये एक फफूंद नाशक है। इसमें से कोई भी जो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए, ये 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आपको बीज का उपचार करना है। बीज उपचार करने से इसका जो लाभ है वो बीज सड़न एवं फफूंद रोगों से बचाव है, साथ ही साथ अंकुरण में सुधार है।
1: जी जी, तो ये तो है इस रासायनिक बीज उपचार। एक और तरीका आप मन बता रहे हो बीज उपचार के, वो हरे पोषक तत्व बीज उपचार, ये का हरे हमारे संगवारी मतलब बताते और कैसे करना है यहू बताते।
0: पोषक तत्व बीज उपचार, बीजों को सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, आयरन, बोरान या मैग्नीज से उपचारित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि पौधों की जो शुरुआती अवस्था है जब जड़ों का

0: विकास होता है, तो इसका उपयोग करने से पौधों की जड़ों का विकास तेज हो जाता है और फसल को मजबूती प्राप्त होता है। फिर
1: जी
0: तो पोषक तत्वों से बीज उपचार करने के लिए सबसे पहले हमको एक सॉल्यूशन या घोल बनाना पड़ेगा। घोल बनाने के लिए अगर 1 किलो बीज के पीछे अगर हम जाएंगे तो 2 से 5 ग्राम सिर्फ पोषक तत्व की आवश्यकता होगी।
1: जी जी
0: ये जो पाउडर है इसमें हम 1 किलो बीज में कम से कम 30 ml पानी मिला के हल्का सा गाढ़ा घोल बनाएंगे। गाढ़ा घोल बनाने के बाद बीज में चिपकाने के लिए एक चिपचिपा पदार्थ तैयार करेंगे, जिसे तैयार करने के लिए हमें गुड़ की आवश्यकता होगी। थोड़े से पानी में हमको गुड़ घोलना है और ये जो हम गाढ़ा घोल बनाए हैं इस घोल में गुड़ को डाल देना है।
1: जी
0: उसके बाद ये जो घोल तैयार है इसको हम बीज में कोटिंग करेंगे।
1: जी जी
0: पहले क्या करेंगे, बीजों को किसी साफ प्लास्टिक शीट या पक्के फर्श पे फैला देंगे। फिर ये जो तैयार किया गया जो हमारा पोषक तत्व है इस घोल को बीज के ऊपर में धीरे धीरे से छिटेंगे।
1: जी जी
0: छिटने के बाद हल्के हाथों से बीजों को आपस में मिलाएंगे ताकि जो पोषक तत्व है वो समान रूप से, इसका जो समान परत है वो बीजों पे चढ़ जाए।
1: जी जी
0: और ध्यान ये रखना है कि ज्यादा बीजों को रगड़ना नहीं तो फिर बीजों के जो छिलके हैं वो क्या है टूट सकते हैं।
1: जी
0: उसके बाद उपचार करने के बाद बीजों को 30 से 45 मिनट के लिए किसी छायेदार या ठंडी जगह पर फैला के सुखाना है। और
1: जी
0: ध्यान ये रखना है कि बीजों को कभी भी सीधी तेज धूप में नहीं सुखाना है। जब बीज हमारा सूख जाए तो फिर ये बीज हमारा बुआई के लिए तैयार है।
1: जी जी जी तो दीपमाला जी, आप मन हा हमार संगवारी मल्ला, आज बीज उपचार के महत्व ओखर विधि ये खर बारे में बहुत ही सुघर जानकारी देव और हमार संगवारी मन के बीच में आए, एखर बार बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

दिदी गोट बात जानकारी बहुत होगी है ना। अब भाई बेरा मनोरंजन के हे त सुन लेथनी गीत जिला स्वर दे अनुराग ठाकुर कविता वासनिक और साधना यादव है।

0: संगवारी हो येमन रीने अनुराग ठाकुर, कविता वासनिक और साधना यादव। आओ संगवारी हो एक ठीन आप मन बर सूचना है। संगवारी हो आप मन ला बता दन कि अवैया मंगलवार 16 जून 2026 के प्रसारित होवैया हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम के विषय हो ही मानसून के पूर्व में पशुओं में होने वाली बीमारियों की पहचान, बचाव और उपचार तथा टीकाकरण का महत्व। ये विषय में आपके समस्या और जिज्ञासा के समाधान पर हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई विशेषज्ञ डॉक्टर के एल राम, अतिरिक्त उपसंचालक शासकीय पशु चिकित्सालय मांढर। आप अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए बर हमला फोन कर सकत हो। फोन नंबर ये रकम रहे, हमारे पहले यह फोन नंबर है 400-3482, दूसरा फोन नंबर है 400-3483 और तीसरा फोन नंबर है 400-3484 और रायपुर के एसटीडी कोड है 0771। आप मतलब बता दें संगवारी हो कि ये कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग 16 जून 2026 के बिहनिया 11:30 बजे ले 12 बजे तक करे जाही। ये कार्यक्रम के प्रसारण मंगलवार के ही संझा 7:30 में करे जाही। हमला आपके फोन कॉल के अगोरा रही संगवारी हो, सूचना इही में सिरावत है।
1: और दीदी अब भी रहे कृषक प्रश्न मंच के, जेमा हम अपन संगवारी मन ला प्रश्न बताथन ना, वो मन ना जवाब लिखे भेजते वो मन ओकर मन के नाम ला पढ़थन। तो भाई अब भी रहे आज के प्रश्न की, तो आज के प्रश्न है बीज उपचार कौन कौन से विधि ले करे जा सकते हैं। प्रश्न एक गांव फिर दोहरावा था, बीज उपचार कौन कौन से विधि ले करे जा सकते हैं, ये तो रही से आज के प्रश्न।
0: दीपा
1: पूजा
0: संगवारी मतलब बता देथन कि ये प्रश्न के सही सही जवाब आप मन लिख के अवैया शनिचर तक के हमार पता में भेज दू ईमेल के माध्यम ले। हमार पता है राय आज के प्रश्न 23@gmail.com।
1: और दीदी अब भी रहे पांचों हफ्ता के प्रश्न होकर जवाब के, पांचों हफ्ता के प्रश्न रही से छत माँ कौन कौन से फल के पौधा लगा सकथन। तहीकर सही उत्तर है सेब, केला, अनार, आम, ड्रैगन फ्रूट, गन्ना, चीकू असन बहुत कन पौधा और साग भाजी लगा जा सकते है। तो सही उत्तर भेजिया हमारे संगी मन के नाम आप बता दो।
0: हमारे संगवारी मन है ईमेल के माध्यम से प्रश्न के उत्तर भेजे, ये मन है महादेव घाट अमलेश्वर ले डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर, दहिहान बांधा बाजार राजनांदगांव ले हरिओम साहू, रेवाराम साहू, रानू सरस्वती, प्यारी राम साहू, परमानंद साहू, तेंदुभाटा मगरलोड धमतरी ले उमेंद कुमार निषाद, मोहेश्वरी देविका, पोषण नूतन, सुरेंद्र यशस्वी, भास्कर किशन निषाद, डुमरटोला मंगचुआ बलोद ले भगवती राम कांटे, कुमारी गोपिका, भावेश कुमार, माधुरी देवी कांटे, बठेना पाटन ले बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, मुरली, नीरा, निधि, निखिल, यश, प्रयाग और शिवम वर्मा, मदनपुर कवर्धा लेहे श्रवण कुमार साहू, योगेश, राहुल साहू, चर डोंगरी पिपरिया लेहे दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, कुमारी साहू, इंद्राणी माया साहू, जयकिशन, योगेश, वासु, हेमा, राधिका साहू, रिंगली लेहे दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लोरमी चचेड़ी लेहे कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराब, ऋषभ मरावी। तो भाई संगवारी हो आप मन हाँ सही सही जवाब दे एक हर बार गाढ़ा गाढ़ा बधाई। तो पूजा तो ये तो हमार संगवारी मन हाँ पढ़ सुघर ढंग ले प्रश्न के उत्तर लिख के भेजे है, एक हाले पता चलते कि हमार संगवारी मन हाँ बहुत ध्यान से
1: कार्यक्रम
0: सुनते है नहीं। तो भाई जब अतका ध्यान ले सुनत है हमार संगवारी मन हाँ, तो एक ठन और सुघर गीत सुना देते संगवारी मन ला है नहीं। तो संगवारी हो आओ सुनथन ये सुघर गीत सालिक राम देवांगन और मंजू चतुर्वेदी के स्वर में।

0: संगवारी हो ये रही ने सालिकराम देवांगन और मंजू चतुर्वेदी। पूजा ऐसे है कि अभी बरसात वही जिसे बात करें ना नहीं, तब बरसात में सबसे अच्छा जिन काम है ना वो हरे पेड़ लगाना,
1: बिल्कुल दीदी,
0: पानी बचाना है नहीं कि भाई सबले पहली अभी देखा ना विश्व में जो काम है करना है हर मनखे ला करना है वो है पेड़ लगाए के काम और पानी बचाए के काम। काबर की हमला पर्यावरण ला सुरक्षित रखना है, हमला अगर अपन जीवन ला सुरक्षित रखना है तो हमला बिल्कुल पेड़ ला बचाना है, पानी ला बचाना है। अगर हम अभी पेड़ ला नहीं लगाबो, पेड़ ला नहीं बचाबो, पानी नहीं बचाबो तो निश्चित ही आने वाला बेरा में हम देखन तका हो ही विकास नहीं कर पाबो। तो यही संदेश संग ऐसे है कि देखना भाई घड़ी की सारा होते जाए के बेरा होते, तो जाति बिराती बता दे काली के कार्यक्रम।
1: हाँ दीदी, अब जाति बिराती बता दे थन काली कार्यक्रम, तो काली संजा बेरा गोटबास संग भेंटवार्ता माँ खरीफ पूर्व फसल चयन और बीज उपचार ये भेंटवार्ता सुनू माँ विशेषज्ञ हुई डॉक्टर आदित्य शुक्ला कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र महासमुंद और कृषक प्रश्न मंच और गीत संगीत तो होबे करी। तो हो गए हमारे जाए के बेरा, तो देव विदा और स्वीकार पूजा और
0: नीतू शर्मा के
2: राम राम।

ये था किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत।

0: ये गीत आपने सुना फिल्म गहरा दाग से, आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की थी, शब्द रचना शकील बदायूं ने की और संगीत से सजाया था रवि ने।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे।

चित्रपट संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। लीजिए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर का गाया आनंद बख्शी का लिखा गीत। धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है नाइट इन लंदन।

ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। फिल्म का नाम था गंगा की लहरें। गीत शैलेंद्र का और संगीत था चित्रगुप्त का। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। चित्रपट संगीत में अभी आपने जिन फिल्मों के गीत सुने उनमें शामिल थीं गहरा दाग, नाइट इन लंदन और गंगा की लहरें। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम आप रात 9:15 पर फिर सुन सकेंगे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 8:15 हुए हैं, लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं सफरी मरकाम और साथी।

लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्र से। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं सफरी मरकाम और साथी। लीजिए सुनिए इनके स्वर में ये लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सफरी मरकाम और साथियों के गाए लोकगीत। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:30 होने को हैं। कुछ ही देर में स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला धर्मशाला में जारी। अफगानिस्तान ने दिया भारत को 195 रन का लक्ष्य। महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला जारी। बर्मिंघम में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। एशियन गेम्स के लिए भारतीय बैडमिंटन टीम की घोषणा। पीवी सिंधु, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भारत का नेतृत्व करेंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका ने पराग्वे पर 4-1 की धमाकेदार जीत दर्ज की।

रग्बी के मुकाबले में कल कतर और स्विट्जरलैंड होंगे आमने सामने। और भारतीय हर्डलर तेजस शिरसे ने इंडियन एथलेटिक्स सीरीज में किया ऐतिहासिक प्रदर्शन, 13.27 सेकंड के साथ बनाया नया रिकॉर्ड।

0: तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से, जहां धर्मशाला में पहला एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला जारी है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने दूसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 19 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है और कप्तान शुभमन गिल 6 रन और रोहित शर्मा 5 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। ये श्रृंखला आगामी एक दिवसीय विश्व कप की तैयारियों के मद्देनजर अहम मानी जा रही है। और अब रुक कर लेते हैं T20 महिला विश्व कप की ओर, जहां मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 20वें ओवर में 7 विकेट पर 167 रन बना लिए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। आज खेले गए एक अन्य मुकाबले में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड ने निर्धारित ओवर में 5 विकेट पर 161 रन बनाए। 162 रन के लक्ष्य के जवाब में आयरलैंड की टीम 5 गेंद शेष रहते 121 रन पर सिमट गई। उधर बर्मिंघम में कल भारत का मुकाबला चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। सुनते हैं इस महामुकाबले पर ये खास रिपोर्ट।
1: भारत और पाकिस्तान के बीच कल हाई वोल्टेज मुकाबले के दौरान एस्बेस्टन में माहौल बेहद जोशीला रहने की उम्मीद है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम में अनुभव और आक्रामक खेल का शानदार मिश्रण है। टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी में जहां स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा शुरुआत से ही मैच की गति तय कर सकती हैं, वहीं भारत के पास एक संतुलित गेंदबाजी क्रम भी है। इंग्लिश कंडीशन में रेणुका सिंह की स्विंग और दीप्ति शर्मा की निरंतरता महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। क्रांति गौड़ भी इस मैच में अपनी चमक बिखेर सकती हैं। मैच से पहले कप्तान हरमनप्रीत ने कहा कि बर्मिंघम में भारतीय प्रशंसकों से उत्साह की पूरी उम्मीद है।
2: आई थिंक बिकॉज द मैच इज इन बर्मिंघम और वहाँ पर आई थिंक सपोर्टर विल बी यू नो इक्वल बिकॉज वहाँ पर काफी सारे इंडियंस हैं और पाकिस्तानी रहने वाले हैं और हमने बहुत सालों से उनको डोमिनेट करा है।
1: भारतीय स्टार जेमिमा रोड्रिक्स ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुकाबला हमेशा प्रेशर वाला होता है।
3: आई रिमेम्बर व्हेन आई प्लेड माय फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान गेम इन द ड्रेसिंग रूम हैरी दे एक्चुअली स्पोक शी लाइक वी विल नॉट डिनाई इट देयर इज प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज यू वी नो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वी नो व्हाट द फैंस एक्सपेक्ट इवन लाइक माय बिल्डिंग वॉचर वी लाइक किसी के साथ हारो पर पाकिस्तान के साथ मत हारो दैट इज द काइंड ऑफ प्रेशर बिकॉज दे लव क्रिकेट दे लव दिस राइवलरी।
1: भारतीय कोच अमोल मजूमदार ने कहा कि इस फॉर्मेट में कोई भी गेंदबाज घातक साबित हो सकता है।
4: लुक आई मीन आई विल बी वेरी न्यूट्रल हियर यू नो आई हैव टू बैलेंस इट आउट आई मीन एवरी बॉलर ऑन अ गिवन डे इट्स T20 क्रिकेट सो यू यू नो इट्स द शॉर्टेस्ट वर्जन ऑफ द गेम एंड अ गेम ऑफ चांस सो यू नो ऑन दैट पर्टिकुलर डे एनी बॉलर वुड बी अ।
1: दूसरी तरफ फातिमा सना की कप्तानी में पाकिस्तान की युवा टीम मैदान पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करेगी। पाकिस्तानी टीम में स्पिनर सादिया इकबाल और निदा डार की भूमिका अहम होगी। भारत इस मैच में जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। 2020 अंतर्राष्ट्रीय में भारत का हेड टू हेड रिकॉर्ड बेहतर रहा है, लेकिन बड़े टूर्नामेंट्स में अक्सर अप्रत्याशित नतीजे देखने को मिले हैं। इससे पाकिस्तान का आत्मविश्वास बढ़ेगा। दोनों देशों के महिला टीमों के बीच अब तक कुल 16 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 13 मैच जीते जबकि 3 मुकाबले पाकिस्तान के नाम रहे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इंग्लिश कंडीशंस में कल कौन सी टीम अंडर प्रेशर बेहतर प्रदर्शन कर पाती है। मनीषा खन्ना, स्पोर्ट्स कैन।
0: इसी क्रम में पूर्व भारतीय कप्तान अंजुम चोपड़ा ने T20 विश्व कप के समीकरण पर हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला से अपने विचार साझा किए।
5: नमस्कार अंजुम जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
6: थैंक यू।
5: अगर ग्रुप स्टेज की बात करें तो इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम है, तो कितना मुश्किल होगा भारतीय टीम के लिए ये सफर?
6: तो डिफिकल्ट तो सभी के लिए है, किसी एक टीम के लिए नहीं है एंड सभी की दावेदारी है। 12 टीमों का अगर विश्व कप है तो 12 की 12 की दावेदारी है। हाँ, कोई ज्यादा स्ट्रांग है, कोई ज्यादा स्टैंडिंग ज्यादा अच्छी है बाकी टीमों से, तो लेकिन ऐसा कोई क्लियर फेवरेट नहीं है कि यही टीम है जो खेलेगी या यही टीम है जो जीतेगी। सबको मेहनत करनी पड़ेगी।

0: पड़ा, लेकिन पिच कंडीशन और मौसम को समझने का उनको मौका मिला है।
1: फेमिलियरिटी तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, आई थिंक मौसम का फर्क पड़ता है, किस तरीके से खेल चलता है। आप अपने घर से बाहर खेल रहे हैं तो यूज टू होने में थोड़ा सा समय लगता है ना। उसको भारतीय टीम, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो इंग्लैंड में पहले भी खेले हैं तो उनके लिए तो इतना फर्क नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत समय सबको लगता है अब, क्योंकि भारतीय टीम यहाँ पर है तो आई एम श्योर एडजस्ट हो चुकी होगी।
0: बल्लेबाजी की बात तो हम काफी करते हैं, स्मृति मंधाना या हरमनप्रीत कौर की, बॉलिंग में ऐसे कौन से नाम होंगे जो भारत के लिए बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं?
1: देखिए T20 मुकाबले में सबका योगदान है, कोई ऐसे एक या दो गेंदबाज नहीं आएंगे जिसपे आप पूरा अपना दारोमदार रखते हैं। दारोमदार हम सिर्फ एक गेंदबाज रखते हैं, जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करते हैं, बट सब खिलाड़ियों की अपनी स्ट्रेंथ है, तो चाहे वो हमारा स्पिन डिपार्टमेंट हो लेड बाय दीप्ति शर्मा इन जर्नी, या हमारा फास्ट बोलिंग डिपार्टमेंट हो लेड बाय क्रांति गौड़ एंड रेणुका, हर एक का रोल रहेगा और किसी का रोल ज्यादा या कम नहीं है, सबको अपना रोल अदा करना पड़ेगा क्योंकि इसी तरीके का T20 क्रिकेट हो गया है।
0: तो T20 खेल को समझते हुए सबको रोल प्ले करना पड़ेगा। अगर बात करें एक्स फैक्टर की तो कौन भूमिका में नजर आएगा?
1: ऋचा घोष मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहेगा भारतीय टीम के लिए, कि ऋचा घोष किस तरीके से इस विश्व कप में खेल पाती है या उनको कितना खेलने का अवसर मिल पाता है, तो उनसे काफी उम्मीदें हैं मेरी। मेरे को लगता है कि वो एक एक्स फैक्टर तो नहीं कहूंगी क्योंकि पहले हमें वो तो कंसिस्टेंट मेंबर है भारतीय टीम के, लेकिन हाँ उनपे थोड़ी ज्यादा अपेक्षाएं रहेंगी, उनसे ज्यादा मुझे रहेगा कि वो गेम चेंजर वाला रोल खेल सकती हैं।
0: हमने बात करी ग्रुप ए की, लेकिन ग्रुप बी में आपको ऐसी कौन सी दो टीमें लगती हैं जो आगे जा सकती हैं?
1: हाँ फिलहाल तो इंग्लैंड मुकाबला जीत चुकी है तो वो अच्छा स्टार्ट कर चुके हैं, न्यूजीलैंड डिफेंडिंग चैंपियन है तो आप उनकी तरफ जरूर देखेंगे, लेकिन जो बाकी टीमें भी हैं वेस्ट इंडीज है आप उनको हटा नहीं सकते पिक्चर से। तो मैंने कहा जैसे कि 12 टीमें हैं वो सब दावेदारी के साथ आई और अच्छा खेलना चाहेंगी, हाँ दो ही जा सकती हैं आगे हर पूल से आगे, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन दूसरे पूल में वेस्ट इंडीज भी है और वो भी एक अच्छी टीम है, अच्छा खेल दिखाएगी। सो वेरी कीन कि स्कॉटलैंड कैसे खेलता है और आयरलैंड कैसे निकल कर आता है वहां से।
0: कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: और अब बात बैडमिंटन की। एशियन गेम्स के लिए भारतीय बैडमिंटन टीम की घोषणा कर दी गई है। पीवी सिंधु, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भारत का नेतृत्व करेंगे। एशियन गेम्स इस वर्ष जापान के आईची नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच आयोजित होंगे। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: दो बार की मेडलिस्ट पीवी सिंधु और एशियन गेम्स 2022 में पुरुषों के डबल्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की सिलेक्शन कमेटी नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट के हालिया नतीजों और 26 मई 2026 तक की BWF रैंकिंग को देखने के बाद टीम को मंजूरी दी। भारत के टॉप रैंक वाले पुरुष सिंगल्स खिलाड़ी लक्ष्य सेन की अगुवाई वाली इस टीम में अनुभवी HS प्रणॉय और किदाम्बी श्रीकांत भी शामिल हैं, जिन्होंने पिछले एडिशन में भारत के ऐतिहासिक सिल्वर मेडल में अहम भूमिका निभाई थी। पुरुषों की टीम में इस साल के BWF थॉमस कप में कांस्य पदक जीतने वाले अधिकतर मुख्य खिलाड़ी शामिल हैं। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले आयुष शेट्टी, BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप की इंडिविजुअल चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली तन्वी शर्मा और टीम चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली उन्नति हुड्डा को इंटरनेशनल सर्किट पर शानदार प्रदर्शन के बाद चुना गया। पुरुषों की डबल्स टीम में हरिहरन, अमसाक करुणन और MR अर्जुन मजबूत फॉर्म में हैं। अर्जुन के पास 2022 के पुरुषों की टीम इवेंट में भारत के सिल्वर मेडल जीतने का अनुभव भी है। महिलाओं की डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद चुनौतियों की अगुवाई कर रही हैं, जिन्हें सिमरन सिंघी और कविप्रिया सेल्वम का साथ मिल रहा है। थाईलैंड मास्टर्स सुपर 300 चैंपियन देविका सिहाग, ईशा रानी बरुआ और थारून मन्नेपल्ली के साथ मिलकर भारत के सिंगल्स की ताकत को और बढ़ाती है। ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो डबल्स स्क्वाड में अतिरिक्त कौशल और अनुभव लाते हैं। व्यक्तिगत चैंपियनशिप में भारत सभी 5 इवेंट्स में हिस्सा लेगा। सेन और शेट्टी पुरुषों के सिंगल्स में हिस्सा लेंगे, जबकि सिंधु और हुड्डा महिला सिंगल्स की अगुवाई करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज, चिराग और हरिहरन अर्जुन मुकाबला करेंगे। महिला सिंगल्स में ट्रिसा गायत्री और कविप्रिया सिमरन भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। शीर्ष मिक्स डबल्स टीम में ध्रुव और तनीषा भी हिस्सा लेंगे। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्सकास्ट।
2: उधर ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल में आज जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को 22-20, 21-12 से हराया। अमेरिका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पराग्वे पर 4-1 की धमाकेदार जीत दर्ज की। ग्रुप बी के मुकाबले में कल कतर और स्विट्जरलैंड

0: आमने सामने होंगे। सुनते हैं मुकाबले पर एक खास रिपोर्ट।
1: अमेरिका की ओर से फोलारिन बालोगुन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल किए। अमेरिका की टीम पूरे मैच में हावी नजर आई और पराग्वे को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया। अमेरिका के लिए मैच की शुरुआत शानदार रही। मुकाबले के 7वें मिनट में ही अमेरिका ने 1-0 की बढ़त बना ली। डेमियन बोबाडिला ने पराग्वे के डिफेंस को भेदते हुए बेहतरीन गोल दागा। मैच के 31वें मिनट में फोलारिन बालोगुन ने अमेरिका की बढ़त को 2 गुना कर दिया। फोलारिन के शानदार स्किल्स के सामने पराग्वे का डिफेंस पूरी तरह बेबस दिखाई दिया। पहले हाफ में फोलारिन का एक बार फिर दमदार खेल देखने को मिला और उन्होंने अमेरिका को मुकाबले में 3-0 से आगे कर दिया। पहले हाफ में ही अमेरिका की जीत लगभग पक्की हो गई। हालांकि दूसरे हाफ में पराग्वे ने आक्रामक खेल दिखाया और वापसी का प्रयास किया। टीम को मैच के 73वें मिनट में सफलता हाथ लगी। पराग्वे के सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी मॉरिसियो ने पराग्वे के लिए मैच में पहला गोल दागा। इसके बाद अमेरिका ने अपने खेल में आक्रामकता बढ़ाई और पराग्वे के डिफेंस पर लगातार दबाव डाला। काफी प्रयास करने के बावजूद पराग्वे की टीम को गोल करने में सफलता नहीं मिली। निर्धारित 90 मिनट के बाद स्टॉपेज टाइम में गियोवानी रेयना ने अमेरिका की बढ़त को 4-1 कर दिया। उन्होंने मैच की आखिरी सीटी बजने से ठीक पहले पराग्वे के डिफेंस को एक बार फिर भेदा और अमेरिका की दमदार जीत पर मोहर लगा दी। फोलारिन बालोगुन 1930 के बाद फीफा विश्व कप में 2 गोल करने वाले पहले अमरीकी खिलाड़ी बन गए और इस जीत के साथ ही अमरीका ने टूर्नामेंट का आगाज शानदार अंदाज में किया और टीम इस लय को आने वाले मुकाबले में भी बरकरार रखना चाहेगी। स्पोर्ट्स स्कैन के लिए मुनीश शर्मा।
0: और अब बात एथलेटिक्स की। भारतीय हर्डलर तेजस शिरसे ने इंडियन एथलेटिक्स सीरीज में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। तेजस ने 13.27 सेकंड में पुरुषों की 110 मीटर हर्डल रेस पूरा करते हुए नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। इसी के साथ उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की टीम में अपनी जगह बनाने की दावेदारी मजबूत कर ली है। और अब बात हॉकी की। भारतीय हॉकी टीम FIH प्रो लीग के पहले मुकाबले में कल मेजबान नीदरलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। और चलते चलते श्रोताओं आपको बता दें कि भारत ने 5वें ओवर में बिना किसी नुकसान के 38 रन बना लिए। शुभमन गिल ने 15 और रोहित शर्मा 15 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। और श्रोताओं अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे।

0: भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी, उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट 2 गुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख हबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
4: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
3: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अलनीलों के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to reach Nice tonight on the first leg of two-nation visit to France and Slovakia to hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates tomorrow. 5 Indian Air Force personnel killed in AN-32 aircraft crash at Jorhat in Assam. 5-day BRICS Agriculture Conference ends with unanimous adoption of Indore Declaration, focusing on food security and smart technology in farming. Lieutenant General Dhiraj Seth appointed as country's next army chief. And in cricket, Afghanistan set a target of 195 runs for India in rain-marred first ODI of 3-match series in Dharamshala. Prime Minister Narendra Modi will reach the French city of Nice tonight, marking the beginning of his 6-day visit to France and Slovakia. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. During his stay in Nice, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Nice has filed this report.
6: France occupies a special place in India's strategic vision. As Prime Minister Narendra Modi arrives in Nice tonight at 10:30 p.m., attention is focused on a series of high-level engagements aimed at deepening cooperation across innovation, technology and strategic sectors. Tomorrow at 2:30 p.m., Prime Minister Modi and President Macron will jointly inaugurate Bharat Innovates, India's flagship deep tech showcase in Europe. More than 120 Indian startups, along with global investors, CEOs and technology leaders, will participate in the event. Prime Minister Modi will also hold bilateral talks with President Macron. Discussions are expected to cover defense, artificial intelligence, space, trade, education and other global challenges. Here in Nice, expectations are high that the visit will inject fresh momentum into one of India's most trusted strategic partnerships. This is Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
5: On the second leg of his two-nation tour, Mr. Modi will travel to Slovakia tomorrow. During his 2-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini. He will also hold talks with his Slovakian counterpart Robert Fico in Bratislava. Slovak President Peter Pellegrini, in a social media post today, said that Prime Minister Modi's historic visit will open new opportunities for Slovakia-India cooperation. In a social media post, President Pellegrini stated that he is looking forward to welcome Mr. Modi in Bratislava. The Indian community in Bratislava is preparing a unique welcome for Prime Minister Modi during his maiden visit to Slovakia. We have more from our correspondent covering the Prime Minister's Slovakia visit.
7: As Slovakia prepares to host an Indian Prime Minister for the first time, members of the Indian community are making special arrangements to accord a grand welcome. Paintings, cultural programs and dance programs are being planned to mark the historic visit. Indian Ambassador to Slovakia, Apurva Srivastava, says the excitement is clearly visible among the Indian diaspora. Preparations are underway across the community and the national flags of India and Slovakia can be seen in the capital city, Bratislava. The enthusiasm has been further boosted by the significant increase in travel and exchanges between the two countries over the past 5 years. Bratislava's strategic location in Central Europe is also expected to help strengthen tourism links with India. Smithy M. Palluruthi for Akashvani News from Bratislava.
5: After concluding his Slovakia visit, Prime Minister Modi will return to France to take part in the G7 summit in the eastern part of the country in Evian on the 16th and 17th of this month. The White House today said U.S. President Donald Trump will meet Prime Minister Modi on Wednesday during the G7 summit. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security challenges. On the final leg, Prime Minister Modi will travel to Paris on the 18th of this month to attend Europe's largest technology and startup event, Viva Tech Summit. Mr. Modi is also expected to address the members of the Indian community in Paris. The five-day BRICS Agriculture Conference concluded at Indore in Madhya Pradesh today. At the end of the conference, the Indore Declaration was adopted unanimously. The declaration outlines key decisions on food security, farmers' welfare, climate-friendly farming, agricultural trade, and use of smart technology in farming. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan said that BRICS nations represent nearly half the world's population and contribute around 42% of global agricultural output. He said Indore Declaration is not just a document of agreement but a symbol of the collective will and shared responsibility of BRICS nations. We have a report.
8: Four new institutional initiatives were announced at the conference. Under the first initiative, a network of centers of excellence will be set up for joint research on natural and regenerative farming with the Indian Institute of Farming Systems Research playing a key role. The second initiative involves setting up a BRICS digital agriculture network to bring artificial intelligence and digital technology into farming, which will be coordinated by IIT Delhi. The third initiative will establish a global forum to protect farmers' rights related to seeds and to preserve traditional seed varieties. The fourth initiative will set up the BRICS Agri-N network for sharing agricultural inputs and genetic resources among member countries. With Abhinav Goyal's report, Prashant Kumar Sinha for Akashwani News.
5: Union Home Minister Amit Shah today directed the High-Level Committee on Demographic Change to study the shift in population structure in border districts. Chairing the meeting of the committee, Mr. Shah also asked the panel to visit border areas, metro cities and industrial towns for an assessment of changes because of illegal migration and other unnatural causes. An AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force crashed at the Jorhat Air Force Station in Assam this morning during a routine sortie, claiming the lives of five air warriors. The Indian Air Force IAF has expressed grief at the loss of lives. In a social media post, IAF said Squadron Leader Prashant Singh, Flight Lieutenant Shubham Kumar, Sergeant Jitendra Sharma, Agniveer Vayu Khemaram Kumawat, and Agniveer Vayu Danish Alam made the supreme sacrifice in the line of duty. The IAF said that a court of inquiry is being constituted to ascertain the cause of the accident. Defence Minister Rajnath Singh has also expressed grief at the loss of five air warriors. In a social media post, Mr. Singh said their courage and service to the nation will always be remembered with pride and gratitude. He also conveyed his heartfelt condolences to the bereaved families and said the nation stands firmly with them in this hour of grief. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. The government has appointed Lieutenant General Dheeraj Seth as the next Chief of Army Staff with effect from the 30th of this month. He is presently serving as the Vice Chief of the Army Staff. The present Chief of the Army Staff, General Upendra Dwivedi, is retiring from service the same day. The Defence Ministry said in a statement that Lieutenant General Dheeraj Seth was commissioned into the Armoured Corps in December 1986 and has an extensive experience across the operational, strategic, capability development and institutional domains, contributing significantly to the Indian Army's combat effectiveness and long-term transformation over a distinguished military career spanning nearly four decades. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Narendra Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke Vikas Ke Jan Kalyan Ke. Today we focus on the steps taken by the government to strengthen and celebrate the nation's cultural legacy.
3: Over the last 12 years, India's cultural journey has flourished. Government has undertaken numerous initiatives, both nationally and internationally, that have instilled a deep sense of pride in the country's cultural heritage among its people. The making of Kashi Vishwanath Corridor, Mahakal Lok Project, redevelopment of Maa Kamakhya Temple, reconstruction of Juna Somnath Temple, and establishment of Ram Temple in Ayodhya are the major highlights of the Modi government. Under the museum grant scheme, the nation's cultural infrastructure has been upgraded by establishing 21 new museums and modernizing 23 existing ones. Over the years, the scheme has emerged as a key support system in Nagaland. Talking to Akashwani News, Mr. Talit Ismail, guide lecturer with the Nagaland's Department of Art and Culture, highlighted the benefits of the scheme in the state.
9: 2016-17 museum grant established, we upgraded a new annexe. There we have set up games and sports gallery and then the textile gallery. Through the museum grant scheme, the one thing most impactful thing we can say is it gave us some opportunity to build new infrastructure to preserve our traditions and culture.
3: The cultural function and production grant have also emerged as one of the cultural ministry's key instrument for supporting cultural activities across the country. The Manipur Dramatic Union, the oldest proscenium theatre organization in Manipur, is gearing up to launch a series of new theatrical production. Talking to Akashwani News, Secretary of Dramatic Union Sorokhai Bum Sarat Chandra expressed gratitude to the government for sustaining regional arts through robust financial frameworks.
10: Since the inception of this organization, we have received from the Ministry of Culture so many production grants. Under this cultural production grant, under the new ministry, we have received this year, 125 lakhs. We are very thankful to the government of India, particularly this Ministry of Culture.
3: India has taken big step to protect its culture and share it with the world. Today,

0: ये गीत आपने सुना फिल्म तराना से। आवाजें लता मंगेशकर और तलत महमूद की थी। बोल लिखे थे प्रेम धवन ने और धुन बनाई थी खेमचंद प्रकाश ने।
1: कुछ यादें अतीत की।
2: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
1: कुछ बातें वर्तमान की।
3: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
1: कुछ सपने भविष्य के।
4: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
1: कुछ किस्से अनकहे।
5: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
1: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
0: लीजिए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में प्रेम धवन का लिखा गीत। संगीत चित्रगुप्त का है और फिल्म का नाम है आधी रात के बाद।

0: ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। गीत लिखा था प्रेम धवन ने, संगीत चित्रगुप्त ने दिया और फिल्म का नाम था आधी रात के बाद। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 9:25 होने को हैं। प्रस्तुत है केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम अष्टलक्ष्मी पूर्वोत्तर राज्य।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पयाशर।
2: नमस्कार। 10 जून 2026 एक ऐसी तारीख बन गई है जो कि इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होगी और लोकतंत्र, जिसकी बात सिर्फ बात नहीं होती बल्कि भारत उस पर गर्वान्वित महसूस करता है, उस इतिहास में भी लिखी जाएगी। नरेंद्र मोदी एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निर्वाचित एक प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल उन्होंने अपना पूरा किया है। और इसके अलावा एक दिन पहले ही केंद्र सरकार के 12 साल भी कम्प्लीट हुए हैं। तो अब विकसित भारत की बहुत बात होती है, लेकिन एक ऐसा मंत्रालय जिसकी बात गांव गांव तक पहुंचती है, और सिर्फ बात नहीं, क्या वाकई में गांव के लोग उस बात को महसूस भी करते हैं? जी हाँ, हर घर जल और नल, ये एक ऐसी योजना रही जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा 12 साल में रही। और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जी। बहुत बहुत स्वागत है पाटिल जी आपका।
3: नमस्कार।
2: दो कीर्तिमान स्थापित हुए 12 साल सरकार के, और दूसरा प्रधानमंत्री ने वो रिकॉर्ड तोड़ा जिसकी चर्चा अब तक सबसे ज्यादा होती थी, जवाहरलाल नेहरू की। दोनों को आप किस तरह देखते हैं?
3: देखो, 12 साल कंटिन्यू काम करना, लोगों की जो आश है, जो अपेक्षा है, वो पूरी करना और बार बार जीतना और ऐसे मुश्किल परिस्थिति में जीतना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, वो सब लड़ते थे इलेक्शन। उस टाइम कांग्रेस के सामने कोई विरोध पक्ष नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके सामने तो बहुत ही पावरफुल लोग, सीनियर लोग, कांग्रेस खुद लड़ती है, उसके अंदर अपने बलबूते पे लड़कर वो आना और 12 साल कंटिन्यू सेवा करना और करते रहना, यही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और उसको हम देखेंगे कि 12 साल में क्या किया उन्होंने, लोगों की सभी अपेक्षा पूर्ण करने में उत्तीर्ण हुए। एक लाइन में अगर कह सकते हैं तो इतना कह सकते हैं, क्योंकि काम तो उसके अगर लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत काम उन्होंने किए, देश को सुरक्षित कर दिया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सभी समाज के लिए कोई न कोई योजना बनाकर उनको लाभान्वित करने का काम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है।
2: पाटिल जी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता रहे, क्योंकि आपके साथ तो उनका एक जो साथ और अपनापन रहा वो सिर्फ अभी 12 साल का नहीं, वो तो कितने समय पुराना हो गया, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। आपने क्या देखा कि इतना ज्यादा हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कसीदे इन 12 सालों में भी, जब से सरकार बनी अब गिरेगी, अब गिरेगी, अब गिरेगी, यही बात होती रही और सरकार ने 12 साल कंप्लीट कर लिया?
3: देखिए, हमारे कहते ना अंगूर खट्टे हैं, तो इन्होंने कोशिश तो बहुत कर ली, मगर जो उनकी लालसा थी कि सरकार को गिरा देंगे, सरकार बना लेंगे, मुझे लगता है शायद वो लोग जो उनकी इच्छा इस जन्म में पूरी होने की संभावना मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि पूरा देश मोदी साहब के साथ खड़ा है और इसके लिए खड़ा है कि उनकी जो अपेक्षा थी वो पूर्ण करने वाला एक सक्षम व्यक्तित्व उनमें उसमें दिखता है। और ये मोदी साहब ने प्रूव कर दिया है कि वो सपने नहीं दिखाते। अगर आप एक लाइन में देखेंगे तो आज तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री बने, उनके सामने कोई आंदोलन नहीं हुआ कि हमें रोड चाहिए, पानी चाहिए, गटर चाहिए या कोई भी चीज के लिए। उन्होंने डिमांड कोई करे उसके पहले उसकी आवश्यकता को समझ के समय के पहले उसको पूरा कर दिया। ये आज तक कभी कोई मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने अपने शासनकाल में कभी नहीं किया, इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया है।
2: मोदी जी को इतना टारगेट क्यों किया जाता है? मतलब जब वो मुख्यमंत्री थे किसी मुख्यमंत्री की इतनी चर्चा नहीं होती थी जितना विपक्ष उनकी चर्चा करता था, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सबसे ज्यादा टारगेट उन्हीं को किया जाता है।
3: देखिए, उनको लगता था कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा खानदानी अधिकार है, ऐसा समझते थे। आज एक आम आदमी में से एक सामान्य आदमी अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुँचता है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैंने अभी किसी से मैं बात कर रहा था कि 12 साल तो रिकॉर्ड हुआ, 12 साल बेमिसाल तो रही है, आज नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है।
2: तो यही तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का ये कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ही है जिसने यहाँ तक उनको पहुँचाया है?
3: नहीं, आत्मविश्वास तो उसकी तो प्राथमिकता है, मगर उसके साथ प्लानिंग है, वो जमीन से जुड़े रहते हैं, लोगों की क्या समस्या है उसको ध्यान देते हैं, उसको कैसे उनको मदद की जाए उसके लिए सोचते हैं, उनकी योजना बनाते हैं। टारगेट अगर महिला के लिए तो महिला की योजना बनेगी, किसान के लिए तो किसान के लिए योजना बनेगी। हमारे देश में हम कहते हैं कि ये तो खेती प्रधान देश है, मगर आज तक कभी किसानों के लिए योजना नहीं बनी थी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पहली बार बनाई। यानी ऐसे कई आपको इंसिडेंट्स मिलेंगे कि जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, ऐसी योजना बनाकर उन्होंने मदद की है।
2: पाटिल जी, अब हर घर जल और नल, ये योजना, मतलब ये विडंबना ही है इस देश की कि आजादी के बाद इतनी सारी चीजों पर बात होता था लेकिन तब भी महिलाओं को सिर पर घड़ा रखकर लाना पड़ता था। मैंने कई गांव में जाकर देखा उत्तर प्रदेश के कि महिलाएं इतना खुश होती थी। ये जो विजन है, और क्योंकि आपके मंत्रालय से संबंधित है, मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगी कि ये विजन अब तक क्यों नहीं आ पाया किसी के दिमाग में, और अब इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है?
3: किसी को गरीब लोगों के बारे में सोचने का समय नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि विकसित भारत 2047 एक टारगेट दिया है। हमारे यहाँ देश में घरों में टॉयलेट नहीं था, महिलाओं को सूर्यास्त के बाद में और सूर्यास्त के पहले शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, अंधेरी रात में उनके ऊपर कई बार असॉल्ट भी हुए। कई लोगों को ये जो टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत कैसे बन सकता है? अगर घरों में टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ विकसित भारत के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 60 करोड़ लोगों ने अपनी आदत बदल दी, 9 करोड़ महिला रोज पानी के लिए जाती थी, उसी तरह यहाँ भी टॉयलेट के लिए बाहर जाती थी। तो जिस तरह टॉयलेट का काम किया उसी तरह पानी का भी काम किया, हर घर में नल से जल, ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। आज तक 70 साल में कांग्रेस के समय में कभी भी किसी के घर में पानी देने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। वो एक मोहल्ले में एक हैंडपंप डाल देते थे तो उनको लगता था हमने पानी की व्यवस्था कर दी है। यहाँ तो हर घर में और वो भी हर पर हेड 55 लीटर पानी उसको मिले, अच्छा पानी, क्वालिटी का।

0: पानी मिले, पूरी क्वांटिटी में मिले, इसकी व्यवस्था करने के बाद ही 16 करोड़ घरों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पानी पहुंचा दिया। 3 करोड़ घरों में अभी जो पानी पहुंचाना है उसकी डेट भी तय कर ली कि दिसंबर 28 तक ये भी पूरा काम पूरा करना है। तो इससे हुआ क्या, जो 9 करोड़ महिला पानी लेने के लिए जाती थी, बोझ उठा के आती थी, उसमें मुक्ति मिली। 5.5 करोड़ घंटे उनके रोज पानी लाने जाने में उनके जाते थे, आज वो अपने फैमिली के दे सकते हैं, उसको आर्थिक उपार्जन में उसको खर्च कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात हुई। WHO का रिपोर्ट कहता है कि इसके कारण 3 लाख बच्चों की जान बची है। जो पानी के कारण, जो गंदा पानी आता था उसके कारण जो बीमारी आती थी, उसके लिए जो लोग अपना पैसा खर्च करते थे, वो 8.4 लाख करोड़ रुपया वो लोगों का बचा। तो यानी एक योजना उसके पीछे कितने लोगों का फायदा हुआ, महिलाओं को पानी की मुश्किल दूर हो गई, टॉयलेट बनाने से महिलाओं की सुरक्षा और प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो एक योजना के साथ महिलाओं को, युवाओं को, सबको ध्यान में रखकर ये योजना माननीय मोदी साहब भी बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी वही कर सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो काम मोदी साहब ने किया है।
1: मुझे याद है पाटिल जी, लास्ट टाइम आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने वो जल संचय के बारे में बताया था। आप दिल्ली आए थे और आप बता रहे थे कि पीएम ने किस तरह से कहा कि ये जल संचय वाला जो प्रोजेक्ट है इसको कैसे हमें पहुंचाना है। मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है।
0: देखिए, जल संचय से जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए और कर्मभूमि से मातृभूमि में जल संचय के लिए सहयोग करना चाहिए। ये दो बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 6 सितंबर 2024 को कही थी, एक वर्चुअल मीटिंग में कही थी। हमारा पहला टारगेट था 31 मई 2025 तक 10 लाख स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था। हमने अचीव किया, 27,50,000 पर हम पहुंच गए। हमने नया टारगेट लिया 31 मई 2026 तक 1 करोड़ तक पहुंचने का टारगेट लिया और हम 1,55,00,000 तक पहुंच गए। इसमें मनरेगा में से करीब 10 लाख स्ट्रक्चर बने, बाकी सभी जो स्ट्रक्चर बने वो छोटे से लेके बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर बने वो लोगों ने अपने पैसों से बनाए। और इसमें छोटे छोटे भी है तो बड़े भी है। एक कच्छ में एक एंकर स्विच वाला जो है, उनका नाम है दामजी भाई एंकर, शायद वो अभी नहीं रहे, उनकी फैमिली है, वो बॉम्बे रहते हैं और वो लोग कच्छ के हैं। कच्छ में एक भूखी नदी है, वो भूखी नदी में पानी नहीं है, उसको सफाई करनी थी, उसको रिसिल्टिंग करना था। उन्होंने 50 करोड़ रूपया उसके लिए खर्च किए। एक व्यक्ति अपने गांव में नदी के लिए इतना पैसा खर्च सकता है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के आह्वान के बाद ही हो सकता है। एक ऐसा आदमी है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हमारे देश तकलीफ में है, हम एक टाइम का खाना छोड़ दो, लोगों ने खाना छोड़ दिया। मोदी साहब ने कोरोना के समय में कहा कि एक भी आदमी भूखा नहीं होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस देखिए, कितना पॉजिटिव सोच है, और सिर्फ सोच नहीं, उसको अमलवारी भी करवाने की ताकत रखते हैं। तो ये जो उनका काम करने की जो सिस्टम है वो आपको देखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, उन्होंने कहा था कि रिवर लिंकिंग करना चाहिए, वो तो नहीं कर पाए, मगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले नर्मदा से साबरमती और साबरमती से कच्छ तक जितनी नदियां, तालाब, सरोवर आए वो सबको पानी से भर दिया। और पहला रिवर लिंकिंग था, केन बेतवा दूसरा रहा मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में। 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 2030 में वो पूरा हो जाएगा। उन्होंने पीकेसी की एक नया योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में शुरू की, वो भी शायद 1,00,000 करोड़ से बड़ी योजना है। राजस्थान की जो पानी की किल्लत है वो आने वाले दिनों में जिस तरह से मोदी साहब काम कर रहे हैं तो पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। और जो जल संचय की जो विशेषता ये है कि हम डैम बनाते हैं, डैम से पानी कैनाल में ले जाते हैं, तो कैनाल जहां तक पहुंचती है उसके अगल बगल के किसानों को फायदा होता है, मगर जो दूर दरार है, गांव दूर है, खेत दूर है, उसको पानी नहीं मिलता। जल संचय से हर गांव में जो बह के जाने वाला पानी खड्डे में जाता है, खड्डे से नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी से दरिया में चला जाता है। हमको उनको वहीं रोक देते हैं, खड्डे में ही बोर करके 100 फुट का उसमें पानी उतार देते हैं, खेत में भी 4x6 का खड्डा करके उसमें पत्थर डाल देते हैं। एक बारिश में 4 से 5 लाख लीटर पानी वो खेत में नीचे जमीन में उतर जाता है। इसके कारण जो किसानों के कुएं हैं, बोर है, उसमें पानी ऊपर आ गया, जल स्तर बढ़ गया, जल की क्वालिटी सुधर गई। गांव में भी ऐसा हुआ, गांव के भी जो कुएं थे या बोर थे उसमें भी पानी का स्तर बढ़ गया, क्वालिटी सुधर गई। तो ये जल संचय अपने आप में बहुत बड़ा काम, इसके लिए कि हम हर जगह पर डैम बनाकर पानी नहीं ले जाएंगे तो ये जल संचय की वजह से हमको वहां की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी।
1: आपको लगता है ये जो इसी तरह के विषय हैं, क्योंकि पुरुष तो बाहर नौकरी करने चले जाते थे या काम करने के लिए, महिलाओं को ये सारी चीजें झेलनी पड़ती थी, चाहे वो टॉयलेट वाली बात हो या अगर घर में पानी नहीं आ रहा है, नल नहीं है, यही जो एक विमेन वोट जो बना कि पहले जो महिलाएं बीजेपी के खिलाफ भी वोट करती थी, सारी की सारी महिलाएं अब मोदी मोदी करने लगी हैं। आपको लगता है यही वो वजह है?
0: एक वजह नहीं है, महिला

0: की है, तो उनके जीवन में एक प्रकाश आ गया, ऐसा उनको लगा। आज देश में भी देखेंगे कि देश में अगर कोई भी पुरुष बाहर जाता है तो उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी, सबको लगता है कि सुरक्षित आ जाए घर में। ये सुरक्षा अगर किसी ने प्रदान की तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की। आतंकवाद को खत्म कर दिया, नक्सलवाद को खत्म कर दिया, और जिस तरह से आज महिलाओं को उन्होंने प्रमोट किया, हर सेक्टर में प्रमोट किया, तो उसकी वजह से उनके मन में जो इच्छा थी, जो टैलेंटेड थी, मगर उनको मौका नहीं मिलता था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने महिलाओं को भी मौका दिया। सबसे पहले गुजरात में उन्होंने इलेक्शनों में, तो वहाँ जिला पंचायत, महानगर पालिका, नगर पालिका, तालुका पंचायत में 50% महिलाओं के सीट रिजर्व कर दी, वो पहला इंसिडेंस था। बाद में आप यहाँ देखिए कि उन्होंने विधानसभा और लोकसभा के लिए भी 33% महिलाओं की सीट रिजर्व कर दी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, महिलाओं को एक विश्वास आता है कि कोई हमारे लिए काम करता है, कोई हमारी चिंता करती है। आज ये सभी महिलाओं मोदी साहब की चिंता करती है कि उसके विरोधी जो है उनको ठीक रखना, उनको सत्ता से दूर रखना, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है।
1: आप गुजरात के सीएम के तौर पर मोदी जी और अब पीएम के तौर पर दोनों देखा आपने, कुछ अंतर आया है क्या पहले वाले मोदी जी में और अब वाले मोदी जी में?
0: मैं मानता हूँ कि पहले भी मोदी साहब सामान्य जन के लिए काम करते थे, आज भी वही काम करते हैं। वहाँ उनकी मर्यादा थी, एक स्टेट के मुख्यमंत्री थे या देश के प्रधानमंत्री है, इसके लिए उनको एक काम भी उनका बड़ा है, तरीका भी थोड़ा बदल गया है। और मगर आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री के तौर पे भी जो काम करते थे उसको भी उन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, और नई सोच के साथ, नई ताकत के साथ उन्होंने यहाँ पर भी कई योजना बनाई। हम कहेंगे कि अवकाश से लेकर पाताल तक हर जगह पे उन्होंने काम किया। हम चंद्र पर पहुंच गए, जो कभी हमारे लिए सपना था, तो उन्होंने कर दिया। आपको सुरक्षित करने के लिए जो फ्लाइट आई उसके अंदर भी महिलाओं को उन्होंने उनकी कमान सौंप दी। उसी तरह उन्होंने जमीन के ऊपर भी जो डेवलपमेंट के काम करने थे वो भी उन्होंने किए। सबमरीन भी नई नई बनाई, और जल को भी सुरक्षित करने का काम, यानी जल सीमा को भी सुरक्षित करने का काम भी उन्होंने कर दिया। आज भारत की ओर देखने का नजरिया लोगों का बदल गया है। आज भारत के लोग बाहर जाते हैं तो उनको सम्मान मिलता है, पहले तो उनकी कोई दरकार भी नहीं करता था, वो अपमान करते थे। आज वो बात नहीं रही, ये जो जाने वाले लोग थे पहले भी और अभी भी, उनको ये बात समझती, वो पूरी देखते भी है।
1: गुजरात का कई सारे वहाँ के किस्से जो हैं मैंने किताबों में पढ़े, और कई बार हमने जो मोदी जी के बचपन के दोस्त वगैरह उनके इंटरव्यूज देखे, कि मोदी जी एक तो हर किसी को याद रखते हैं नाम से, और दूसरा हर बात की बारीकी में, डिटेल में जाते हैं, काम के मामले में भी और वैसे भी। तो जब आप वहां पर थे गुजरात में, कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर उनको कुछ गलत बता दिया हो तो वो एकदम पकड़ लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे तथ्य गलत बोला गया है?
0: वो तो पूरा देश जानता है कि बहुत शार्प है, उनको कोई गलत बता के उन्हें कोई ठग जाए ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती। और उनका जो डिटेलिंग करने का काम है उसके अंदर कोई भी आदमी उनको कोई गलत कुछ बता भी नहीं सकता। और वो जो सुनते सबकी है, वह करते हैं अपने मन की, क्योंकि उनको अपने आप में भरोसा है, उनका प्लानिंग होता है, बहुत माइक्रो लेवल पे वो प्लानिंग करते हैं और परिणाम लाके देते हैं। गुजरात में पहली बार महानगर पालिका अगर किसी ने जीती थी, अहमदाबाद महानगर पालिका, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जीती थी। तो ये वहीं से उनकी जो शुरुआत हुई थी, वहीं से वो जीत के लिए ही उनका जन्म है, जीतते ही जाते हैं, उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा और ना कभी देखेंगे।
1: आपने कोई एक चीज जो उनसे सबसे ज्यादा सीखी हो, जिसको आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट आपने कर रखा हो? बिल्कुल,
0: एक बार 26 जनवरी का दिन था, आवा डांग में उनका कार्यक्रम था, और वो जो साफा लगाते हैं तो ये साफा मुझे लेके जाना था, और मैं 2 मिनट लेट पहुंचा, सिर्फ 2 मिनट। उन्होंने किसी से बंधवाना शुरू किया, जैसे उन्होंने अभी तो वो रखा ही था, हाथ में ही पकड़ा था, और मैं पहुंच गया था। मुझे उन्होंने कुछ बोला नहीं, मुझे ऐसा लगा कि सीआर ये कैसे चलेगा, मैंने कहा सॉरी सर। उन्होंने और कुछ भी नहीं बोला, मुझे आज तक भी वो 2 शब्द उनके, वो मुझे उसके घाव आज भी दिखते हैं। तो ये उनसे ये सीखा है कि समय पे ही काम होना चाहिए, हमें देर करने की कोई आदत ही नहीं होनी चाहिए। मेरे ऑफिस में भी मेरे हमारी मीटिंग जो होती है, मैं डॉट टाइम शुरू करता हूँ, समय पर पूरी करना, जो भी काम है उसको हमें आज करना है तो कल तक छोड़ना ही नहीं, आज ही पूरा करना। मेरे पास कोई भी फाइल आती है मैं सेम डे उसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये सब आदत है जो मोदी साहब ने सिखाई है कि क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और हम सामान्य लोगों को अवेलेबल होने चाहिए। उनसे सीखे हैं, यहाँ कोई भी आके मिल सकता है, हमारे गेट पे किसी को रोकते नहीं है, किसी का नाम तक नहीं पूछते हैं, तो उसको लगता है कि मैं कोई प्रधान के यहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई कार्यकर्ता के यहाँ जा रहा हूँ। तो ये सब बातें उनसे सीखी है कि लगाव लोगों से बढ़ना चाहिए, और उन्हीं के आधार पर जो टेक्नोलॉजी की बात भी करते हैं, अभी मैंने प्रधानमंत्री मोदी साहब से सीखी है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पॉलिटिकल फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, तो वो भी उनसे

0: सीखी, उनका ही अनुकरण करके हम आगे बढ़ते हैं।
1: आपके इस एग्जाम्पल से तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने दो शब्दों में अपनी बात भी रख दी और आपको आज तक वो बात याद भी है। इसका मतलब तो वो बहुत सरल तरीके से अपनी बात बता देते हैं, लेकिन छवि उनकी ऐसी बनाई जाती है कि एकदम बहुत दहशत रहती है उनको देख करके।
0: नहीं नहीं, वो तो देखो अपने काम से मतलब रखते हैं। मैं एक इंसिडेंस आपको और कहना चाहूंगा। 2014 का लोकसभा का इलेक्शन वो लड़े, काउंटिंग में करीब 10-15 दिन का टाइम था। एक बार उन्होंने वहां के सभी सेक्रेटरी और जो गांधीनगर में है सभी आईएएस अधिकारी और सभी एमपी सबको स्पाउस के साथ बुलाया था हम, और वहां उन्होंने उनका कॉन्फिडेंट लेवल आपको उसमें दिखेगा कि उन्होंने कहा कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूं। काउंटिंग के पहले 15 दिन पहले कोई व्यक्ति जो कभी दिल्ली नहीं गया वो कहता है कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूं। और मैंने इसके लिए बुलाया कि मेरे बारे में बहुत सी चर्चाएं होती है, बहुत सी अफवाहें चलती है। कोई कहता है कि मोदी जी ने किसी अधिकारी को गेट आउट कह दिया, किसी को फाइल फेंक दी, गुस्सा कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आदमी हूँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, पर मैंने आज तक कभी किसी भी अधिकारी को गेट आउट नहीं कहा। मैंने कोई भी अधिकारी के ऊपर कभी गुस्सा नहीं किया। मैंने कोई भी फाइल कभी अधिकारी को फेंकी नहीं। मुझे अगर गुस्सा आया होगा तो मैंने वो फाइल लेकर साइड में रख दी होगी। इससे ज्यादा मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। आपके मन में होगा, यहाँ सब अधिकारी की पत्नी बैठी है, उनको होगा कि मेरे पति को भी मोदी साहब ने डांटा होगा, मगर वो बता नहीं रहे होंगे घर में। और मैं आपको कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, उसके पहले मुझे एक क्लियर करना था, इसके लिए बताया। मगर वो क्लियर तो किया उन्होंने, मगर जो आत्मविश्वास प्रकट हुआ, कॉन्फिडेंट लेवल जो प्रकट हुआ कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये उनका काम करने का तरीका है।
1: ये तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। लेकिन पाटिल जी, इन 12 सालों में आपने, चलिए हर घर नल और पानी वाला तो आप ही का डिपार्टमेंट है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के अलावा ऐसा कौन सा माइलस्टोन आपको फैसला लगता है या सरकार की कोई नीति लगती है जो हमेशा मतलब याद रखी जाएगी?
0: वो एक चीज नहीं है, मैंने कहा ना, फिर से महिलाओं के लिए हम बात करेंगे तो वो रोटी जो रसोई करती थी तो लकड़े पर करती थी। धूम्रपान से मुक्त कर दिया मोदी साहब ने महिलाओं को, और उसके साथ उसका छोटा बच्चा अगर घर में है तो उसका भी फेफड़ा बचपन से ही वो भी खो जाता था। तो सिर्फ महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए भी उसके अंदर काम हो गया, अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आपने देखा होगा आयुष्मान में लोग बीमार पड़ते थे, घर में नहीं बताते थे, उनको लगता था कि बेटे को पता चलेगा, खर्च होगा, बेटे के पास पैसे नहीं है तो कर्ज लेगा, मकान बेचेगा, खेत बेचेगा। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कर्जदार बने, और वो जो भी दर्द है उसको छुपा लेते थे। बहुत तकलीफ होती थी तो बाहर जाके खेत में जाकर रो लेते थे, और घर में नहीं बताते थे, आंसू लेके नहीं आते थे। मोदी साहब ने कहा कि मैं उनका बेटा हूँ, और उनके लिए 5 लाख रुपए तक का जो ट्रीटमेंट है उसका पैसा मोदी साहब ये योजना से कर रहे हैं। ये भी आपको दिखेगा कि ये भी अपने अपने बहुत बड़ी योजना ये भी बनी है। किसानों के लिए कभी कोई योजना नहीं बनी, उनके लिए भी 6000 रुपया साल में 3 बार डाल देते हैं, बिल्कुल समय पर देते हैं। और युवाओं के लिए भी उन्होंने कितनी कोशिश की, पहले तो नौकरी लगाना है तो आपको किसी की सिफारिश चाहिए, पैसा चाहिए, जमीन देनी पड़ती थी। आप देख रहे हैं कई लोगों के ऊपर उसके केस भी चल रहे हैं। यहाँ पारदर्शिता से जो वो अभी उन्होंने 51,000 बच्चों को अभी रोजगारी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया, एक सेकंड में पूरे देश में 50,000 लोगों का हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। ना उसको कोई सिफारिश करनी पड़ी, ना किसी को कोई पैसा देना पड़ा, ना जमीन देनी पड़ी। तो उससे युवाओं को भी विश्वास हो गया कि यह आदमी युवाओं के लिए भी कुछ करना चाहता है, और वो युवा कोई निराश ना हो जाए, उसके पहले उसको कोई चांस मिल जाए तो उसके लिए भी उनकी कोशिश रहती है।
1: ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है हमेशा कि मतलब देश में आर्थिक सुनामी आ जाएगी, अर्थव्यवस्था डिरेल हो चुकी है, तमाम चीजें ऐसी बातें बताने की कोशिश होती है, उस नैरेटिव को कैसे देखते हो आप?
0: जब पूरे विश्व में सभी जगह युद्ध चल रहा है, एकमात्र हमारा देश है वो भी माननीय मोदी साहब की जो पॉलिटिकल जो सेंस है उनकी जो विदेश नीति है उसके कारण हम बिल्कुल शांति से रह रहे हैं। पूरी दुनिया में युद्ध है, एक जगह नहीं है, दो देश के बीच में नहीं है, मगर हम बिल्कुल शांति से रहे हैं। हमें कोई भी युद्ध का डर नहीं लग रहा है, हम न्यूज तक नहीं देखना चाहते कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो ये जो पोजीशन परिस्थिति जो आई है वो तो मोदी साहब की वजह से है। तो ये जो ग्रोथ है ऐसे समय में, कोरोना के समय में, कोरोना के बाद में, युद्ध के समय में, इतना GDP जो आया है वो खुद ही रिकॉर्ड है। मनमोहन जी तो अर्थशास्त्री थे, उस टाइम तो हम 11वें नंबर पे थे, हमारी आर्थिक व्यवस्था 11वें नंबर पे थे, मोदी साहब ने 5वें पर लाई और 3रे पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये भी उनको कहकर लाए हैं, हमने कहा कि हमने कुछ किया और हो गया, ऐसा नहीं है। पहले से उन्हें कह दिया कि मैं ये नंबर पे देश के अर्थतंत्र को लेके आऊंगा। तो ये व्यवस्था करना तो हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, देश का हो, चंद्र पे जाना है, अवकाश में जाना है, हमें फाइटर प्लेन लेने हैं, अच्छी सबमरीन लेनी है, वो भी देश

0: क्या बनाना है, सब काम एक ही आदमी इतनी ताकत के साथ कर रहा है और ये बैठे बैठे बस उनकी एक ही सोच है कि बस हमें प्रधानमंत्री बना दो। क्यों बना दो, उसका कोई वजह नहीं है उनके पास, उनको खानदानी ये सीट उनकी है ऐसा उनको लगता है। ये चाय वाला कैसे आ गया, ये चाय वाला पूरे देश के लोगों की चाहना लेकर आया है और इसको हटाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है।
1: चलते चलते पाटिल साहब, मैं यही जानना चाहूंगी, जब प्रधानमंत्री को आप सब लोगों ने ग्रीट किया, स्टैंडिंग ओवेशन दी, इतना रिकॉर्ड पीएम ने बनाया, प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन था?
0: मैंने मोदी साहब ने सबका आभार व्यक्त किया, सबको धन्यवाद दिया।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीआर पाटिल जी, क्योंकि ये जो बातें आपने बताई इसीलिए बहुत ज्यादा अहम ये बातचीत थी कि मोदी जी के साथ ये अपनापन और जो पल आपने बिताए हैं, बहुत ही कम लीडर्स ऐसे हैं जो उनके साथ इस तरह से बारीकी और करीबी के साथ में रहे, इसलिए ये बातें शायद कोई और नहीं बता पाता। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर। अब सुनिए मोबिक्विक के संस्थापक बिपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 यही वो तारीख थी जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों के सपने, उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ भारत की सत्ता संभाली थी। तब से लेकर अब तक 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में जनता ने दो बार आशीर्वाद मोदी सरकार को दिया है। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। इन 12 साल में हमने कई नीतियां देखी, जमीन पर उतरती हुई नीतियां देखी, सभी के फोकस में, सभी के केंद्र में आम आदमी था और एक ऐसी ही नीति थी डिजिटल इंडिया को लेकर। और जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की तो हमें ये समझना जरूरी हो जाता है क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है, नीतियों में क्या कुछ बदलाव संभव है, क्या कुछ बदलाव की उम्मीद करते हैं। और इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोबिक्विक के फाउंडर और सीईओ बिपिन प्रीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है बिपिन आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अभी के समय में अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें और 12 वर्षों में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें तो आपने जिस तरीके से आपका सफर रहा है उसमें आप अर्थव्यवस्था का आकलन कैसे करते हैं?
4: पहले तो शिशिर जी धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में इन्वाइट करने के लिए। और मोबिक्विक जो मैंने कंपनी स्टार्ट की थी करीब 17 साल पहले, उसमें से 12 साल मोदी सरकार के अंदर ये कंपनी खड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सन 2014 में ही मोबिक्विक को सबसे पहली फंडिंग मिली थी और उसके बाद मोबिक्विक ने करीब करीब 2000 करोड़ रुपए पिछले 12 साल में डिफरेंट तरह के इन्वेस्टर से उठाए और बिजनेस बनाया। तब हमारे पास आई थिंक 30 लाख या 40 लाख यूजर थे। आज की डेट में मोबिक्विक प्लेटफॉर्म 18 करोड़ यूजर यूज करते हैं पूरे भारत में। तो इन नंबरों से ही आपको समझ आ जाएगा, इन आंकड़ों से, कि हमारे देश में जो डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इकोनॉमी है वो किस हद तक उसकी ग्रोथ हुई है। मुझे याद है 12 साल 15 साल पहले जब आप मोबाइल फोन पे कॉल करते थे तो सोचना पड़ता था कि कितने की कॉल पड़ेगी, मैसेज करना है तो कितना पैसा लगेगा। आज के समय में आप नहीं सोचते। आज के समय में अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप बैंक नहीं भागते, आप फटाक से अपना फोन निकालते हैं और यूपीआई से डिजिटल पेमेंट करते हैं। करीब करीब 4 में से 1 भारतीय या 3 में से 1 भारतीय ऑलरेडी डिजिटल पेमेंट्स के साथ जुड़ चुका है, जिसमें मोबिक्विक ने एक बहुत बड़ा सफर और बहुत बड़ा योगदान दिया है। बट इन सब के पीछे जो नीतियां हैं जिनसे ये पॉसिबल हुआ है उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पहले डिजिटल आइडेंटिटी नहीं होती थी, हम राशन कार्ड लेके घूमते थे। अब आधार जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, पैन जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, मोबाइल फोन के रेट सस्ते हुए हैं, फिर जो यूपीआई का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तो उससे मोबिक्विक की बिजनेस को बनाने में बहुत बहुत बड़ा हाथ है। उसके बिना मुझे लगता नहीं है ये संभव भी था।
3: तो मतलब 17 साल के आपके सफर में, 12 साल मोदी सरकार के, और इन 12 साल में जो डिजिटल इंडिया का सफर रहा उसमें काफी हद तक आपके अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिली। और आप ही के नहीं, ऐसे कई ऐसे पेमेंट सिस्टम, पेमेंट एग्रीगेटर की हम लोग बात करें, वो सिस्टम में आए, उन्होंने काम को आगे बढ़ाया। अगर मैं 3 प्रमुख नीतियों की बात करूं 2014 से लेकर के 2026 के बीच में, वैसे कौन सी 3 बड़ी नीतियां थी जिन्होंने आपके कारोबार को, कहने का मतलब कि डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ाने में मदद की?
4: तो

0: मैं काफी नीतियां थी, बट सबसे पहला मैं ये मानूंगा कि कोई भी सरकार जब किसी बिजनेस के साथ काम करती है तो हम जब बिजनेस सरकार से बात करते हैं तो उनकी नीतियों को और उनकी माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो 12 साल पहले ही हमें समझ आ गया था कि ये सरकार डिजिटल इंडिया की एक पॉलिसी लेके आएगी और उसको हर एक लेवल पे इम्प्लीमेंट करेगी। एंड आई थिंक वो जो डिजिटल इंडिया की जो एक मुहिम बनी जिसके अंतर्गत ये सब हुआ कि आधार, पैन, जनधन अकाउंट्स खुले इतने सारे, अभी हर पर्सन के पास, हर इंसान के पास अकाउंट है, तब नहीं थे। तो ये जो नीतियां थी डिजिटल इंडिया के अंडर, जो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया इंडिया में, डिजिटल डीपीआई कहते हैं इसे, इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब तक एक इंसान अपनी डिजिटल में पहचान नहीं बना सकता तब तक वो डिजिटल पेमेंट भी नहीं कर सकता और अब डिजिटल लोन भी नहीं ले सकता, डिजिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता। इन सबको जो साथ में जोड़ा गया है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो कि इवन बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज में भी आज तक अचीव नहीं हुआ।
1: एक जो बड़ी पहल जिसको हम कहें जैम ट्रिनिटी की, हम लोग बात करें, आपने अभी जनधन की बात की थी, आपने आधार की बात की, आपने मोबाइल का बात किया, और 2015 से हमने देखा कि जैम ट्रिनिटी किस तरीके से समाज के आखिरी पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक जो भी सरकार की योजना है उसका फायदा पहुंचाने में मदद की। इस जैम ट्रिनिटी को आप कैसे देखते, क्योंकि एक समय जैसा आपने खुद कहा कि एक मोबाइल फोन को लेकर के हम एक बार सोचते जरूर थे, और हमें वो भी दौर याद है जो आज से अगर मैं 20-25 साल पहले जाऊं जब 16 रुपए का एक कॉल होता था तो लोग कहते थे मिस कॉल मार देना। वो मिस कॉल मार देना आज भी हमारे मोबाइल कल्चर का एक पार्ट है। ये अलग बात है कि अब हम उस मोबाइल पे 16 रुपए की चिंता नहीं करते बल्कि मिस कॉल मार देना एक बात कहते हैं। ये मिस कॉल मार देने से जनधन, आधार, मोबाइल, ये ट्रिनिटी को आप किस तरीके से देखते हैं समाज के आखिरी पायदान पर व्यक्ति जो है उस तक सामाजिक योजनाओं का फायदा पहुंचाने।
0: इसमें सबसे पहले जो मोबाइल की मैंने बात की कि जब इंडिया में 4G आया या 5G आया और नए ऑपरेटर्स आए जैसे जियो आया या एयरटेल ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, इसके ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी का पुश था सरकार की तरफ से कि आपको, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है, तो सबसे पहले हर बंदे के पास, हर पर्सन के पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए और उसके अंदर डेटा और कॉलिंग ऑलमोस्ट फ्री होनी चाहिए, और वो हुआ, आप हमने पिछले 10 सालों में देखा है। तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान था। इंडिया आज की डेट में दुनिया के आई थिंक नंबर 1 या नंबर 2 डेटा कंज्यूमिंग कंट्रीज में है। हम डेटा यूज करने से पहले सोचते भी नहीं, जबकि यही 10 साल पहले कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले या कोई वीडियो देखने से पहले आप सोचते थे कि इस पे कितना GB डेटा, MB डेटा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है बिकॉज इस चीज को हर दर्जे के लोगों तक पहुंचाना वही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा है आधार। तो आधार के ऊपर तो ऐसा है कि डिजिटल आइडेंटिटी जब तक नहीं होगी तब तक आपका अकाउंट भी नहीं खुल
1: सकता।
0: तो ये उसको पूरा डिजिटाइज करना और उसके प्रोसेसेस को इस तरह से स्ट्रीमलाइन करना कि कोई भी पूरे देश में, उस दिन मुझे अपने आधार में कुछ चेंज कराना था, मुझे 5 मिनट लगे। मैं एक नियर बाय एक बैंक में एनरोलमेंट सेंटर में गया और मैंने वहां पे अपना ऑथेंटिकेशन किया और मुझे कुछ एड्रेस चेंज कराना था, वो इमीडिएटली वहां पे हो गया। इस तरह की सुविधा हमारे देश में नेशनल लेवल आज तक कभी नहीं, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिससे आप ये देख सकते हो कि ये आइडेंटिटी है इस पर्सन की और इस आइडेंटिटी के ऊपर आप इसका अकाउंट खोल सकते हो। हमारा देश अभी भी गांव में बसा है, हालांकि शहरों ने काफी तरक्की की है, बट करीब 30-35% आज भी गांव में है और सेमी अर्बन है। हर इंसान बैंक में जाके कंफर्टेबल नहीं रहता था और बैंक भी जो होते थे, जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, वो हर एक का अकाउंट खोलने में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। ये सच्चाई है, क्योंकि अगर किसी की तनख्वाह कम है या उसके अकाउंट में पैसे नहीं रखने हैं तो उसका अकाउंट खोलना मतलब आपको एक लॉस उठाना है। तो उसके ऊपर जो जनधन अकाउंट्स की पॉलिसी बनी जिसके ऊपर हमारे बैंकों ने काम किया और सबके अकाउंट खोले, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज की डेट में मेरा ये मानना है कि 90% लोगों के पास बैंक अकाउंट है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में आप छोटा बच्चा देखो, आप एक बूढ़ा देखो, कोई रिटायर्ड पर्सन देखो, आप गांव में चले जाओ, आप किसी को भी डिजिटल पेमेंट इसीलिए कर पाते हो क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट।
1: तो एक डिजिटल सिस्टम का एक ये भी फायदा हमें इस स्वरूप में देखें

0: कि जब पहले कहा जाता था कि केंद्र से एक रुपया चलता था और 15 पैसे लोगों तक पहुंचते थे, आज हम बात करते हैं कि लाभार्थी का जो भी बेनिफिशियरी है उसकी पहचान साबित हो जाती है डिजिटल माध्यम से, और डिजिटल माध्यम से ही लेन देन हो पाता है। ये जो हमारे पास रिसोर्सेस का जो एक बेहतर इस्तेमाल है, ये डिजिटल माध्यम से और भी बेहतर तरीके से हो पाया। इसका फायदा आप किस तरीके से देखते हैं? गवर्नमेंट की बजटिंग की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, फिस्कल प्लानिंग की बात करें, उसमें उसका योगदान किस तरीके से?
1: देखिए, डिजिटल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डिजिटल बिल्कुल साफ होता है और डिजिटल में पेपर का यूज मिनिमम होता है, और इसीलिए डिजिटल में लीकेज बहुत कम होता है। वरना हमारे देश में जहां पे इतने गरीब लोग हैं, सरकार हमेशा से उन पे पैसा खर्च करना चाहती थी और खर्चती है भी, और 12 साल पहले भी खर्चने की कोशिश करती थी, बट वो उन तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि वो इतने स्टेप से जाता था, इतनी लेयर से जाता था कि वो, जैसा कि आप बता रहे हैं, 1 रुपए की जगह 15 पैसे। बट अब जब सरकार ने DBT बनाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन अकाउंट सबके पास है, तो आपको किसी को गैस की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको बिजली की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको खाने की सब्सिडी देनी है, किसी भी तरह की सब्सिडी देनी है, आपके पास उस इंसान की पूरे डिटेल्स हैं, उनके बैंक अकाउंट हैं, उनकी आइडेंटिटी है, आप डायरेक्टली उनके अकाउंट्स पे एक क्लिक करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हो।
0: विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल रिवोल्यूशन की हम लोग बात करें, उसमें बहुत सारे हो रहे बदलाव पे आपने चर्चा की, आपका आभार, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोबिक्विक के संस्थापक विपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे US प्रसाद का कर्नाटक सैक्सोफोन वादन। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
4: परिवार में हुआ था, कम उम्र में ही आपको संगीत की विरासत मिली। आपने अपने चाचा से कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। सम्माननीय सैक्सोफोनिस्ट स्वर शिल्पी यू वेंकट राव जी और चिंतालापुड़ी वराहला राजू गारू और पी दयाकर गारू के साथ संगतकर्ता के रूप में संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू किया। आप पश्चिमी की फ्लूट में भी प्रशिक्षित हैं, जो आपकी व्यापक संगीत बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। आपको गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा नई दिल्ली द्वारा कला निधि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये आपके संगीत के प्रति अटूट समर्पण, अनुशासन और जुनून को दर्शाता है, जो आपको अन्य संगीतकारों के लिए एक आदर्श बनाता है। आपके साथ मृदंगम पर विघ्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही हैं। यू शिव प्रसाद अपने कार्यक्रम का आरंभ हंस ध्वनि से कर रहे हैं। रचना के बोल हैं वातापी। इसके रचनाकार हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
5: दिस इज आकाशवाणी टुनाइट इन रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ सैक्सोफोन रिसाइटल बाय यू शिव प्रसाद। यू शिव प्रसाद, बॉर्न इन टू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस इन विशाखापट्टनम, inherited his musical foundation at an early age. He received his formal training in Carnatic classical music from his uncle, the respected saxophonist Swar Shilpi U. Venkat Rao Garu, Chintalapudi Varhala Raju Garu and P. Dayakar Garu, and he began performing in public concerts as an accompanist. He is also trained in Western key flute, showing broad musical versatility. Awarded Kalanidhi Award from Gandhi Hindustani Sahitya Sabha, New Delhi. It reflects his unwavering dedication, discipline and passion for music, making him a role model for musicians alike. Today, he is accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. U. Shiva Prasad begins his violin recital with Rag Hansdhwani. Composition Vatapi, composed by Muthuswami Dikshitar. इज सेट टू आदित्य

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग हंसध्वनि। कार्यक्रम को जारी रखते हुए यू शिव प्रसाद अब प्रस्तुत करेंगे राग नवरस कानड़ा। रचना के बोल हैं निन्नु वीणा रामा। इसके रचनाकार हैं त्याग राजा। ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: दैट वॉज राग हंसध्वनि। कंटिन्यूइंग हिज रिसाइटल, यू शिव प्रसाद नाउ प्रेजेंट्स अनदर कॉम्पोजिशन बेस्ड ऑन राग नवरस कानड़ा। Composition Ninnu Veena Rama, composed by Thyagaraja, is set to Rupa.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग नवरस कांगड़ा। अब आप सुनेंगे राग गौरी मनोहारी। रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभा। इसके रचनाकार हैं स्वाति तिरुनाल और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग नवरस कांगड़ा। यू शिव प्रसाद कंक्लूड्स हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विथ राग गौरी मनोहारी, कंपोजिशन जय जय पद्मनाभा, composed by Swati Tirunal, is set to Aditalam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ मृदंगम पर विग्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही थी। इसी के साथ संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: He was accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studios of Akashvani Delhi and was broadcast from the Delhi station of Akashvani.
2: साथ में रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरीटाइम्स फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट श्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
2: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर

मीडियम वेव 305.81 मीटर्स अर्थात 981 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात के 11:10 हुए हैं। ये सभा

हेलो सर, टॉक स्टूडियो से समय मिला लीजिए। 5:14, 49:50, 51 सेकेंड्स। वर्क स्टेशन 1। वर्क स्टेशन 2।

हेलो सर, आर्टिस्ट साइड से समय मिला लीजिए। 5:15 49 50 51 52 सेकेंड्स। हेलो हेलो, माइक नंबर 2। हेलो हेलो।